100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 17 जून 2026 सुबह के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

राम क्षण क्षण में श्याम हो, मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम

100.7 FM पर मैं शिवम सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रातः के 6:02 हो रहे और प्रतिदिन की तरह भगवान विघ्न विनाशक श्री गणेश के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज की

मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी जन्म ले लेती है। यही अंतहीन कामनाएं समस्याओं को जन्म देती हैं और धीरे धीरे मनुष्य समस्याओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है। और ऐसी समस्या से तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही हमें बाहर का रास्ता दिखा सकता है।

मनुष्य की स्थिति भी जाल बनाने वाली मकड़ी की तरह हो जाता है, जो अपने ही मन की भंवर में उलझ के रह जाता है और इसे निकलने का एकमात्र साधन भक्तिभाव के मार्ग से होकर ही तो जाता है।

मनुष्य भी अपनी अपेक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और आसक्तियों को जाल के स्वरूप खुद के ऊपर बिछा लेता है और फिर उसी में उलझकर दुखी हो जाता है। कई बार तो अपनी परेशानियों के लिए ईश्वर को भी दोषी ठहरा देता है, जबकि अधिकांश समस्याओं की जड़ उसके अपने कर्म और उसकी खुद की इच्छाएं हैं।

संसार में समस्या है तो उसका हल भी है, लेकिन हर समाधान हमारी इच्छा के अनुसार तुरंत नहीं मिलता। एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। आज लोग समाधान की तलाश में जगह जगह भटकते हैं, लेकिन वास्तविक शांति बाहरी उपायों से नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने से मिलती है।

उजनी के लाल को सब मिलके पुकारे कैसे, हे वीरवर हनुमान अब संकट से छुड़ाओ, हम सब शरण हैं आपकी,

के भी शिरोमणि बलवान जब चले, श्री राम जी का करते हुए ध्यान जब चले, और रावण का तोड़ने को वो अभिमान जब चले, अरे भर कर वीरा

लंका में पहुंच करके दिए वाटिका उजाड़, अक्षय कुमार को दिए धरती पे वो पछाड़। आया जो सामने दिए ककड़ी के जैसे था, दुश्मन के घर में अपना, हे दुश्मन

जोड़ कर एक कपी ने रख दिए बगिया के सारे पेड़ तोड़ कर मा...

संत महात्माओं ने सदैव यही संदेश दिया कि समस्याओं का नहीं परमात्मा का चिंतन करो। जब मन भीतर से शांत हो जाता है तब समस्याएं स्वयं अंत की ओर चली जाती हैं।

और इससे पहले कि पुष्पांजलि से मैं शिवम आप सबसे आज्ञा लूं, पर हमेशा की तरह जिस तरह सभी देव देवताओं की पूजा हो और हमारे आराध्य देवों के देव देवाधिदेव महादेव का नाम लेने पर पूजा अधूरी मानी जाती है, उसी तरह पुष्पांजलि में उनका नाम लेना तो बनता है। काशी नरेश, बाबा विश्वनाथ, महाकाल का नाम आप जहां भी हो अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर आंख बंद करके और हृदय से बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर।

गुड मॉर्निंग कानपुर, वेक अप एंड शाइन कानपुर। ये है 17 जून की ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग जो आपके लिए लेकर आई है फ्रेश होप्स, न्यू ड्रीम्स और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। जी हाँ, आज रोशनी की हर किरण कह रही है आज फिर मुस्कुराकर जी लो जिंदगी, ये पल लौट कर नहीं आते। वेल दोस्तों, हर मॉर्निंग हमें याद दिलाती है कि जिंदगी हर दिन एक नया चांस देती है कुछ अच्छा करने का, कुछ नया सीखने का और दिल खोल कर मुस्कुराने का। तो चाहे आप मॉर्निंग वॉक पर हो, ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हो या फिर अपने फेवरेट चाय के साथ इस ब्यूटीफुल सी सुबह का आनंद ले रहे हो, आपके साथ है 102.2 रेनबो कानपुर। मैं हूं सारिका शुक्ला और लेकर इस गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम को शेयर करूंगी आपसे गुड वाइब्स, पॉजिटिव थॉट्स, अपने शहर कानपुर के साथ साथ देश दुनिया की हलचल और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें और कुछ ब्यूटीफुल से ट्रैक्स। सो कानपुर, लेट्स मेक दिस डे अमेजिंग। अपनी मुस्कान को थोड़ा और ब्राइट कीजिए, अपनी एनर्जी को फुल चार्ज कीजिए और स्वागत कीजिए इस ब्रांड न्यू डे का इस शानदार से गीत के साथ।

जी हाँ, सुबह सुबह आप हैं 102.2 रेनबो कानपुर के साथ। वेल, अभी तो सुबह ने बस अंगड़ाई ली है दोस्तों। गुड मॉर्निंग कानपुर का खूबसूरत कारवां, अभी आगे बढ़ना बाकी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले शेयर कर लेते हैं आपसे FM 102.2 रेनबो कानपुर से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। जी हाँ, समाचार के बाद आज 8:30 पर सजेगी सुरों की पुरानी महफिल। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे प्रकृति की विरासत स्पेशल प्रोग्राम रस बहार मेरे यानी की सारिका शुक्ला के साथ, और विविधा के तहत भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना के जरिए आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत। रोज की तरह दिन में 11 बजे का वक्त होगा हमनवा प्रोग्राम का, जहां आज मेरी हमनवा होंगी आरजे रितु। प्रोग्राम म्यूजिक आर को एंजॉय कीजिएगा दिन में 3 बजे और शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी।

0: लेकर हाजिर होंगी रितु। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गाने, तो आप हमें अपनी मेल लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है airkansomedia@gmail.com। वहीं हम अपने लिसनर्स को ये भी बता दें कि 20 जून को प्रसारित होने वाले प्रोग्राम हेलो कानपुर की रिकॉर्डिंग होगी आज सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर है 0512-254-1818। फोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 0512-254-1818। रिकॉर्डिंग होगी सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

डियर लिसनर्स, यू ऑल आर लिसनिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर और 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से ये प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, कहते हैं कि सुबह का पहला ख्याल पूरे दिन का रंग तय कर देता है, तो अगर सोच सकारात्मक हो चुनौतियां भी अवसर नजर आने लगती हैं, और अगर मन में उम्मीद हो तो सफर अपने आप खूबसूरत बन जाता है ना? क्योंकि सुबह की रोशनी ये नहीं पूछती कि रात कितनी अंधेरी थी, वो बस आती है और दुनिया को रोशन कर देती है। तो आइए अपने इस ब्रांड न्यू डे की शुरुआत करते हैं एक प्रेरणादायक विचार के साथ। वक्त हो चला है थॉट ऑफ द डे का। आज का विचार विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर जी का है। फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। यानी कि विश्वास वो पंछी है जो अंधेरा रहते हुए भी प्रकाश को महसूस कर लेता है और गाना शुरू कर देता है। दोस्तों, कितनी अनुभव की बात है, जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, मंजिलें दिखाई नहीं देती, लेकिन विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। उम्मीद ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को भी आसान बना देती है। तो डियर कानपुर, इसी पॉजिटिव एनर्जी, इसी फेथ और एक खूबसूरत सी मुस्कान के साथ आज के दिन की शुरुआत कीजिए। सुनिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर का नेक्स्ट ट्रैक।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

102.2 रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप और अब प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर में वक्त हो चला है एक नजर डालने का डिजिटल वर्ल्ड पर। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं आज की सोशल मीडिया टाइमलाइन। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में जब भारतीय समुदाय अपने देश और अपनी संस्कृति का परचम लहराता है तो वो पल अपने आप में खास बन जाता है। जी हाँ, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए भव्य स्वागत पर खुशी व्यक्त करते हुए अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है, वहां मिला स्नेह और अपनापन बेहद यादगार रहा। मैं उनके गर्म जोशी से स्वागत और प्रेम के लिए हृदय से आभारी हूँ। ऐसे भावपूर्ण स्वागत हमें लोगों को जोड़ने वाले मजबूत रिश्तों का प्रतीक है और साथ ही दो देशों की मित्रता को और सशक्त बनाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक्स हैंडल पर हाल ही में ट्वीट किया है, लोकतंत्र संवाद से मजबूत होता है, संवाद से विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास से व्यवस्था सुदृढ़ होती है। 102.2 FM रेनबो कानपुर है आपके साथ।

आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

102.2 रेनबो कानपुर से अब करते हैं टाइम ट्रेवल और पलटते हैं इतिहास की वो सुनहरी किताब जिसके हर पन्ने में छिपा है एक नई कहानी का राज। जानते हैं क्या है खास 17 जून के बारे में, शेयर करते हैं आपसे आज के दिन इतिहास ने कौन सी यादें सजोई अतीत के आईने में। आज ही के दिन यानी कि 17 जून 2004 में मंगल पर पृथ्वी की चट्टानों से मिलते जुलते पत्थर मिले। वहीं आज ही के दिन भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों 1858 में क्रांति की नायिका रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। शत शत नमन है रानी लक्ष्मीबाई को इनकी पुण्यतिथि पर FM 102.2 रेनबो कानपुर की तरफ से।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप। दोस्तों अब देश विदेश की उन खबरों पर नजर डालने का वक्त है जो बना रही हैं आज की ताजा सुर्खियां। जी हां, कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। साथ ही स्लोवाकिया ने

माननीय प्रधानमंत्री का अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। वहीं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया। और कल ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होकर भारत देश का गौरव बढ़ाया। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। जी हाँ, और इसलिए किसी भी वक्त आपसे मिलने चले आते हैं, चाहे मौसम गर्मी का हो, बरसात का हो या फिर ठंड का हो। वेल, अपने कानपुर की धड़कनों को जो आप तक पहुंचाने का, आपको महसूस कराने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, अपने कानपुर की धड़कनों को महसूस कीजिए फटाफट अंदाज में कुछ मेलोडियस से ट्रैक्स के साथ। HBTU में BTech की विभिन्न ब्रांच की 1068 सीट पर दाखिले के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रस्तावित अंतिम तिथि 22 जून है। छात्र हित में हेल्प डेस्क की भी शुरुआत की गई है। वहीं दोस्तों, अब साइबर फ्रॉड व हैकिंग से निपटने के लिए IIT कानपुर साइबर वॉरियर्स को तैयार करेगा। जी हाँ, IIT कानपुर का 2026-27 एकेडमिक सेशन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जुलाई 2026 में शुरू होगा, जिसका नाम बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी रखा गया है। वहीं दोस्तों, छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक GenAI तकनीक से अनुसंधान कर नवाचार व कोडिंग की नई क्रांति शुरू होगी। जी हाँ, CSJMU और IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता हो चुका है, जिसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को वैश्विक स्तर की उभरती प्रौद्योगिकियों से जोड़ना है। और साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों अपने कानपुर की, तो आपने अगर JEE एडवांस 2026 क्वालिफाई किया है और अब ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी काउंसलिंग को लेकर आप मन बना रहे हैं और आपके मन में ढेरों सवाल हैं, कौन सी ब्रांच चुने, किस संस्थान में बेहतर अवसर मिलेंगे, हॉस्टल लाइफ कैसी होगी, प्लेसमेंट और रिसर्च की संभावनाएं क्या हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, IIT कानपुर ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए अपनी आधिकारिक JOSAA काउंसलिंग हेल्प डेस्क 2026 की शुरुआत कर दी है और इस पहल के तहत वर्तमान छात्र अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, साथ ही काउंसलिंग से जुड़े सवालों का समाधान भी दे रहे हैं। साथ ही संस्थान के निदेशक, डीन और वरिष्ठ प्रोफेसर भी छात्रों से संवाद कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, सच भी है, सही जानकारी सही दिशा की जो होती है वो होती है पहली सीढ़ी। और दोस्तों, आज है 17 जून। जी हां, जून का महीना अपने में ही खास होता है, जो हमें

इंस्पायर करता है अपने भीतर पॉजिटिविटी की लौ जलाने को। जी हाँ, क्योंकि इस महीने ही हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व योग दिवस। जून के महीने की 21 तारीख को। वेल, इस दिन के स्वागत की तैयारियां जो हैं वो अपने कानपुर में भी जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। कानपुर शहर में भी योग रंग जो है वो चढ़ने लगा है। जी दोस्तों, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में योग पखवाड़ा शुरू हो चुका है। साथ ही शहर के विभिन्न संस्थानों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर भी योग से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर हम रोज कुछ समय योग और प्राणायाम के लिए निकाल लेना तो तनाव कम होगा, ऊर्जा बढ़ेगी और स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो आइए हम सब भी संकल्प लें स्वस्थ तन, शांत मन और खुशहाल जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। 102.2 FM रेनबो कानपुर है आपके साथ।

102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप। अब वक्त है मैदानों से आने वाली उन अपडेट्स का जिन पर टिकी हैं कई खेल प्रेमियों की निगाहें। जी हाँ, बल्ले या बॉल की गूंज हो या फिर गोल की खुशी, लिए चलते हैं आपको खेल जगत की हलचलों की ओर। स्पोर्ट्स अपडेट्स है आपके लिए। तो दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में एक बड़ी खबर। तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में पहला मुकाबला जीतने के बाद भारतीय टीम आज अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में उतरेगी। टीम इंडिया की कोशिश होगी कि इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली जाए। और क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें कप्तान रोहित शर्मा पर रहेंगी, जिनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। वहीं शुभमन गिल, विराट कोहली और भारतीय गेंदबाजों से भी शानदार प्रदर्शन की अपेक्षा होगी। वहीं दोस्तों, हॉकी के मैदान में भारतीय खेल प्रेमियों के लिए एक शानदार खबर। कप्तान सलीमा टेटे के अहम गोल की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 2-1 से हराकर FIH महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और पूरे मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल, अनुशासन और जज्बे को प्रदर्शित भी किया है। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर, और इस प्रोग्राम को लेकर सारिका है आपके साथ।

मैं भी यानी कि सारिका शुक्ला भी यहाँ हूँ 102.2 रेनबो कानपुर के स्टूडियो में लेकर मौसम का हाल। वेल दोस्तों, हवाओं का रुख क्या है, बादलों का इरादा क्या है और धूप आज कितनी मेहरबान है, आइए जानते हैं रेनबो 102.2 कानपुर से मौसम का हाल। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं भारत मौसम वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग आज से आगामी 4 दिनों में हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं, लेकिन बारिश की तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है, तो पर्याप्त पानी पीते रहें, घर से निकलते समय सर ढक कर निकलें और बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो दिन में 11 से लेकर 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें। 102.2 रेनबो कानपुर है आपके साथ।

तो दोस्तों, सुबह की इस खूबसूरत महफिल को अब यही विराम देने का समय आ गया है। उम्मीद है कि आज की बातें, जानकारियां, मुस्कुराहटें और मधुर गीत आपके दिल तक जरूर पहुंचे होंगे और आपके दिन की शुरुआत को थोड़ा और खुशनुमा बना गए होंगे। इसी के साथ दीजिए सारिका शुक्ला को इजाजत। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर को यही वाइंड अप करने के साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपने शहर को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू थे सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की

0: करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया।

0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा, पत्र ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है, क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई, जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
2: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
6: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust

FM 102.2 रेनबो कानपुर से कनेक्ट हो चुके हैं आप। दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। कुछ धुने वक्त की धूल से परे आज भी दिल के किसी कोने में महकती रहती हैं। मैं हूं सारिका शुक्ला और लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल। तो दोस्तों, आने वाले पलों में सुनेंगे हम कुछ ऐसे ही पुराने नगमे, और होगा आज उन नगमों का ऐसा कारवां जो आपको ले जाएगा हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में। तो दोस्तों, आइए यादों के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं FM रेनबो कानपुर 102.2 पर।

FM 102.2 रेनबो कानपुर से प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, सुरों की पुरानी महफिल। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज में गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत आरडी बर्मन का।

FM 102.2 रेनबो कानपुर से लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। क्षेत्राधिकारी अपराध जनपद फतेहपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रियंका मिश्रा निवासी ग्राम मलबा कांधी फतेहपुर दिनांक 15 फरवरी सन 2022 से कहीं लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 35 वर्ष, कद लगभग 150 सेंटीमीटर, इकहरा बदन और स्वस्थ शरीर है। ये हिंदी जानती हैं। प्रियंका मिश्रा से संबंधित कोई भी इस सूचना जो है वो आप क्षेत्राधिकारी अपराध जनपद फतेहपुर को दे सकते हैं। वैसे इनके मिलने की जो संभावना है वो प्रयागराज और कानपुर व इसके आसपास है। तो इनके मिलने की सूचना जो आप जिस पते पर देंगे वो एक बार फिर सुन लीजिए। क्षेत्राधिकारी अपराध जनपद फतेहपुर। सूचना समाप्त हुई। 102.2 रेनबो कानपुर से कार्यक्रम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में बारी है अनोखी अदा फिल्म के गीत की। गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज किशोर कुमार की।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए अखियों के झरोखों से फिल्म का गीत हेमलता की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

तो दोस्तों, यादों और सुरों से सजी आज की ये महफिल अब यहीं विराम लेती है। उम्मीद है कि बीते दौर के इन सदाबहार नगमों ने आपके दिल के किसी खूबसूरत कोने को जरूर छुआ होगा। चलते चलते बस इतना ही, कुछ धुनें खत्म नहीं होती, वो बस दिलों में बस जाती हैं। मैं हूं सारिका शुक्ला, लेती हूं आपसे कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल से इजाजत। ब्रेक के उस पार मिलूंगी कार्यक्रम रस बहार के साथ।

मैं हूं सारिका शुक्ला, लेती हूं आपसे कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल से इजाजत। ब्रेक के उस पार मिलूंगी कार्यक्रम रस बहार के साथ।

नमस्कार कानपुर। वेल, 17 जून की इस ताजा तरीन सुबह में जब सूरज की किरणें धरती को पूरी तरह जगा चुकी हैं, पेड़ों पर बैठी चिड़ियां अपनी मीठी धुनों की मिठास हवा में घोल चुकी हैं और साथ ही दिलों में मानसून को वेलकम करने की ख्वाहिश जग चुकी है। तो ऐसे खूबसूरत से माहौल में आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम रस बहार में, और इस प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी अपनी सारिका। दोस्तों, जून का महीना सिर्फ मौसम बदलने का महीना नहीं है, ये वो महीना है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है, हमारी नदियाँ, हमारे पेड़, हमारी मिट्टी और हमारी प्रकृति। तो दोस्तों, अगले कुछ मिनट्स होंगी बातें नेचर हेरिटेज की, योगा की, मानसून की और अपने कानपुर की उन कोशिशों की जो धरती को फिर से हरा भरा बनाने में जुटी हैं। और दोस्तों, प्रकृति की बात हो और संगीत उसका साथ ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेड़ों की सरसराहट में भी तो संगीत है, बहती नदियों की कलकल भी एक धुन है और जो बारिश की बूंदें हैं वो भी टप टप करती किसी मधुर संगीत से कम नहीं। तो क्यों ना आज प्रोग्राम रस बहार में इन्हीं सुरों को महसूस करें जिन्हें सुनकर लगता है जैसे मौसम खुद गुनगुना रहा है।

बड़ा ही प्यारा गीत था। वैसे दोस्तों सचमुच कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं, और ये गीत भी हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत मंजिलें अक्सर प्रकृति की गोद में ही मिलती हैं। वैसे अक्सर जब हम विरासत की बात करते हैं तो महलों, इमारतों और ऐतिहासिक धरोहरों का जिक्र करते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर नदियां ना हो, पेड़ ना हो, बारिश ना हो तो क्या हमारी कोई विरासत बच पाएगी? शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को पूजनीय माना और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखने की सीख दी। वैसे प्रकृति की खूबसूरती की सबसे अच्छी बात ये है कि ये हर दिन नया रूप लेकर आती, कभी सुनहरी धूप बनकर, कभी ठंडी हवा बनकर और कभी मन को सुकून देने वाली हरियाली बनकर। ऐसे ही सुकून भरे एहसासों को अपने सुरों में समेटे ये गीत पहुंच रहा है आप तक।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: FM 102.2 रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है जून का महीना प्रकृति की विरासत विशेष रस बहार। दोस्तों, जब बादल आसमान में उमड़ते हैं तो सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता, उम्मीदें भी बदल जाती हैं। किसान आसमान को देखने लगते हैं, पेड़ पौधे नई जान पाने को आतुर हो जाते हैं और धरती पहली फुहार के इंतजार में सजने को तैयार हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पानी ही ना बचे तो? जी हाँ, इसी चिंता को दुनिया हर साल 17 जून यानी कि आज के दिन को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस के रूप में याद करती है। और ये दिन हमें बताता है कि जल संरक्षण और मिट्टी की रक्षा सिर्फ सरकार का नहीं, हम सब का भी काम है। तो अगर आप भी अपने घर, खेत, मोहल्ले या आसपास पानी बचाने के लिए या फिर मिट्टी की उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी को कुछ कर रहे हैं या कर चुके हैं, जी हाँ, अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हैं या कर चुके हैं तो हमसे शेयर कीजिए। क्या आप वर्षा का जल संचयन करते हैं? क्या आपने कोई पौधा लगाया या फिर कोई छोटा सा काम जो आपको लगता है कि धरती को बेहतर बनाने में मदद करता है? अपने अनुभव, अपने सुझाव, अपने किए प्रयास हमें लिख भेजिए अपने ईमेल के थ्रू। हमारा ईमेल एड्रेस है aarkansomedia@gmail.com। आपका ये संदेश हम अपने कार्यक्रम रसभार में कानपुर शहर के साथ, देश दुनिया के साथ साझा करेंगे। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप।
4: सजना

102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। वैसे दोस्तों, इस गीत को सुनकर एक और सवाल आपसे, तो जब पहली बारिश होती है तो आपको सबसे पहले क्या याद आता है? सोचिए। मैं ही पूछ लेती हूँ कि आपको क्या मिट्टी की खुशबू याद आती है, आम के पेड़ याद आते हैं, या बचपन की कागज की नाव? हमें जरूर बताइए। और इस बात से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी अपने कानपुर की। दोस्तों, बिठूर की ओर गंगा से मिलने वाली जो नून नदी है, जो कभी अतिक्रमण, सिल्ट और उपेक्षा की वजह से लगभग अपनी पहचान खो चुकी थी, आज फिर बह चली है, इतराती हुई, इठलाती हुई और मुस्कुराती हुई। जी हाँ, पिछले वर्षों वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर अभियान के तहत ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट मैपिंग और स्थानीय लोगों की भागीदारी से इसके पुराने रास्तों को जो था वो खोजा गया और इससे पुनर्जीवन का काम शुरू कर दिया गया। सूखी जमीन ने फिर से बादलों को आवाज दी है। जी हाँ, सूखी जमीन ने फिर से बादलों को आवाज दी है। खामोश नदी ने जैसे लहरों को आवाज दी है। कुछ हाथ क्या बढ़े उसे फिर से सवारने को जनाब, मिट्टी ने मुस्कुराकर बहारों को आवाज दी है। तो आज रस बहार में आपके सोचने के लिए, आपका खुद से पूछने के लिए सवाल, पानी बचाने के लिए, वर्षा जल सहेजने के लिए या मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आपने क्या किया या क्या कर रहे हैं, सोचिएगा जरूर।

वैसे दोस्तों खुशी की बात ये है कि अपने कानपुर में जल संरक्षण और गंगा को स्वच्छ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत सीवेज प्रबंधन को बेहतर बनाने और नदी तंत्र को मजबूत करने का काम हो रहा है। वहीं बिठूर के आसपास अब जैविक खेती की ओर कई किसान कदम बढ़ा रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करके गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक तरीके से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की कोशिश भी की जा रही है। जी हां, किसी ने क्या खूब लिखा है, कहां तक जुल्म सहती ये जमी खामोश रहती है, कहां तक जुल्म सहती ये जमी खामोश रहती है, जरा आवाज दो इसको तो ये भी बोल देती है। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप।

वेल दोस्तों, ये जून का महीना एक और खूबसूरत संदेश भी हमें देता है। जी हाँ, योग का संदेश। 21 जून को पूरी दुनिया विश्व योग दिवस मनाएगी। जी हाँ, ये महीना हमें अपने शरीर, मन और प्रकृति तीनों को फिर से संतुलन में लाने का संदेश भी देता है। योग सिर्फ शरीर को ट्विस्ट करने का या आसन करने का नाम नहीं, योग तो वो एहसास है जहाँ इंसान खुद से जुड़ता है और प्रकृति के और करीब चला जाता है। वैसे अपने कानपुर में भी 9 जून से 21 जून तक योग पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सुबह सुबह लोग एक साथ योग करते नजर आ रहे हैं, जैसे पूरा शहर एक सांस में खुद को स्वस्थ करने की कोशिश में जुट चुका है। जी हाँ, सुबह की ठंडी ठंडी हवा, उगता सूरज, पेड़ों की सरसराहट और उस बीच कुछ पल का सन्नाटा, ये सब मिलकर जैसे कह रहे हो, रुक जाओ, थोड़ा अपने अंदर भी झांक लो, कुछ ढूंढ लो, फुर्सत के पल, अपने लिए कुछ योग के पल।

जी हाँ, योग भी तो यही कहता है, दिल की धड़कने सुनिए, उछलिए कूदिए, खुद फिट रहिए और अपने मस्तिष्क को भी फिट चुस्त दुरुस्त रखिए। जहाँ दोस्तों योग हमें शरीर के साथ साथ प्रकृति से जुड़ने का मैसेज देता है और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अपने कानपुर, यूपी और पूरे देश में प्लांटेशन ड्राइव्स तेजी से मूव कर रही है। जी हाँ, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज में लोग तेजी से पौधे लगा रहे ताकि आने वाले कल को और ज्यादा हरा भरा और साफ सुथरा बनाया जा सके। और साथ ही इस पहल को एक नया रूप दिया गया। जी हाँ, एक पेड़ माँ के नाम। कितना भावुक और सुंदर विचार। जब कोई पौधा अपनी माँ के नाम पर लगाया जाता है ना, तो वो सिर्फ पेड़ नहीं, एक रिश्ता बन जाता है, एक जिम्मेदारी और एक प्यार भरी याद बन जाता है। वैसे अपने यूपी, अपने कानपुर में भी इस मानसून सीजन में पौधारोपण अभियान के तहत असंख्य पौधे लगाने का लक्ष्य है इस बार। तो दोस्तों, दरख्तों को मत काटो, दरख्तों को मत काटो, ये साया देते हैं, ये वो हैं जो धूप में भी दुआ देते हैं। तो अगर आपको भी इन पेड़ों से थोड़ा सा प्यार है और थोड़ा बाकी है, तो प्लीज प्लांटेशन करिए, आगे आइए, अपने शहर को हरा भरा बनाइए। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार।

0: प्यारे दोस्तों,
1: हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
2: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
1: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
3: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जो जगाऊं अगर तुम कहो।
2: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
1: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।
0: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। वैसे दोस्तों, आज रस बहार में हमने बात की मानसून की, जल संरक्षण की, योग की और अपनी प्रकृति की विरासत की। तो एक छोटा सा सवाल, अगर प्रकृति आपको एक चिट्ठी लिखे तो उसमें क्या लिखा होगा? सोचिए। जी हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा ना आपको? तो मेरे अकॉर्डिंग शायद पृथ्वी यही लिखेगी कि मुझे बचा कर रखो, क्योंकि मैं ही तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी पूंजी हूं। तो दोस्तों, आइए इस 17 जून को हम एक ग्रीन रेजोल्यूशन लें। एक पौधा जरूर लगाएंगे, पानी की हर बूंद की कद्र करेंगे और प्रकृति को सिर्फ देखेंगे नहीं, उसे संवारेंगे भी। एक बार फिर संकल्प लेने की बारी। एक पौधा जरूर लगाएंगे, पानी की हर बूंद की कद्र करेंगे और प्रकृति को सिर्फ देखेंगे नहीं, उसे संवारेंगे भी। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप।

नेचर, योगा और कानपुर के ग्रीन एफर्ट्स की इस जर्नी में साथ निभाइए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए और नेचर से जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद विविधा के तहत भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना को लेकर मिलती हूँ आपसे।

विविधा के तहत लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अनूप जलोटा की आवाज में इस गीत के साथ।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं समाप्त होता है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात के दौरान श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए बातचीत और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तीसरे सरसंघचालक बाला साहब देवरास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनका त्यागमय जीवन, विचार और संगठनात्मक कौशल सभी का सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहारों, नीट यूजी पुनर्परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनर्परीक्षा में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में अमृत सरोवरों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान श्री योगी ने मुहर्रम के दौरान निर्धारित नियमों व मानकों का पालन करवाने पर विशेष जोर दिया है। खनन रॉयल्टी फर्जीवाड़े के गिरोह का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया। टीम ने बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र के में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि गिरोह के सदस्य असली खनन रॉयल्टी के दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी रॉयल्टी तैयार करते थे और इसके जरिए अवैध लाभ कमा रहे थे। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम शुभमन गिल और अफगानिस्तान टीम हशमतुल्ला शहीदी की कप्तानी में दोपहर 1:30 पर मुकाबले को उतरेगी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे कंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: राम राम भैया बहनी पर नाम, कैसे हैं आप सब? अरे दैया दैया, यह देखा मुस्की मारत है ना, बहुत नीक लागत है भैया। 10 बज के हो गए हैं मिनट 4 और स्वीकार करा अंजू शुक्ला के नमस्कार। कहे से कि हम लेके आए गए यही कार्यक्रम सुगंध माटी के कै बहार, और आज है बुधवार, तो ले भैया शुरू कर दे यही कि हम, अरे भैया गैर है दिल्ली, हाँ, अगर है माता रानी दर्शन करे, वैष्णो देवी और कुल घूम घाम के आए।

बहुत जगह घूमे हैं, बहुत जगह घूमे, बहुत जन पूछत रहे ना कहाँ गए रहू। हाँ गए रही यात्रा पे, बहुत नीक के सुखद यात्रा रही, भवानी माई के दर्शन बहुत नीक के भय हमका, सुंदर सुंदर, अरे जीव प्रसन्न हुई गवा। लेकिन भैया देखा जौन दिल्ली शहर में गर्मी पड़ती है का बताई, अरे दिल्ली नोएडा गाजियाबाद मेरठ कुल एकदम मतलब खौलत है। हाँ और जियोरा हम खौलत रहा, मन कहा था बस तनिक बूंद बरस जाए और चली जाए, नहीं तो अपने गाँव देश कुल नीक लागत है। हाँ तो देखा यही गौनई याद आएगा वह हमका, तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत के देते यही वाली गौनई, अपना गांव देश में जो मजा है ना, जो सुकून आनंद है कत्तव नहीं। हाँ सुना सुगंध माटी की 100.7 FM रेनबो पर।

0: भैया जौन सुकून जौन शांति जौन आनंद अपने गांव जवार में है सबके पीछे है उस हर हार में कहां। अरे भैया इतनी गर्मी इतनी भयंकर भाग दौड़ भरी जिंदगी की पूछा ना भैया जीव अकच्छा हो जाते का बताई। देखा हम तो आए गए वापस अपने गांव देश में और आप सब कहां है यही रहा जहां कब तो जाए की जरूरत ना है। देखा अब एक सुंदर से जौन है ब्रेक ले ली हाँ सुंदर के ब्रेक और बाद लौटी तो आपका बहुत सुंदर सुंदर गाँव नहीं सुनो हाँ बहुत तैयारी करके आए इस गंध माटी कार्यक्रम सुनता है और हम है अंजु शुक्ला आप सब सुनता है एफएम रेनबो 100.7 जिसका कहा थे धड़कन लखनऊ की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अब भैया ईला अरुण बहन जी गावत रही गावत रही गावत गावत चुप हो गई। अरे दैया ये तो हमारे जीव धक्कस हो जाता है, तरह नहीं करे चाहिए भाई। वही से 10 बज के हो गए हैं 17 मिनट। अब देखा बहुत जा रहे हैं जौन है श्रोता पंच हमका सुनता है और हमका मालूम है आप सबको इंतजार रहा। अरे दैया हम जाने थे भाई, सब के मन के बात जाने थे। और देखा सिद्धार्थ गोंडा ने भैया हमका सुनता है और जो है सभी हमका सुनता है अमरावती महाराष्ट्र में। हाँ अमरावती राष्ट्र से आशा पांडे बहनी भी सुनती हैं। और विकास भैया देखा कहा था कि सुगंध माटी की कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत लाजवाब झक्कास चल रहा है, अबे तो शुरू है भैया है सांग सिलेक्शन। अरे दुयटी तो गौ नहीं बजाए ही, अबे तो देखे अबे कौन कौन गौ नहीं सुनाई थे। हाँ और विकास बंसोड़े भैया भी हमका सबका सुनता है। और विकास जी के साथ है रेखा अदिति वैभव सब जने हैं हिल स्टेशन खंडाला से हैं। और ये सभी जो है बहुत दूर से हमका यानी बीड शहर महाराष्ट्र से। अरे दैया इतनी दूर से हमका सुनता मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से। अरे आप सबका राम राम भैया, यही तरह जुड़ा रहा एफएम रेनबो लखनऊ के साथ है। और सोनू परवाना भैया का कहा था प्रोग्राम सुगंध माटी की आरजे अंजू बहन जी का इस में पूरा धमाल, बहुत सराहनीय आपका प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और शैलेश कुमार भैया भी हैं और नमस्कार हैं नीलू बहनी के जो है छोटा भाई सोनू मेल करता है और खेत काम करता है। अच्छा नीलू बहनी की तबीयत नहीं ठीक है तो भैया देखा जल्दी से ठीक हो जा, उनका सबका परेशान न कर जा, तो सबे फोन और मैसेज कई कई क्या है। और देखा जल्दी ठीक हो जाइए नीक हो जाइए, हमारे सबके प्रार्थना है उनके साथ है। और मोहम्मद आसिफ भैया रामपुर कटरा बाराबंकी सोई है। अच्छा हाँ राधा राधे आशा पांडे बहनी, हाँ देखा आपका हम याद करते रहे, बहुत सुबह से कार्यक्रम अच्छा चलता है और सुगंध माटी के इंतजार रहा वह पूरा हो गया। तो बस इसी तरह बनी रहा। मोहम्मद आसिफ भैया हैदराबाद तेलंगाना से सुनता है और प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है नहु का। और दिल्ली सहरिया वाला गाना तो दिल को छू गया। और मैम आपका प्रोग्राम सुगंध माटी की बहुत अच्छा लगता है और सादिया अंसारी साहिबा अंसारी समा अंसारी सब लोग सुनता है, तो सबका हमारे राम राम। और मुकेश कश्यप भैया भी मेल कर रहे हैं। सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहनी ऋतिक बलवीर सिंह सब जने सुनता है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। और चौपाल प्रोग्राम लगता है इनका, वाह भैया तो वही तरह चौपाल जमाए रहा और बढ़िया बढ़िया गौने ही हमरे सबके माध्यम से सुनता रहा। और देखा जब बात होते लोकगीत के तो लोकगीत में बहुत सारा रंग

0: रहा थे, हमार तुहार मन के बात रहा थे, प्रकृति के रंग रहा थे, मौसम के रंग रहा थे, जौन तीज त्योहार रहा थे वो रहा थे। और जब मन के बात आवत है तो केहू रिसियाए जाए वह, तो बस यही तरह उनका गाय गाय के मनावत जा। देखा कितना बढ़िया।
1: तो अज तिलवा के बतिया तू ही हमर जान तू ही संगति।
0: अरे दैया ये तरह प्रेम से गाए दे तो का आपका खाना मिले, का लंच मिले, का डिनर मिले, अरे न पूछा, बिल्कुल मन के हो जाए।

इतने प्रेम से जो उन्हें गाय दे मनाए ले तनी प्रेम से बोले दे तो भैया कौन दुखा है कौन चाहे जितना गर्मी में चाहे जौन कुछ बनवा ले अरे दैया ये सब है जौन मासूम मासूम प्यारी प्यारी मेहरारू हरे रहा थी इनका सब का कहा चाहिए अरे तनी प्रेम से बोली बोल दे अज्जा हाल चाल पूछ लिया बस ये वही मैं प्रसन्न हो जाती मगन हो जाती आनंदमय हो जाती देखा ये जौन घर परिवार हो थे तनी तो नहीं एमुर उमुर चलते रहते और जब लड़कियां बच्चा हो जाते अरे इन्हन जौन है केहू के सुनबा नहीं करते हाँ जब धमा चौकड़ी जौन धमा चौकड़ी मचाए रहा था गर्मी की छुट्टी में और देखा अब बेसिक वाले स्कूलन में तो जौन है एक हफ्ता और बढ़ी गई छुट्टी।

छुट्टी, हाँ 24 तारीख का खुले और ओकरे बाद जो ना मुहर्रम छुट्टी पड़ जाए, शनिचर इतवार पड़ जाए, कुल मिला के जुलाई में खुले स्कूल स्कूल। हाँ और जो गर्मी छुट्टी जब बढ़ी जाते और जब चलत रहते छुट्टी, तो छुट्टी में जो ना लड़का बच्चा के तो लिए तो छुट्टी है मौज मस्ती, छुट्टी माने मौज मस्ती, पढ़ाई लिखाई से कौनो वास्ता ना है। और मम्मी हर चिल्लात रहे पढ़ लिया भैया होमवर्क कर लिया, और जो ना असाइनमेंट मिला है कही थी तो प्रोजेक्ट मिला है ओका सबका पूरा कई लेजा नहीं, तो जौन है जब स्कूल खुले के 2 दिन पहले याद आवत है तो मम्मी हरे रात रात दाई पहुँ रतिया रतिया भर बैठ के बनावत रहा थी, एहमुर कटी है ओमुर चपकई है, अरे दैया बहुत सारा काम रहते, कुल मिलाए के सारा काम सारा सरदर्दी का मम्मी हरे कर हाथे, अरे तनी पापा हरे सुन लिया तनी हाथ बटाए देवा करे, लड़किया बच्चा का बैठाए के होमवर्क उमवर्क करवाए दिया और तनी घुमावे ले जा, हाँ देखा लेकिन घाम नहीं निकलेगा भाई, घाम लाग जाए लूक लाग जाए बीमार हो जाए बिना मतलब डॉक्टर दवाई खर्चा बढ़े और परेशानियों बढ़े, और लड़का बच्चा का कुछ हो ही जाते ना तो नीक नहीं लागत, हाँ कुछ नहीं नीक लागत भाई, ना खाना बनवे मन लागे ना कोनो काम मन लागे, ये लड़का बच्चा खेलत कूदत अच्छा लागत है ना, हाँ तो भैया लड़का बच्चा हरे बस उधम तनी कम काटत जा, खेला सब मौज मस्ती करा लेकिन तनी ध्यान से आए, और तनी तनी कुछ अच्छा अच्छा कामों सीख लिया जैसे कि पेड़ पौधा लगावा, हुमा तनी सवेरे संझा पानी ओनी दे दिया, और कुछ बढ़िया बढ़िया नीक नीक गौनई कहानी एका सबका सिखत जा, हाँ और अपन ध्यान रखत जा, ठीक है देखा नाचे कूदे एक बरे जो ना एक्सरसाइज ना करे हो लड़किया बच्चा, तो देखा एक ठी पंजाबी तड़का लगाए दे, हाँ नाचत जा।

भैया 10:29 हो गए और ये 10:30 और बहुत जने हमका ईमेल भेजे हैं और ईमेल का भेजा थे सभी जौना अपने मन के बात कही के भेज देते हाँ। और जाना जब ही मन के बात आवा थे तो हमका मन कहा थे भैया ईमेल पढ़त रही लेकिन बहुत और कुछ है जौन आप सब

तक पहुंचावे के रहा थे ओकरे साथे साथे, तो भैया देखा ईमेल तो पढ़बे करब, अच्छा चला पढ़िन देते ही। महेंद्र दीपन भैया आए, यहाँ कहा था सुगंध मिट्टी की। मैम सच कहूँ तो मैं बुधवार का पूरे हफ्ते इंतजार करता हूँ। अच्छा जब शनिचर का आई थी तो कहा था शनिचर का इंतजार करता हूँ पूरे हफ्ते। हाँ यह देखा मुँह देखी बात करत जाते तू सब। हाँ वैसे महेंद्र दीपन भैया राजस्थान के नागौर जिले के रूण गाँव से जो ना लिखा था, बहुत बड़ा प्रशंसक कहा हमारे। अच्छा बहुत धन्यवाद भैया। और कहा थे मीठी आवाज सुगंध माटी का आगाज होता है तो दिन की शुरुआत खुशियों से भर जाती है। शुरुआत तो भैया सवेरे पुष्पांजलि से हो जाता है, तो हर शुरुआत सवेरे अब है 10 बजे सोए को उठा था और देखा। अरे भैया उठ जाते मजाक करते ही। आगे लिखा था आपकी प्रस्तुति देने का अंदाज इतना अनूठा और अपनापन भरा होता है कि मन प्रफुल्लित हो जाता है। और कहा था कि आप जब इस प्रोग्राम में आती है तो महफिल में चार चांद लग जाते हैं। कुछ राजस्थानी, अरे दैया अभी राजस्थानी चुनरी इलारून के सुनाए तो रहे सवे शुरुआत में। अच्छा सुनो और सुनो बे, आगे कहते हैं कि जो है बहुत बढ़िया बढ़िया बात कहे हैं, तो बस यही तरह बढ़िया बढ़िया राज जा नागौर राजस्थान में हमका सुनता है। और मुनेश कुमार राज भैया का कहते हैं भैया कहते हैं कि अच्छा जय माता दी भैया आपका एफएम रेडियो दीवाने हैं, आपके आवाज से में हमें हर कोई जाने। अंजू दीदी आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया, माता रानी ने हमको बुलाया, अरे बहुत गर्व की बात है। सही सच्ची भैया उनके बुलावा जो आवत है ना तबे मन ही हुआ पहुंच पावत। बहुत जने सोचते रहते सोचते रही जाते हैं, जब तक माई न बुलाई है ना केहू नहीं जा सकता। हम तो जो ना नवीं बार गए रे भैया। हाँ और देखा मन का सुकून और शांति बिल्कुल मिले थे। और बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, कृपा आप सब पे बनी रहा है, हम सब पे बनी रहा है, और बस यही तरह आशीर्वाद बना रहा है। और क्या चाहिए है? कुछ नहीं चाहिए भैया। और अब रोशनी रावत जी के मेल पढ़ी थे और कहा थी राम राम प्यारी अंजू दीदी। अरे राम राम रोशनी बहिनी कैसे हाँ तो, अरे हम तो बहुत नीक यही और कार्यक्रम इनका नीक लागता है। कहा थे कार्यक्रम कि मैं आपके बात कही मन को लुभा रही है। मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बभना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से हमका सुनती है, मतलब उन्नाव के रहने वाली है, चंडीगढ़ में सुनती है। हाँ और कहा थी हमारी बड़की दीदी नीलू शर्मा दीदी, गुलपशा दीदी, छुटकी बहन बबीता राव सब सुनती है और झूम रही हूँ। तो बस यही तरह झूमत रहा, आप सबका झुमावे के लिए हम बिल्कुल तैयारी कही के आई थे। हाँ और देखा मुनेश कुमार भैया दोबारा मेल कही दिया, भैया पढ़ ही ले कैदा कर दिया है, अब शांति बैठ जा चुप पे एक जगह, रेडियो वॉल्यूम कह दिया फुल और जो है गाउनई का आनंद लिया मजा लिया बस, और कुछ करे की जरूरत ना है ने। हाँ नाश्ता पानी हो अगर बना हो मिल गया हो तो करत रहा साथे साथे, चाय पकौड़ी नहीं तो चला बनारस की जलेबी खवाए दे। हाँ।

0: डॉन बात चलो।
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाए पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
7: धड़कन लखनऊ की।
8: अब भैया 10:36, अंजू शुक्ला के साथ आप सब सुनता है बुधवार के स्पेशल कार्यक्रम सुगंध माटी की। जय माता नी के हरियाणा, तनी के राजस्थान, तनी के पंजाब, तनी के मतलब भोजपुरी अवधि सब कुछ हम सुनाई थे भैया। सनिचर के तो खाली अवधि की बात होते, लेकिन देखा बत कही तो हम अवधि में करे थे भैया। देखा अवधि हमारे बहुत प्यारी वाली बोली है, बहुत जने नीक लागे थे हम बोली थे तो है नीक लागे थे ना। हाँ देखा ईमेल बतावत है आप सबके, ईमेल में जो उन्हें रोहित सोनी भैया का कहता है, कहते राम राम बहिनी का हाल चाल बा, बिल्कुल मस्त बा भैया, आपका कैसे है आप सुनावा। और ये कहा था रोहित सोनी लालबाग दुबग्गा रिंग रोड लखनऊ से हमका मेल करता है, कहा था आप स्टूडियो में आती हैं तो चार चांद लग जाते हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हैं, आई एम सो हैप्पी बहिनी। तो भैया यही तरह रोहित हैप्पी हैप्पी रहा। हाँ कौनो सैड सर्ड के होए की जरूरत ना है ना, कहे से कि एफएम रेनबो पे सवेरे से लेके रात ताई आपके मनोरंजन के पूरा इंतजाम रहा थे। हाँ और साथे साथे बहुत सारी जानकारी हो रहा थे। आज देखा कृष्णकांत भैया आए गए, हाँ कहा थे नमस्कार बोलत है, और कहा थे कि सुगंध माटी प्रोग्राम में जो भी लोकगीत आप प्ले करती हैं वो वाकई देश की मिट्टी के सुगंध का एहसास देते हैं, देश के विविध रंगों को समेटे हुए ये प्रोग्राम बड़े ही रोचक अंदाज से आपके द्वारा हम सभी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, इसके लिए अंजू जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अरे भैया धन्यवाद तो एफएम रेनबो का, आकाशवाणी के ई मंच का दे, जहां जहां पे जो उन्हें पूरे भारत के रंग समेटा रहा थे एक जगह पे, और आप सबका धन्यवाद जो हमका सबका सुनत है। कृष्णकांत भैया कैसरगंज बहराइच से हमका सुनता है और खूब फूल उल बना के भेजत है रंग बिरंगा ईमेल। अब वकील अहमद भैया आ गया, कहा था नमस्ते आपकी आवाज अच्छी लगती है, सुगंध माटी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, गौनई बहुत अच्छी बज रही, गन्ने की गुड़ाई हो रही है, बाग में आज कच्चे आम तोड़ेंगे हैं अचार के लिए। अदैया काओ बात कही दिया वकील भैया, मुँह में पानी आवता, अरे दाल भात के साथ है एक ठी आम के अचार मिल जाए, का मजा आवत है भैया। दाल भात और देसी घी का तड़का या देसी घी ऊपर से एक चम्मच भर के डाल लिया, आम के एक ठी अचार ले लिया। वैसे हम बताई सच्ची सच्ची बताई, हमारे तो एक में काम है नहीं चलते, आम के अचार के बाद वो घर एक बना अचार मिल जाए तो दो तीन ठी तो मतलब पर्याप्त है, दो तीन ठी मतलब तीन ठी तो हो इनके चाहिए। हाँ एक में एक से नहीं भैया, एक से काम ले भैया, बनाए लिया तो तनी भिजवा दे, हाँ यही आकाशवाणी में भिजवा दे, हमारे नाम की पर्ची जरूर लगाए दे तो हमका मिल जाए। हाँ सब ईमानदार मनी है कि वो एक आठी अगर निकारो ले तो कौन दिक्कत नहीं है हमका। हाँ और भैया मंसूरी कटका, वकील अहमद मंसूरी कटका हथुरी जिला सीतापुर से हम मेल करें हैं, और नाव लिखे हैं साहिबा अंसारी, शाजी अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, अमन नवाब, सबके नाव लिख के भेजते हैं। हाँ ई बढ़िया परंपरा बनाए दे गया है, सबके नाव लिख देते हैं कठी मेल में। चला अरुण कुमार भैया खमोइया हरदोई से, अरुण कुमार कुशवाहा भैया कहता है कि अंजू जी आपको एक बार फिर से नमस्कार, सुगंध माटी की कार्यक्रम वास्तव में इतना अच्छा लग रहा है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, इतना अच्छा लोक संगीत और उसमें आपकी अवधि क्या बात है, इसके लिए अंजू जी आपको फिर से धन्यवाद। अरे अरुण भैया आपका राम राम धन्यवाद है, यही तरह सुनत रहा। अविजय पाल यादव भैया का कहा थे ललहुआ लखीमपुर खीरी से, कार्यक्रम की प्रशंसा करता है, गाना बहुत मस्त लगा।

लागत है और नीना दीदी बुला लेती तो और अच्छा लागत कहा था। तो भैया नीना जिज्जी आई हैं, सबे आई हैं और देखा रत्ना जिज्जी, विनय यादव भैया, अपने विनय यादव भैया सबे रहे और जो है ओमो आवा रहे है, इनका सब का जो है मतलब बहुत अच्छे से संभालत गए और देखा इतना सुंदर सुंदर प्रोग्राम हम रहे दिल्ली नोएडा में रहे सुनते रहे। हाँ वैष्णो देवी कह रहे हूँ सुनते रहे लगाए रहे कहने में। अरे

या देखा खाए पिए में भी गर्मी के दिन में तनी संहार के ठीक गर्मी अकूत के पड़ती है ई नहीं कि हचक के खाए ले अरे भैया पिए के ध्यान रखा पानी पिया छाछ पिया नींबू पानी पिए लस्सी बना लिया आम एक पना बना ले जा बेल एक शरबत बना ले जा ये सब बहुत जरूरी है अपन ध्यान रखा जा तबीयत सब दुरुस्त रहे चाहिए हाँ और देखा कटहर उठहर के सब्जी जब बना थे ना तो तनी संभाल के खाए चाहिए हमका बहुत डर लागत है कहा बताई जो पेटवा ना ये गड़बड़ाए जाते कबो कबो हाँ यही लिए बड़ा डर लागत है तरह सब्जी खाए से तनी तुनी खाए चाहिए लिमिट में आए और देखा जो ईमेल है ये तो भैया अनलिमिटेड आवत है कहा बताई देखा मुनेश कुमार राज भैया का मेल कईयो दाई आ चुका है और कहा था कि अंजू दीदी आम खा रहे हैं खाए लियो आए क्या है दैया अरे भैया ये कौन ये जब आम के बात होत है ना तो ये आम बात नहीं रही जाते ये बहुत खास बात हो जाते है आम के नाम ना ले हाँ नहीं कार्यक्रम छोड़ छाड़ के चलिए उबे वैसे एक बात बताई जो देसी आम चूस चूस के खा एक मजा है बाल्टी भर के जो ना है पानी धई लिया और पेड़ के तोड़ के बगिया में बैठ के आम सब तनी ताजा ताजा आवत रहा वही बाल्टी में डारे जा ठीक और पूरा झुंड बनाए के बैठ जा पूरा का पूरा ग्रुप हाँ धमा चौकड़ी मचे और रकम रकम के जो ना है आम ए दुठी है पेड़े के दुठी वह पेड़े के अरे हमरे बगिया में तो बहुत रकम के आम रहे हैं नानी खिया बताया ही ना कहियो नाई हाँ और हेमा तो जो ना है बहुत आम कौन सा आम खाता मुनेश भैया ये तो नहीं लिखे लेकिन आम खाता तो भैया देखा काट के आम खाए के जो रिवाज चला है ना ये तो ठीक ठाक है मतलब सफिस्टिकेटेड वाला मामला हो जाते हैं हेमा तनी के लेकिन जो आम चूस के खाए में मजा है हाँ वो मतलब असली मजा तो वह आते है एकदम देसी अंदाज और देसी आम हो चाहिए अब मोहम्मद आसिफ भैया का कहा था तेलंगाना में सुनता है और प्रोग्राम तारीफ करे हाँ बस इडली डोसा सांभर केले के पत्ते पे खिलाते हैं पूरी आकाशवाणी लखनऊ टीम को लेके आओ है दैया भैया टिकसो कराए दिया चलिए उबे हमका का वहा हाँ, भैया आवे जाए जो टिकस है ना ये बहुत महंग पड़ जाते हैं और पूरी आकाशवाणी टीम के तो भैया तू ना लोड ले पाऊ बया जाने कि ना जाने बहुत बड़ी टीम आए अच्छा राजकमल यादव भैया का कहा था राजकमल यादव बरैया ग्राम बरैया पोस्ट सूरत गंज बाराबंकी से राम राम कहा यहाँ प्रोग्राम बहुत ही निक लगता है बहुत बहुत धन्यवाद और कहा था मैम जी आप जैसे आती हो तो जैसे गर्मी में ठंडक प्रदान करती है और बालेश्वर यादव जी के गाना लिखे हैं अरे देखा अगली बार उबे तो जरूर जो है ढूंढ के लेके उबे और हमारे साथ राम रमजान मास्टर और समीर खान भी हैं सबका हमारे राम राम प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण प्रताप सिंह भैया का कहा था आदरणीय मैडम जी काशी से सादर प्रणाम अरे बाबा के नगरी से राम राम प्रणाम आपका कहा था आपकी प्रस्तुति से कार्यक्रम अलग ही रंग आ जाता है जलेबी का टाइम खत्म हो गया लस्सी मिली अच्छा तो भैया चला लस्सी कचौड़ी उचौड़ी तो भैया बनारस में गलियन में ये सब तो कुल तो मिलते रहा थे बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप कहा थे अरुण प्रताप सिंह लल्लापुर मंगारी वाराणसी के रहने वाले श्रोता की तरफ से सभी को नमस्कार भेजे हैं तो आपको नमस्कार अरुण भैया और अशोक कुमार भैया और इनके साथ बैलिस्टर चाचा सुनता है अरुण अंजू राज अजय राज सब सुनता है और ग्राम व पोस्ट ओडारा मितौली लखीमपुर खीरी से हमका भेजे हैं राम राम कार्यक्रम की तारीफ करें बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम पालो भैया आए गए हैं नमस्कार और ये सत्यमपाल ग्राम रफातपुर जिला मुरादाबाद से सुनता है पढ़ाइयों चलती है और प्रोग्रामों का आनंद लेता है और उनको फिर से लाना जो पहली बार ससुराल गए थे जो किस्सा सुनाया था गोपा महू गांव के पड़ोस के गांव से थे उनका नाम याद नहीं आ रहा चला लेके आएंगे है वो बाबू भैया है ना उन्होंने लेके उबे अच्छा हिंदुस्तानी ब्रह्मेश भैया का कहा था ब्रह्मेश सोनी जी प्रणाम भेजे हैं पिंकू सोनी है टिकैत नगर बाराबंकी से गाने की तारीफ लिखे हैं कार्यक्रम की तारीफ लिखे हैं बहुत बहुत धन्यवाद और कुलदीप आकाश रिंकी पिंकी गुलबशा सबका जो है नमस्कार भेजे हैं और तेज बहादुर यादव भैया बिल्कुल भैया जय माता दी हाँ और कहा थे बहुत याद आवत रही आपके यहाँ और सुना रहा अरे नहीं भैया यहाँ तो धमा चौकड़ी मची रही पूरे फुल फार्म में और कहा थे कि बहुत नीक नीक गौने सुनाए रहो दीदी और तो पूरे देश के माटी की सुगंध मिल रही आ जाए और दीदी आपकी शनिवार को आए हो देखो भैया वादा नहीं करी था कोशिश कर बस और कहा थे कि हमारे मेहरारू लड़के बच्चे गाँव में हैं और गाँव मऊ शर्की जिला रायबरेली से उत्तर प्रदेश में इनके गाँव है इस समय एक गुरुग्राम हरियाणा में सुनता है तो चला भैया सबका राम राम सब जने नीके से रहा और देखा चला चला

वाह भैया वाह भैया वाह भैया बहनी, ये तो मजा मजा मजा मिलजुल के मनावे के जो उन मजा आवत है ना, वो जब मिलजुल के खावा जात है ओमा नहीं। अरे भैया मिलजुल के खाए में तो रोजे मजा ले जाता है सब जने, है कबो कबो मिलजुल के बनावे के भी तो मजा ले जैसे सभी बनाए। हाँ और देखा माई बाबू को पहले खवावत जाए, लड़किया बच्चा का पहले, ओकरे बाद अपन नंबर आवत है। और भैया

बबीता राव को भी मेल आ गया है, राधे राधे भेजे यहाँ है, कहाँ रहू बहिनी है, पता बेली कलं गोसाईगंज नवाब शहर लखनऊ यही बगलिया में है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, देखा कूद के पहुंच गया है आखिरी में है, और कहा थी मैम जी आपका प्रोग्राम हमेशा तरह बहुत नीक लग रहा है, सुगंध माटी प्रोग्राम दिल है तो प्रोग्राम दिल है तो आरजे अंजू मैम इस प्रोग्राम की धड़कन जो हम सबके दिलों में हमेशा राज करती है, बहुत बहुत धन्यवाद, वही तरह प्रेम प्यार मोहब्बत बनाए रहा है। आगे लिखा थी कि आपका प्रोग्राम मम्मी पापा भाई बहन रोशनी रावत जी महेंद्र भाई राजस्थान से नीलू शर्मा जी गुलफ शादी सब लोग साथ में सुन रहे हैं, प्रोग्राम कतई जहर लग रहा है। अरे दैया जहर ओहर के बात ना करा, खाली अमृत अमृत रहा यहाँ है, और देखा ये अमृत जो बरसावे जाते ये आवत है सीधा पहाड़ से, एक ठीक कुमाऊनी सॉन्ग बजाने का बड़ा मन कर रहा है, जो उन पहाड़ी बीट होते ना मैं अलग तरह की मिठास होते, मानते नहीं मानते हाँ हाँ, लेकिन एक बात बताए दी अभी पहाड़ कुल में जो उन ठंडी वंडी और जो उन हसीन वादिया ये सब तो बस फिल्मन में रहा है खाली, बाकी कहानी किताब में रह गया है, हूँ कुल इतनी गर्मी की का बताई, वैष्णो देवी घर है जैसे दिल्ली गर्मी वैसे हूँ गर्मी, अरे दैया ये जो अब चला पहले गाँव नहीं सुना।

भैया चाहे जौन रेशमी कढ़ाईदार पहन लिया, बनारसी अनारसी सब पहन लिया, लेकिन जौन काटन की साड़ी यानी सूती साड़ी में जौन बात यह है ना, और जौन आराम है गर्मी में वो जौन है। और कतोना ने भाई देखा बहुत तरह तरह के बात हुई गए, बतकही हुई गए, और आप सबके हाल चाल हुई गए, और गौ नहीं भी हुई गए तरह तरह के है। तो सुगंध माटी कार्यक्रम में कुल मिला के हमका तो बहुत आनंद आवा, और चलत चलत अब सास ससुर जी का प्रणाम कर ली। हाँ देखा बहुत सुंदर के गौ नहीं वो नहीं दोनों जनन के नाम, हाँ आप सबके तरफ से है। तो चला सबके सास ससुर बना रहा है, सबके परिवार बना रहा है, माता रानी के आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहा है, यही तरह हंसत खेलत बना रहा, सब जने स्वस्थ रहा, मस्त रहा, जबरदस्त रहा, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल न रह जा भैया। हाँ और सुनत रहा रेनबो अगले कार्यक्रम में आई तो है सुन रहा।

0: नमस्कार श्रोताओं, एफएम रेनबो कानपुर पर कार्यक्रम हमनवा के साथ आज मैं हूं आपकी अपनी सारिका शुक्ला और आज मेरी हमनवा है रितु।
1: नमस्कार है सारिका तुम्हें और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को भी।
0: नमस्कार नमस्कार रितु तुम्हें भी और हमारे सभी सुनने वाले रेनबो लवर्स को भी। वैसे रितु, जैसा कि तुम जानती हो कि मैं सुबह से ही स्टूडियो में हूँ, अपने लिसनर के साथ कनेक्टेड हूँ सुबह से, और तुम अभी कुछ समय पहले बाहर से आई हो, तो क्या है बाहर मौसम हाल, शेयर करो हमसे।
1: सारिका, इस वक्त तो धूप भी अपने तेवर दिखाने लगी है, बाहर तो जून की गर्मी कहीं ना कहीं अपना असर दिखा रही है, पर एफएम रेनबो के स्टूडियो में हमारे लिसनर्स के प्यार और अपनेपन की ठंडी ठंडी बयार बहती रहती है। यहाँ आते ही सारी थकान जैसे कहीं दूर चली जाती है।
0: राइट रितु, और जब मौसम गर्म हो, कामकाज की रफ्तार तेज हो और दिन लंबे लगने लगे, तब ना जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है अपने तन और मन दोनों का ही ख्याल रखने की, और तब समझ में आती है कि योग जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
1: सही कहा सारिका, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में योग हमें रुकना, खुद को सुनना और भीतर की शांति को महसूस करना सिखाता है। यानी सांसों में जब ठहराव आता है तो मन को भी एक अजीब सा सुकून मिल जाता है।
0: बिल्कुल रितु, वैसे योग केवल आसन नहीं, ये तो जीवन को भी बेहतर बनाने का हुनर सिखाता है। और अब से बस 3 दिन बाद हम सेलिब्रेट करेंगे विश्व योग दिवस, तो योग रोज हर रोज करना है।
1: और सारिका, फिलहाल आज के हमनवा कार्यक्रम में हम जिन टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं, क्यों ना हम अपने लिसनर्स को बता दे दें।
0: बिल्कुल, शेयर कर लेते हैं अपने लिसनर्स से।
1: तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से मुकाबला दिवस है आज सारिका, इस पर हम बात करेंगे।
0: बिल्कुल, और साथ ही क्या है एआई पर अति निर्भरता, हमारे भविष्य के लिए सही है या गलत, इस पर भी हम करेंगे बातचीत।
1: वहीं बात करेंगे कि क्या है उचित डाइनिंग एटिकेट्स,
0: और सड़क सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, इस पर भी होगी चर्चा।
1: साथ ही हम करेंगे बात स्वयं सहायता समूह की,
0: पर जो हमारा स्पेशल सेगमेंट है रितु, वो है रेसिपी का, वो भी हम लेकर आएंगे अपने लिसनर्स के लिए। पर आज हम क्या बनाएंगे वो थोड़ा सा सीक्रेट है। वैसे हमें हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं, हमें उनकी भी रेसिपी का रहेगा इंतजार। तो अगर हमारे लिसनर्स भी अपनी कोई रेसिपी हमसे शेयर करना चाहते हैं
1: या फिर आज के पूरे प्रोग्राम में ही हमसे अपने विचारों के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमें आप अपनी ईमेल लिख कर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।
0: तो हमें आपकी मेल का रहेगा इंतजार,
1: पर प्रोग्राम के पहले गीत का आपका इंतजार यही होता है खत्म।

0: तो भाई सारिका, इंतजार तो खत्म हो चुका है और बढ़ते हैं हम नवा प्रोग्राम में अपने अगले टॉपिक की तरफ। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मरुस्थलीकरण और सूखे से मुकाबला करने का विश्व दिवस।
1: बिल्कुल
0: है ना। और ये दिवस जो है वो हर वर्ष 17 जून

0: उनको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और इनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल रितु, और इस दिन की जो शुरुआत है वो यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 1994 में की गई थी, और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के तहत की गई थी, और साल 1995 में इसे विश्व भर में मनाया गया पहली बार, और तब से इसकी शुरुआत हुई और अब ये लगातार हर साल मनाया जाता है आज के दिन।
0: बिल्कुल सारिका, और धरती केवल हमारे रहने का स्थान नहीं है बल्कि हमारे जीवन का आधार है। हमारी खेती, भोजन, जल, वन और जैव विविधता सभी भूमि पर निर्भर है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, अंधाधुंध वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी उपजाऊ भूमि तेजी से बंजर होती जा रही है, और यही प्रक्रिया मरुस्थलीकरण जो है वो कहलाती है।
1: ऋतु, मरुस्थलीकरण का अर्थ केवल रेगिस्तान का फैलना नहीं है बल्कि वो स्थिति है जब उपजाऊ भूमि अपनी उत्पादकता खोने लगती है, जब मिट्टी की उर्वरता घट जाती है, पेड़ पौधे नष्ट होते हैं और जल स्रोत सूखने लगते हैं, तब पर्यावरण और मानव जीवन दोनों ही प्रभावित होने लगते हैं।
0: बिल्कुल, और सारिका, सूखा भी इसी समस्या का एक गंभीर रूप है। जब लंबे समय तक पर्याप्त वर्षा नहीं होती तो जल संकट उत्पन्न हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव किसानों, पशुपालकों और आम नागरिकों पर पड़ता है। फसलें नष्ट होती हैं, पशुओं के लिए चारा कम हो जाता है और लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और आज विश्व के अनेक देश मरुस्थलीकरण और सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर बात करें भारत की, तो भारत का एक बड़ा भूभाग भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित है, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तो ये समस्या अधिक देखने को मिल ही जाती है, और यदि समय रहते इसका जो दुष्प्रभाव है ये कम ना किया गया और इसके लिए कठिन या कठोर नियम ना बनाए गए, एक उचित कदम ना उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में खाद्यान्न और जल संकट और अधिक गंभीर भी हो सकता है।
0: बिल्कुल सारिका, और इस चुनौती का समाधान हमारे सामूहिक प्रयासों में छिपा है। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा, जल संरक्षण को अपनाना होगा और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, मिट्टी संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल, साथ ही हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी के संसाधन असीमित नहीं है। यदि हम आज प्रकृति का संरक्षण करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का आनंद ले सकेंगी। तो पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों का दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है।
0: तो आइए इस विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि जल की एक एक बूंद का महत्व समझेंगे, पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे और अपनी धरती को हरा भरा बनाए रखने में सक्रिय योगदान देंगे।
1: जल है तो कल है, वृक्ष है तो जीवन है, और उपजाऊ धरती है तो मानवता का भविष्य सुरक्षित है।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है हम नवा, और आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ हूँ मैं सारिका शुक्ला, और मेरी हम नवा है
1: ऋतु। तो सारिका, मेरा एक सवाल है तुमसे। आज का युग तकनीक का युग है और AI हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कृषि, उद्योग, परिवहन और मनोरंजन जैसे लगभग हर क्षेत्र में AI का उपयोग बढ़ रहा है। तो प्रश्न ये है तुमसे कि क्या AI पर बढ़ती अति निर्भरता हमारे भविष्य के लिए सही है?
0: इस विषय का आंसर पूरी तरह से ऋतु हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि AI के अनेक जहाँ लाभ हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं इससे। AI ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को मानव जैसी सोच, सीखने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान करती है। आज चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, स्मार्टफोन, ऑनलाइन शॉपिंग और नेविगेशन स्टेप्स और कई ऐसी सेवाएं AI की हेल्प से ही संचालित हो रही हैं।
1: और AI बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है। इससे कार्यों की गति बढ़ती है और मानवीय गलतियां कम होती हैं। AI आधारित प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इससे शिक्षा अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी बनती है।
0: हाँ, और ऋतु, बीमारियों की पहचान, चिकित्सा रिपोर्टों का

0: विश्लेषण और उपचार संबंधी सुझाव देने में एआई डॉक्टरों की कहीं ना कहीं सहायता कर रहा है। इसमें मरीजों को बेहतर सेवाएं भी मिल रही हैं। एआई किसानों को मौसम, फसल, रोग, सिंचाई और उत्पादन संबंधी भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा है, जिससे खेती अधिक लाभदायक बन रही है।
1: बिल्कुल, और उद्योग में स्वचालन से उत्पादन क्षमता बढ़ती है, लागत कम होती है और नई तकनीकों के विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही सारिका, एआई पर अति निर्भरता के नुकसान भी हैं।
0: बिल्कुल, अभी तो हमने कई फायदे शेयर किए और ऐसा लगा कि भाई एआई बहुत ज्यादा लाभदायक है, लेकिन
1: नहीं, नहीं।
0: इसके कुछ अगर हम बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड हो जाएंगे तो इसके कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं।
1: मतलब वही कि यदि लोग हर छोटे छोटे बड़े एक छोटे बड़े काम के लिए एआई पर डिपेंड हो जाएं तो उनकी सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
0: बिल्कुल, और कई ऐसे काम जो पहले मनुष्य करते थे अब मशीनें और एआई कर रहे हैं। इससे कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। और एआई सिस्टम बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करते हैं। यदि इसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो निजता और सुरक्षा दोनों ही प्रभावित हो सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा सारिका, और एआई कभी कभी गलत या भ्रामक जानकारी भी दे सकता है। यदि लोग बिना सत्यापन के उस पर भरोसा करने लगे तो गलत निर्णय लिए जा सकते हैं। एआई बुद्धिमान हो सकता है लेकिन उसमें भावनाएं, नैतिक मूल्य और मानवीय संवेदनशीलता नहीं होती। कई परिस्थितियों में मानवीय निर्णय ही सर्वोत्तम होते हैं।
0: बिल्कुल ऋतु, और एआई को मानव का विकल्प नहीं बल्कि सहयोगी तो माना जाना जा सकता है और माना जाना चाहिए, पर इसका उद्देश्य मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ावा देना है, ना कि उन्हें समाप्त करना। हमें एआई का जो यूज है उसे ज्ञान प्राप्त करने, उत्पादकता बढ़ाने और समस्याओं के समाधान के लिए करना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय में मानवीय विवेक और जो नैतिकता को महत्व देना बहुत जरूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल, तो एआई का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करें, डिजिटल और तकनीकी साक्षरता बढ़ाएं, नई तकनीकों के साथ नए कौशल सीखें, महत्वपूर्ण निर्णयों में मानवीय सोच को प्राथमिकता दें, डेटा सुरक्षा और नैतिक मानकों का पालन करें।
0: एआई पर अति निर्भरता भविष्य के लिए लाभदायक हो सकती है यदि वो संतुलित और जिम्मेदार तरीके से हो। एआई हमारे जीवन को आसान, तेज और अधिक प्रभावी बना सकता है, लेकिन उस पर पूर्ण निर्भरता उचित नहीं है।
1: बिल्कुल, और मानव बुद्धि, रचनात्मकता, संवेदनशीलता और नैतिकता का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भविष्य का आदर्श मार्ग यही है कि मनुष्य और एआई मिलकर कार्य करें ताकि तकनीकी प्रगति के साथ साथ मानवीय मूल्यों की भी रक्षा हो सके। और अब
0: जो बिल्कुल हमारे लिस्टनर्स हैं, उनको
1: चाहते हैं।
0: हाँ,
1: बिल्कुल।

0: वैसे ऋतु, जिंदगी की राहें खूबसूरत तब लगती हैं जब सफर सुरक्षित हो और मंजिल सलामत। क्या कहोगी इस बारे में?
1: भाई हर दिन हम सड़क पर निकलते हैं सारिका, कोई स्कूल जाता है, कोई दफ्तर, कोई बाजार और कोई अपने सपनों की तलाश में किसी नई मंजिल की ओर। लेकिन इन सभी ट्रेवलिंग के बीच एक बात सबसे जरूरी है, सुरक्षित रहना और दूसरों को सुरक्षित रखना।
0: बिल्कुल रितु, सड़क सुरक्षा केवल नियमों की किताब का अध्याय नहीं है, बल्कि ये जीवन की रक्षा का एक संकल्प भी है। सड़क पर हमारी एक छोटी सी लापरवाही न केवल हमें बल्कि कई दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है।
1: और यही कारण है कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में सड़क सुरक्षा को अपनी आदत बनाना बेहद आवश्यक हो जाता है। जब हम टू व्हीलर यूज करते हैं तो हेलमेट हमारे सुरक्षा कवच के रूप में होता है।
0: वहीं फोर व्हीलर की बात करें तो सीट बेल्ट केवल एक बेल्ट नहीं बल्कि दुर्घटना के समय जीवन बचाने वाली ढाल बन जाती है। वहीं रोड पर ट्रैफिक सिग्नल के अकॉर्डिंग रुक जाना शायद हमें मंजिल तक थोड़ा देर से पहुंचाए, लेकिन ये श्योर है कि सुरक्षित जरूर पहुंचाएगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा सारिका तुमने, एक अच्छे नागरिक की पहचान केवल नियमों का पालन करने से नहीं होती बल्कि दूसरों को भी नियमों के प्रति अवेयर करने से होती है। जब हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताते हैं तो हम एक सुरक्षित समाज के निर्माण में योगदान दे रहे होते हैं।
0: बिल्कुल, और सड़क पर चलते समय कुछ छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा अंतर भी पैदा कर सकती हैं, जैसे कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का यूज ना करना, फास्ट स्पीड से बचना, नशे की हालत में वाहन ना चलाना, और पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देना, और साथ ही साथ एम्बुलेंस है या फिर आपातकालीन व्हीकल्स हैं इनको तुरंत रास्ता देना, ये सब एक संवेदनशील नागरिक होने की पहचान होती है।
1: और भारत में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण हजारों लोगों की जान चली जाती है। इनमें से कई दुर्घटनाएं केवल थोड़ी सी सावधानी बरतने से रोकी जा सकती हैं। तो जरूरी है कि हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि ट्रैफिक रूल्स को खुद फॉलो करेंगे और इसके प्रति लोगों को भी अवेयर करेंगे।
0: तो रफ्तार से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा, क्योंकि मंजिल से पहले जिंदगी है। तो सड़क सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पर अपने विचार के साथ हमसे जुड़ रहे हैं कानपुर शहरवासी शुभम दीक्षित।
2: हेलो लिसनर्स, माय नेम इज शुभम दीक्षित, मैं आप ही के बीच कानपुर का एक निवासी हूँ। आज आपसे अपने कुछ थॉट शेयर कर रहा हूँ कि एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान उसकी अधिकारों से नहीं उसकी जिम्मेदारियों से भी होती है। और जब जहाँ तक बात आती है रोड सेफ्टी की, तो हम सब की एक छोटी सी सजगता, एक छोटा सा प्रिकॉशन

क्वेश्चन, छोटा सा कंसर्न किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकता है। एज अ सिटीजन हम ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करते रहें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते रहें, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट और हेलमेट ज़रूर पहने, अपने दाएं बाएं देखकर चलाएं, ऐसा कोई रैश ड्राइविंग ना करें, कोई लेन शिफ्टिंग ना करें, स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन, जो आजकल बहुत ट्रेंड हो चुका है लोगों का, मोबाइल फ़ोन से दूरी बरतें। हम सड़क पर पैदल चलने वालों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को और थोड़ा महिलाओं को, लेबर्स को थोड़ा रास्ता दें जिससे वो अपना ध्यान से रोड क्रॉस कर सकें या रोड पे चल सकें। इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता दें। हमारा छोटा सा किया हुआ काम किसी के लिए ज़िंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। जैसा कि ट्रैफिक सिग्नल्स, आजकल ट्रैफिक का हाल मेट्रो शहरों में बहुत बुरा है, तभी भी हम कोशिश करें कि हमारे जो, अगर एक छोटे से स्टेप से या छोटे से हमारा 5 मिनट लेट होने से किसी एम्बुलेंस को रास्ता मिलता है या किसी ऐसे व्हीकल को रास्ता मिलता है जिसमें कोई इमरजेंसी पर्सन जा रहा है, किसी को फर्स्ट एड चाहिए या किसी को इस तरह से कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो हमको अपना दायित्व ज़रूर निभाना चाहिए। सोसाइटी के प्रति हमारा जो एक कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए, रोड सेफ्टी के नियमों का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए रोड से जिससे हम या हमारे इर्द गिर्द चलने वाले लोग कभी किसी परेशानी में आए। थैंक यू, ये मेरा एक छोटा सा थॉट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू, बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम।

0: और सारिका, अब हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह की, है ना। तो कहा जाता है कि एक और एक मिलकर सिर्फ दो नहीं बल्कि 11 बन जाते हैं। यही बात स्वयं सहायता समूहों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। स्वयं सहायता समूह यानी ऐसे लोगों का छोटा सा समूह जो नियमित बचत करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और मिलकर आर्थिक रूप से मजबूत बनने की दिशा में काम करते हैं।
1: बिल्कुल, जब लोग अपने हौसलों को पहचानते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और यही सोच इन्हें आगे लेकर आती है और स्वयं सहायता समूह की दुनिया में इनको जोड़ देती है। जहां लोगों की मेहनत सपनों को पंख देते हैं, वहीं ये समूह यानी SHG आमतौर पर 10 से 20 लोग होते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करके वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और ये समूह इन जो लोग हैं इनको आत्मनिर्भर बनाते हैं। जब एक आदमी अगर व्यक्ति उठता है तो उसकी मेहनत की हर किरण, कहते भी हैं कि अंधेरों में भी रोशनी फैला देती है।
0: हाँ सारिका, आज देश के गांव और कस्बों में लाखों लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है, कोई डेयरी चला रहे हैं, तो कोई अचार पापड़ मसाले बना रहे हैं और हस्तशिल्प उत्पाद बनाकर अपनी पहचान बना रहे हैं। इन समूहों के माध्यम से लोगों को बचत की आदत, बैंकिंग सेवाओं की जानकारी और स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं।
1: बिल्कुल, वैसे रितु अपने कानपुर में कई लगभग 5,000 से ज्यादा SHG ग्रुप्स सक्रिय हैं जो लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि त्रिनेत्र, ये SHG हस्तनिर्मित बेल्ट का संग्रह प्रस्तुत करता है। वहीं वर्तिका SHG पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जरूरी चीजें जैसे कि गोबर से हवन सामग्री, फूलों से अगरबत्तियां और मूर्तियां लोगों तक प्रोवाइड करवा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें लाइफ केयर SHG की, तो ये रोजगार के साथ साथ लोगों को मासिक धर्म स्वास्थ्य पर भी जागरूकता फैला रहा है और इससे रिलेटेड पैड्स का निर्माण कर रहा है।
0: हाँ सारिका, लेकिन स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है। ये लोगों में आत्मविश्वास जगाते हैं, नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं और उन्हें समाज में अपनी बात रखने का मंच भी प्रदान करते हैं। और यही कारण है कि आज स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुके हैं।
1: बिल्कुल, तो क्यों ना हम भी सामूहिक प्रयास और सहयोग की इस भावना को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब लोग साथ मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो बदलाव की राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। पर इस वक्त जो सबसे ज्यादा आसान है रितु, वो क्या है?
0: बिल्कुल, सॉन्ग प्ले करना।

0: तो सारिका, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर हम इसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। विषय है उचित डाइनिंग एटिकेट्स, अर्थात भोजन करते समय अपनाए जाने वाले अच्छे शिष्टाचार।
1: बिल्कुल रितु, एक पुरानी कहावत भी याद आ रही है कि योर मैनर्स स्पीक बिफोर यू स्पीक, यानी आपके संस्कार और आपका व्यवहार आपके शब्दों से पहले आपकी पहचान बना देता है। और यही बात डाइनिंग टेबल पर भी लागू होती है कि हम कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं और दूसरों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर कैसा व्यवहार करते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व का दर्पण बन जाता है।
0: बिल्कुल, और आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम अक्सर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, मोबाइल फोन देखते रहते हैं या भोजन करते समय पूरी तरह वहां पर प्रेजेंट नहीं रहते। लेकिन डाइनिंग एटिकेट हमें सिखाता है कि भोजन केवल पेट भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी भी है।
1: बिल्कुल, सबसे पहला नियम है कि हम जब भोजन करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हाथ धोना है साफ

0: सुथरे कपड़े पहनने हैं और क्या मेंटेन करके रखना है, यानी कि क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। भोजन से पहले अगर हम हाथ साफ करेंगे और साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि गंदगी से दूर रहेंगे, कीटाणु आसपास नहीं आएंगे, बैक्टीरिया नहीं होंगे, और भोजन वाली जगह को स्वच्छ रखना है। अच्छी आदतों की सबसे बड़ी निशानी और डाइनिंग टेबल पर बैठने या फिर भोजन करने से पहले की जो सबसे अच्छी आदत है वो ये है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है।
1: और दूसरा है कि रिस्पेक्ट फॉर फूड। हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकें। फूड वेस्टेज न केवल संसाधनों की बर्बादी है बल्कि ये उन लोगों के प्रति असंवेदनशीलता भी है जिन्हें दो वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है। और ये बात सबसे बड़ी बात है, मतलब इम्पोर्टेंट है सारिका मेरी नजर में, कि खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल रितु, मैंने ना कहीं कहीं कई बार ऐसा देखा है कि सड़क के किनारे अगर कहीं भोजन है तो कुछ लोग क्या होते हैं कि उस रोटी को भी साफ करके रख लेते हैं अपने लिए। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमें भोजन को वेस्ट नहीं करना है। और भोजन करते समय मुंह बंद करके चबाना, जोर जोर से आवाज ना करना, मुंह में भोजन होने पर बात ना करना, और दूसरों के खाने की तारीफ पर टिप्पणी,
1: तरीके पर,
0: बिल्कुल तरीके पर भी, और अगर वो आपकी आपके भोजन की तारीफ कर रहा है तो उस पर भी हमें थैंक यू या इस तरह के कुछ अपने एक्सप्रेशंस हैं वो उन्हें शो करना है।
1: जैसे कि तुमने अभी कहा ना कि प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी जैसे छोटे छोटे शब्द हमारे व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। यदि कोई भोजन सर्व कर रहा है तो उसका धन्यवाद करना हमारी विनम्रता को दर्शाता है।
0: बिल्कुल रितु, और आज के डिजिटल युग में एक और महत्वपूर्ण एटिकेट है, नो मोबाइल एट द डाइनिंग टेबल। परिवार के साथ अगर हम भोजन कर रहे हैं तो वो समय मोबाइल फोन का नहीं होता है। मोबाइल फोन से दूरी उस समय बहुत है जरूरी।
1: इससे न केवल भोजन का आनंद बढ़ता है बल्कि परिवार के सदस्यों के साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन भी मजबूत होता है। और सारिका बता दें कि इस समय ये बहुत चल रहा है कि बच्चे हमारे जो हैं वो मोबाइल देख करके खाना खाते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हम कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उन्हें कोई स्वाद का पता ही नहीं चलता है, है ना। तो ये जरूरी है कि आप मोबाइल को हटाएं, मतलब जिस वक्त आप खाना खा रहे हैं उस वक्त बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी ना दें।
0: बिल्कुल, आजकल देखा जाता है कि साल साल दो दो साल के बच्चे भी मोबाइल का यूज करके ही खाना खाते हैं, उससे पहले उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता। तो अच्छे डाइनिंग एटिकेट हमें केवल भोजन करना नहीं सिखाते बल्कि जीवन में अनुशासन, सम्मान और संवेदनशीलता का पाठ भी पढ़ा जाते हैं। ये छोटी छोटी आदतें हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और हमें एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाती हैं।
1: गुड फूड फिल्स द स्टमक बट गुड मैनर्स विन हर्ट्स।
0: क्या बात है।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए।
2: जुड़ गए हैं कहने के लिए अपनी रेसिपी 102.2 FM रेनबो कानपुर पर। हम आ पहुंचे हैं सेगमेंट, इस विशेष सेगमेंट में जहां पर हम शेयर करते हैं एक बढ़िया सी रेसिपी, लेकिन हमारे कई लिसनर्स अपनी रेसिपी के साथ हमसे जुड़ गए हैं।
3: तो ये रेसिपी है रोली की और इन्होंने छोले बेसन टिक्की की रेसिपी भेजी है। करना ये है कि बॉयल्ड छोले आपको मैश, बॉयल्ड छोले लेना है, उन्हें मैश कर लेना है अच्छे से, और उन्हें क्या करना है कि बेसन के साथ उनको मिक्स करना है। और इसके साथ आपको प्याज जो है वो छोटी छोटी सी उसमें काटना है, रेड चिलीज लेना है, धनिया पाउडर लेना है, मूंगफली के दाने लेने हैं रोस्टेड किए हुए, और उनको थोड़ा सा क्रश भी कर लेना है, और साथ में आपको स्वादानुसार नमक लेना है, धनिया की पत्ती, चाट मसाला, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर क्या करना है कि इसको आपको टिक्की जैसा, जैसे हम खाते हैं मार्केट में, टिक्की जैसा आपको बना लेना है, और फिर तवे पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और धीमी गैस पर शैलो फ्राई करेंगे इन टिक्की को, और फिर उसके बाद चटनी और दही के साथ इसे हम सर्व करेंगे।
2: क्या बात है रोली, बहुत अच्छी रेसिपी आपने शेयर की है, उम्मीद है हमारे लिसनर्स को भी पसंद आई होगी, वो भी ट्राई करेंगे, और हमारी अगली जो श्रोता हैं वो भी जुड़ गई हैं अपनी रेसिपी के साथ, और ये हैं मेहर निगम। इन्होंने क्या शेयर किया है रितु, बताइए।
3: देखिए इन्होंने लिखा है कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्वादिष्ट हाई प्रोटीन और हेल्दी रेसिपी, देसी क्रिस्पी रोटी टैकोस। ये रेसिपी लगभग 280 कैलोरी और 18 ग्राम प्रोटीन देती है, इसलिए स्वाद के साथ साथ सेहत भी पूरा ध्यान रखती है। वाह क्या बात है,
2: तो इन्होंने ध्यान रखकर हर अपनी कैलोरीज का इन्होंने शेयर किया है। इन्होंने आगे सामग्री लिखी है कि पेटी के लिए 1.5 कप उबला हुआ राजमा, 150 ग्राम लो फैट पनीर, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 से 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, थोड़ा पुदीना और हरा धनिया लेना है।
3: और साथ में इन्होंने मसाले लिखे हैं, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, और नमक को स्वादानुसार लेना है।
2: बिल्कुल, और टैकोस के लिए इन्होंने क्या लिखा है, 4 मल्टीग्रेन या साधारण रोटियां लेनी है आपको, 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ चीज, थोड़ा सा लेट्यूज या सलाद पत्ता लेने हैं आपको, और पतले कटे हुए टमाटर महीन चॉप्ड लेने हैं।
3: और इन्होंने बनाने की विधि लिखी है कि सबसे पहले राजमा, पनीर, लहसुन, अदरक, सोया सॉस, सभी मसाले और नमक को मिक्सर में डालकर बिना पानी मिलाए हल्का दरदरा पीस लें, इसमें नींबू का रस मिलाकर मिश्रण को 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांट लें और पेटी का आकार दे दें।
2: बिल्कुल, और अब एक नॉन स्टिक तवे पर हल्का तेल लगाकर इन पेटीज को मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेक लें।
3: इसके बाद दूसरे तवे पर कद्दूकस किया हुआ चीज गोल आकार में फैलाएं, उसके ऊपर एक रोटी रखें और चीज को पिघलने दें ताकि रोटी के नीचे एक कुरकुरी चीज की परत बन जाए।
2: और अब रोटी पर सलाद पत्ता, टमाटर और एक पैटी रखें, रोटी को टैको की तरह मोड़े और 1 मिनट के लिए हल्का सा दोनों ओर से सेक लें।
3: और अगर चाहें तो इन्होंने लिखा है तो बस ऐसे वैसे इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर चाहें तो आप एक आसान एग मेयो डिप भी बना सकते हैं, लेकिन हम अपने श्रोताओं को बता रहे हैं कि वेज ही बनाए है ना, क्योंकि हर श्रोता हमारे नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो बस लीजिए, आपके देसी क्रिस्पी रोटी टैकोस तैयार है, बाहर से कुरकुरे, अंदर से स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर। तो इसे
2: साथ में लिखा, इसे जरूर आजमाइए और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लीजिए। बिल्कुल लेंगे आनंद हम भी, हमारे लिसनर्स भी। धन्यवाद है मेहर जी आपको कि आपने इतनी बढ़िया सी रेसिपी हमसे शेयर की।

0: इसी के साथ कार्यक्रम हम नवासी दीजिए इजाजत सारिका शुक्ला
1: और ऋतु निगम को स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। पिछले 9 साल में सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुलिस ने जिस तरह से कार्य किया है वो मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बना है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में 9 साल में 2.25 लाख पुलिसकर्मियों की भर्तियां पूरी पारदर्शिता भेदभाव के बिना ही की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों की सुविधा पर ध्यान दिया है, ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहारों, नीट यूजी पुनर्परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट परीक्षार्थियों के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने मुहर्रम को लेकर कहा है कि जुलूस

आगामी पर्व त्योहारों नीट यूजी पुनर्परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट परीक्षार्थियों के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने मुहर्रम को लेकर कहा है कि जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन और तेज आवाज वाले डीजे की अनुमति नहीं होगी। साथ ही शांति और सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के तहत महोबा में योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आज सूर्य मंदिर परिसर में सुबह 6 बजे आयोजित योग शिविर में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया। जिले में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन होगा। अफगानिस्तान और भारत के बीच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

कोई देर किए हुए शालिनी हाजिर है प्रोग्राम शत्रुपाल लेकर, और आज हम क्या करते हैं, चटपटी बातें। चटपटी बातें तो हर रोज करते हैं, लेकिन आज हम इन बातों के साथ इन चीजों को चटपटा कैसे बनाएं, टेस्टी कैसा बनाएं, उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि आज है बुधवार, है ना। आप वेट भी करते होंगे कि आज कौन सी रेसिपी बताई जाएगी और उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान। नुकसान वाली चीज तो हम लेते ही नहीं, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप। कोई भी चीज हो लिमिट से ज्यादा होता है ना दोस्तों, तो इस बात का तो सभी को खास ध्यान रखना चाहिए। तो आज शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को प्यारे से ट्रैक के साथ, और क्या होंगी बातें आज आपसे चटपटी वाली, हेल्दी वाली, वो सब इस गाने के बाद।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

मौसम गर्मी का हो और खाने पीने की बात की जाए तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए आसान, स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी। जी हाँ, जिसे आसानी से हम घर पे बना सकते हैं। अच्छा बताइए, गर्मियों का मौसम जब चल रहा हो और ऐसे मौसम में मन करता है कि कुछ ठंडा, स्वादिष्ट और साथ ही साथ हेल्दी भी हो, खाने पीने का मन करता है ना, तो सबसे पहले जब ठंडी की बात आती है तो आप समझ गए होंगे कि कुछ हम बढ़िया सा पीने वाला बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आपको मैंगो से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप बनाते हैं, मैंगो की खीर बनाते हैं, मैंगो का शेक बनाते हैं, मैंगो को ऐसे ही ठंडा करके खाते हैं, स्मूदी, कई सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन हम आपको आज मैंगो लस्सी बताने वाले हैं। जी हाँ, जिसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? आपको मैंगो चाहिए पके हुए, बढ़िया मीठे वाले, मुंह में पानी आ जाता है ना मैंगो की बात करते हैं। और आपको एक कप ठंडा दही चाहिए, थोड़ा सा दूध चाहिए और टेस्ट के अनुसार आपको शहद चाहिए, क्योंकि शक्कर नहीं बताने वाले हम, चीनी नहीं बताने वाले, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो क्या होगा, हेल्दी कम हो जाएगा। और बर्फ के कुछ टुकड़े भी चाहिए। इतनी सारी चीजें आप इकट्ठा करिए और सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: रूपा में और अब हम बताने वाले हैं आपको मैंगो लस्सी। जी हाँ, तो चीजें इकट्ठा कर ली थी ना आपने। अब आप सोच रहे होंगे वो तो बहुत देर से करके रखी है भाई, गाने भी तो आप तक पहुंचाने हैं, फिर आप कहेंगे लो हम गाने नहीं सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या सामान रखा? एक कप पके आम के टुकड़े हो गए, एक कप आपका ठंडा दही हो गया, आधा कप ठंडा दूध हो गया, और शहद अगर आप उसमें डालना चाहते हैं, और नहीं तो मीठे मीठे आम टेस्ट कर लीजिए और वो ही सही है, उसमें कुछ अलग से आपको मीठा कुछ नहीं ऐड करना है। और हाँ, टेस्ट करने के चक्कर में ये ना हो जो काट के आपने आम के टुकड़े रखे हैं वो ख़त्म कर दें, और तीन चार बर्फ़ के टुकड़े छोटे छोटे रख लें। और अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल देना है और अच्छे से चला देना है, और फिर जब सारी चीजें मिल जाएंगी लस्सी तैयार है भाई, कुछ करना ही नहीं है। और फिर ग्लास में निकालना है, उसमें और थोड़े से बर्फ के टुकड़े डाल देने हैं, ऊपर से अगर आपको स्माइली बनाना है, जो भी चीजें हैं, थोड़ी सी आइसक्रीम भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, वो भी आप ऊपर से सर्व करने से पहले कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स को काट कर रखिए और ऊपर से डालकर सर्व करिए। क्या बात है भाई, हमने तो पीली बहुत टेस्टी बनी है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं, बनाकर देखिए तो जरा एक बार। जी हाँ, और आम जो है ना क्या करता है, स्वाद के साथ साथ हमें ऊर्जा भी देता है, दही गर्मी में ताजगी का एहसास दिलाता है। बस हाँ, ये ध्यान रखना है कि शक्कर चीनी मिठास की जगह आपको पके आम की जो नेचुरल मिठास है ना, बस उसी का इस्तेमाल करना है। तो इस गर्मी बाजार की ठंडी चीजों की जगह हम क्या करने वाले हैं, घर पर बनाने वाले हैं मैंगो लस्सी। और मैंगो लस्सी की मिठास के साथ अब सुनते हैं एक ऐसा गाना जो इस मौसम में ताजगी और मुस्कान दोनों दे दे, और ये प्यारा सा ट्रैक।

वैसे दोस्तों उम्मीद है कि जो आज हमने ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी रेसिपी आपको बताई है वो पसंद आई होगी। और गर्मियों में घर की बनी चीजों का मजा अलग होता है ना। और इसी तरह स्वाद और सेहत से जुड़ी बातें हम हमेशा लेकर आते हैं हर बुधवार। और अब हम कुछ और भी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक और ताजगी देना बहुत जरूरी है। और जब बात हो पारंपरिक और आसान पेय पदार्थ की, तो और कौन सा ऑप्शन हमारे सामने दिखता है, बताइए तो जरा। बिल्कुल सही पहचाने, सत्तू का शरबत। जी हाँ, और इसे भी हम आपको बताएंगे कि घर में कैसे कितना आसानी से बन जाता है। सत्तू का शरबत बनाना बहुत आसान है। क्या क्या चीजें चाहिए आपको? बस सत्तू चाहिए, पानी चाहिए, नींबू चाहिए, भुना जीरा चाहिए, और टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी कि स्वादानुसार आपको काला नमक चाहिए। इतनी सारी चीजें अगर आपके घर में है, और होंगी ही होंगी, इकट्ठा करिए, एक पास रखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे पेय पदार्थ बनाया जाए जो कि गर्मी में ताजगी का एहसास दिला दे। और जब नींबू की बात हो गई है ना दोस्तों, तो कौन सा गाना सुनना बनता है, ये वाला।

सत्तू का शरबत बनाना कितना आसान है, बस कितनी चीजें ही चाहिए। और ये जो रेसिपी है भी आपको बहुत पसंद आई होगी। कभी कभी पारंपरिक चीजें भी रोजमर्रा में सबसे काम की साबित होती हैं। और अब क्या करना है, अब आपको हम एक और फटाफट बनाने वाली रेसिपी बताएंगे, लेकिन एक प्यारे से ट्रैक के बाद। और हाँ, साथ में ये बताइए, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? खाली टेस्टी टेस्टी खाने की ही बात करते हैं और सोचते रहते हैं क्या आसान सी चीज़ और अच्छी चीज़ बनाई जाए। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, योग भी करते हैं, और उसके बाद समोसे, पकौड़ियाँ, पूड़ियाँ खूब मजे से धड़ल्ले से उड़ाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा आप बताइए? दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरह से हमारी भी लाइफ है। आप एक तरफ बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की अगर हैबिट है आपकी, तो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसका भी कोई फायदा नहीं है। और योग और खान पान, इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। अगर आपने अच्छे से योग किया है, खाना उसी हिसाब से आप खा रहे हैं, आप बहुत ऑयली नहीं खा रहे हैं, जंक फूड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो योग जो आप कर रहे हैं वो फायदा करेगा। और देखिए, योग की बात क्यों हो रही है, क्योंकि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं। और हम बीच बीच में आपसे को याद दिलाते रहते हैं कि भाई, अगर आप अपना अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो योग को प्रतिदिन अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास।

0: 11 बजकर 51 मिनट और 50 सेकंड का वक्त हो चला है और ये वक्त कह रहा है कि शालनी फटाफट और जो भी बातें हो चटपटी वाली वो सारी कर लो क्योंकि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो गया है। लेकिन हम कोई भी समय ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा बताइए, गर्मियों के मौसम में अक्सर मन करता है ना कि कुछ ऐसा खाना हो जो हल्का हो, स्वादिष्ट हो और जल्दी से बन जाए। तो चलिए बहुत आसान वाली रेसिपी हम आपको बताने वाले हैं, दही चावल। जी हाँ, जो कम सामान भी लगता है उसमें जल्दी भी बन जाती है और बहुत पसंद भी की जाती है और हेल्दी भी होती है। तो इसके लिए आपको पता है क्या क्या चाहिए? आपको केवल 1 कप पके हुए चावल चाहिए, 1 कप दही चाहिए, थोड़ा सा नमक चाहिए, आप जो भी नमक इस्तेमाल करती हो वो कर सकती हैं, और 1 छोटा चम्मच तेल चाहिए। अगर देसी घी का इस्तेमाल करती हैं तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी राई चाहिए, करी पत्ता चाहिए और छोटी सी लाल मिर्च या हरी मिर्च जिसका भी आपको इस्तेमाल करना हो। और बहुत आसानी से कैसे बनता है ये आपको पता है? क्या करना है आपको, जो आपका ठंडे किए हुए चावल हैं और उन चावल को एक बर्तन में लेना है, उसमें दही डाल देना है और नमक डाल देना है उसमें, और अच्छे से हाथों से उसको मिला लेना है और इसको एक्साइट कर देना है। उसके बाद एक छोटे से पैन में जो आपने घी या तेल लिया है थोड़ा सा डालना है, गैस ऑन करनी है और जब वो गर्म हो जाए उसमें राई डाल दें, करी पत्ता डाल दें और मिर्ची जो आप तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डाल दें, और जब ये तड़का एकदम तैयार हो जाए उसको दही वाले राइस में मिला दीजिए, और फिर क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है ना करी पत्ता की, आपके आप भी महसूस कर सकते हैं। और अगर आपको और स्वाद बढ़ाना है इसमें तो बारीक कटा हुआ खीरा भी बारीक काट के मिला लीजिए, अनार के दाने भी मिला सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर डेकोरेशन के लिए हरा धनिया मिला लीजिए। और देखिए, दही चावल गर्मियों का सबसे हल्का भोजन जो माना जाता है और दोपहर के खाने में काफी पसंद किया जाता है, आप घर में जरूर बनाइए। ना ज्यादा देर लगनी है, ना होनी है किसी तरह की परेशानी। तो दोस्तों, आज की रेसिपी यहीं तक। उम्मीद है कि दही चावल की जो आसान और स्वादिष्ट विधि है ये आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे जरूर बनाएंगे, ये मेरा मानना है। तो बस इस प्रोग्राम को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। नेक्स्ट वेडनेसडे आपको और ढेर सारी रेसिपी फिर से सुनने को मिलेगी। लेकिन हाँ, हमारी बात याद रखना, खान पान और योग दोनों से है गहरी दोस्ती। जो थोड़ा बहुत डगमगाएगा तो दूसरा हमारा साथ नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। जी सेवन शिखर सम्मेलन के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। भारत जी सात शिखर सम्मेलन में सहयोगी देश के तौर पर शामिल है। श्री मोदी और श्री ट्रंप के बीच पिछली बैठक अमेरिका में पिछले वर्ष फरवरी में हुई थी। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में सरकार द्वारा देश में रक्षा और सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के प्रति भारत के निर्णायक नीति को स्थापित किया है, जबकि रक्षा, आत्मनिर्भरता, सैन्य आधुनिकीकरण और सीमावर्ती अवसंरचना के विस्तार से राष्ट्र की सुरक्षा को नई मजबूती दी है। उन्होंने लिखा है कि ये 12 साल उस नए भारत की गाथा है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सजग है, अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखता है और राष्ट्रीय हितों में कोई समझौता नहीं करता। वाराणसी

आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में मांडवी तालाब पर वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जन जागरण का संदेश दिया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप मिला है। प्रत्येक

जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप मिला है। प्रत्येक नागरिक को वृक्षारोपण और स्वच्छता के कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम शुभमन गिल और अफगानिस्तान टीम हशमतुल्लाह शहीदी की कप्तानी में दोपहर 1:30 से मुकाबले में उतरेंगी दोनों टीमें और भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: 4 मिनट और 18 सेकंड का वक्त प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत शालिनी आपके साथ। तो बस आज आपको बताना है कि आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे चला रहे हैं, क्या ऐसा करते हैं कि जिससे आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ हेल्दी है, यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को आपने अपनाया है। और ये क्यों हो रही है बात, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है। तो फटाफट हमें मेल करिए fmakashwani@gmail.com पर और जुड़ जाइए FM रेनबो के साथ।
1: अज्ञान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

0: दोस्तों आप सुनिए इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के जरिए मुंतखब करदा 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकरीरी लेटर तकसीम करने के प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुल्क भर में अपनी पहचान बनाई है। पुलिस ने गुज़िश्ता 9 सालों में गुड गवर्नेंस के हदफ को हासिल करने के लिए जिस तरह काम किया है उसने मॉडल पुलिसिंग की मिसाल कायम की। जनाब योगी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत में 2.25 लाख पुलिस एहलकारों को मुकम्मल शफाफियत के साथ और बगैर किसी इम्तियाज के भर्ती किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने पुलिस एहलकारों की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की है और तरबियती सलाहियत में इजाफा किया है। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
2: यूपी पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने और उस भूमिका का हिस्सा बनने के लिए आप सबको अपने आप, हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में बोर्डों में उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े खाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है। लाखों नौजवानों को यहां नौकरी मिली है और 96 लाख

0: एमएसएमई यूनिट में फिर से पुनर्जीवित होकर के रोजगार के नए अवसरों को सृजित किया है।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अमन अमान की सूरत हाल, आने वाले त्योहारों, रियासत के 59 अजला में 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए खसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी। जनाब योगी आदित्यनाथ ने रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में नीट उम्मीदवारों के किरायों में 50% रियायत का ऐलान किया। वजीर आला ने इम्तिहान से मुतल्लिक अफवाहों, गुमराह किन मालूम या झूठे दावों को फैलाने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी का हुक्म दिया। वजीर आला ने बैनुल अक्वामी योगा डे की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुहर्रम के हवाले से वजीर आला ने कहा कि जुलूसों में असलहे की नुमाइश और ऊंची आवाज में डीजे म्यूजिक की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने अमन और हमाहंगी में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म भी किया। एनटीए के जरिए 21 जून को मुनक़िद होने वाले आइंदा नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान में शफाफियत को बढ़ाने और पेपर लीक होने के इम्कान को खत्म करने के लिए हुकूमत ने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन पैगाम रसाई को 22 जून तक रोक दिया है। एनटीए ने कहा है कि यह पाबंदी नीट के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके फौरन बाद नाफिज होगी। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को यह भी हिदायत दी गई है कि वह 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए पैगाम में तरमीम करने के फीचर को बंद कर दे। रियासत में बढ़ते हुए दर्जे हरारत और गर्मी की लहर के हालात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने बुनियादी तालीम काउंसिल से मुंसलिक स्कूलों और तस्लीम शुदा स्कूलों में गर्मियों की तातीलात 24 जून तक बढ़ा दी है। बुनियादी तालीम और सानवी तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अब गर्मियों की तातीलात हर साल 20 मई से 24 जून तक होगी और 25 जून को बाकायदा तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी। ताहम असातज़ा, शिक्षाबित्र, इंस्ट्रक्टर्स और गैर तदरीसी अमला 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में मौजूद रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल जिक्र तरक्की की है। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज इस मौजू पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है, तरक्की, एतमाद और अवामी बहबूद के 12 साल। आज इस एपिसोड में हम मुल्की विरसे के तहफ्फुज़ और फरोग के लिए हुकूमती कोशिशों पर बात कर रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया।
1: आज मुहर्रम महीने की यकूम तारीख है। ये महीना गम के लिए जाना जाता है। इसी महीने की 10 तारीख को इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को करबला में शहीद कर दिया गया था। आज यकूम मुहर्रम के मौके पर लखनऊ में शाही जरी का जुलूस शाम 7 बजे निकाला जाएगा। और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम आज अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी, जिसका मकसद वनडे सीरीज में नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल करना है। लखनऊ के एकानस स्टेडियम में कप्तान शुभमन गिल की क्यादत में हिंदुस्तान का मुकाबला हशमतुल्ला शाहिदी की अफगानिस्तान टीम से होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण.

0: एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कैसे बीत जाता है रेनबो, अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है।
2: रंग दे तुम
1: रात में, तब सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है।
3: मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को।
1: तमाम सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पर सुनना ना भूलें, सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

1:23 का वक्त हुआ है दोस्तों, और शालिनी है आपके साथ प्रोग्राम माओ छुपी तेरी बात में। और ढेर सारे लोगों के ईमेल्स आ चुके हैं और कुछ ईमेल्स तो ऐसे आए हैं जो भी प्रोग्राम हुआ है ना शत्रुपा उससे रिलेटेड आए हैं। किसी को मैंगो लस्सी बहुत पसंद आई है, तो कोई पूछ रहा है कि दही चावल में कच्चे चावल डालने या पके हुए। दोस्तों पका हुआ चावल, जी हाँ पका हुआ चावल और दही एक साथ मिक्स कर लेना है, तो आ गया ना समझ में। और राम मोहन गुप्ता जी का मेल आया है और इन्होंने हमें कहा लखीमपुर खीरी से लिखकर भेजा है, सुबह लगती दोपहरी सी और शाम जैसे आती नहीं, मौसम की मार पड़ रही ऐसी आराम मिल पाती नहीं। क्या बात है, और बहुत लंबी लाइनें हैं, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं दोस्तों। और आपने ये नहीं बताया कि आपकी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसमें क्या खास है, आप क्या करते हैं। रायबरेली ऊंचा हार धमधमा से, हेलो मैडम आज का है मेल। और इनके यहाँ 8:30 से मूसलाधार बारिश हो रही, आंधी आई है। भाई आप सभी लोग अपना ध्यान रखें क्योंकि बारिश का समय आ चुका है, और ऐसे समय में अगर आप पहले से तैयारियां कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अभी सुबह भी प्रोग्राम में बताया गया कि बारिश आने से पहले, मानसून आने से पहले आप अपने घर की छतें देख लें, दरवाजे देख लें, खिड़कियां देख लें, कहां पर पानी टपकता है, कैसे क्या सही कराने हैं। कुछ ऐसी चीजें तो नहीं घर की छत पर पड़ी हैं जिसमें पानी भर जाए और रुका रहे, पानी नालियों में ठहर ना रहा हो, क्योंकि जब बारिश आती है ना तो पता चलता है कितनी अंदरूनी साफ सफाई हमारे घर का देख लें कि वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतजाम है या नहीं, कहीं पर आपको टिन शेड लगवानी है, कहीं पर आपको पॉलिथीन डालनी है जिससे कि पानी नीचे ना आए, घर के अंदर तक पानी ना आए, ये सारी जो तैयारियां हैं वो आपको कर लेनी है। और हाँ, छाता रेनकोट जैसी चीजें अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी से लेकर रख लीजिए, बाद में महंगे हो जाते हैं। और कुछ लोग तो काम चोरी की वजह से ये नहीं लेते हैं ना ये तो अलग बात है। चलिए, और आलोक साहू जी ने ये हमें मेल किया था, जिन्होंने हमें सजग किया कि बारिश से पहले क्या क्या करना है। और मेल भाई अमरावती महाराष्ट्र से आया है प्रवीण और योगिता प्रियाली का, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, ऐसा मत करा करिए भाई। और कहां से आया है मेल, रामराज राजू भानु जी ने रायबरेली से मेल किया है, लेकिन इन्होंने अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बताया। भाई ये आप जो हमें मेल कर रहे हैं रामराज जी, आप बताएं कि सुबह से रात तक आप क्या क्या करते हैं, किस समय कसरत करते हैं, किस समय एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं। मोहम्मद आसिफ अंसारी का हैदराबाद तेलंगाना से मेल आ चुका है, और इन्होंने लिखा है कि यह सुबह 6 उठ जाते हैं और उसके बाद योग करते हैं। भाई ये बहुत जरूरी है, और आप

ऐसा करते हैं इसके लिए, और लोगों को भी बताएं कि जब आप सुबह 6 बजे उठकर योग करते हैं उससे आपको क्या क्या फायदे हैं। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की, और इसके बाद और लोगों के भी ईमेल्स लिए जाएंगे।

0: के गिन चुका हूँ जो रोज वो सितारे गिनूं, क्यों न जाने दोस्ती में दिल ना लगे सबसे
1: वास्ता। You speak English?
0: तोड़ताड़ के
1: Get

1:32 और 2 सेकंड का वक्त शालिनी आपके साथ लेकर आपके ही और छुपे तेरी बात प्रोग्राम के ईमेल्स। और प्रवीण जी का मेल आ चुका है। इन्होंने लिखा है, कम खाना खाना, रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, पैदल चलना, गाय का दूध पीना, फल फ्रूट्स खाना। वैसे इन्होंने बहुत शॉर्ट में अपनी पूरी हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बता दिया है और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो कम खाना खाना, मतलब ऐसा नहीं है कम खाना, नहीं, ओवर ईटिंग करना, जो आपको कहते ना कि हमारा पेट भी भरा हुआ है, भूख भी नहीं लगी है और सामने हमने गर्मा गर्म समोसा देखा, अरे चलो भाई थोड़ा सा खा लेते हैं, हमारा पेट भरा हुआ है, सारी चीजें हैं, अभी हमने लंच फिनिश किया है और कोई पेस्ट्री लेके आ गया, अरे भाई थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर हमारा पेट भरा हुआ है, मन भी नहीं कर रहा है कुछ खाने का, लेकिन जो स्वाद है ना, जो जबान है ना, टेस्ट, कोई चटपटी सी पेटीज खा रहा है, चलो पिज्जा मंगाया जाए। तो ये जो हैबिट है ना, इसको कम करना है, उस बात पर कहा गया कि कम खाना खाना। और हाँ, कहते कि सुबह हम जल्दी नहीं उठ पाते, भाई सुबह जल्दी उठने की टेंशन ही नहीं लेनी है आपको, रात में समय से जल्दी सो जाना है। जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी सुबह आंख जल्दी खुल जाएगी, है ना, और सारा जो रूटीन है आपका धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगा। तो चलिए, आपके भी ईमेल का है इंतजार, कर डालिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: सुनिए,
4: कहिए,
3: कहिए,
4: सुनिए,
3: सुनिए,
4: कहिए।

दोस्तों 1:45 और 20 सेकंड का वक्त, अरुण कुमार जी का मेल आ चुका है हरदोई से। हमें लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि इन्होंने इस साल एक संकल्प लिया है स्वस्थ और फिट रहना, और ये बहुत ओवरवेट थे और इनका वजन, भाई वैसे वजन कोई इतनी जल्दी अपना बताता नहीं है अरुण जी, लेकिन आपने बताया है इसके लिए तो मतलब बहुत सारा एप्रिसिएशन आपको, क्योंकि आपने अपनी बात जो बताई है। 85 किलो के थे ये, और जब से जनवरी माह से इन्होंने संकल्प लिया था और अब इनका वजन घटकर 62 kg हो गया है, और मैं हेल्दी और जवान अपने आप को महसूस करता हूँ, और इसके लिए इन्होंने अपने खान पान और जो इनके नियम थे उसमें सुधार किया। ये सुनकर कितना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, खासकर उन्हें जो ओवरवेट हैं और वजन बताते नहीं है अपना कि हमारा कितना है, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी चीज है ना, देखकर ही पता चल जाता है। आप बताओ चाहे ना बताओ, सामने वाला भाप लेता है भाई आप कहाँ जा रहे हैं, और दुख तो तब होता है जब हमारी फिटिंग के खासकर कपड़े नहीं मिलते हैं, और जब हम डांस वांस करना चाहते हैं, कहीं पैदल चलना चाहते हैं, और हमारी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, है ना, तब महसूस होता है कि भाई हमारा वजन ज्यादा है, इसे कम कर लिया जाए। लेकिन उसके लिए क्या करना है, अरुण कुमार कुशवाहा की तरह संकल्प लेना है आपको। थोड़ी सी परेशानी होगी, मुश्किल होगा कंट्रोल करना खुद पर कि सामने रखी है चीज और दिल को और जुबान को काबू करना है, तो फिर सब कुछ हो जाएगा। और योग अपनाना है आपको, जैसे ही जैसे आप सारी चीजों में सुधार करेंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी। वकील अहमद जी ने हमें मेल कर दिया है, और जिला सीतापुर से इन्होंने लिखा है, लेकिन आप ये बताइए जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसकी तो कोई बात ही नहीं, उसकी बात का आता पता ही नहीं है। जय जी का भी मेल आ चुका है, जयराम खुरवाल है ये, होली चौक उत्तम नगर से। हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बार बार जो तला भुना खाना है ना उसे बिल्कुल नहीं खाते हैं, और रोजाना कम से कम 200 किलोमीटर पैदल चलते हैं। भाई इतना कहाँ तक चल जाते हैं भैया, देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो एकदम दुबले हो जाएं। और किसका मेल आया है, सतीश अनेजा जी का मेल आ चुका है, और ये हमें सहारनपुर चंडीगढ़ से ये हमें मेल करते हैं, और लिख रहे हैं कि वक्त पर हल्का नाश्ता, फिर रात का समय पर डिनर करके, और उसके बाद 2000 कदम चलते हैं, बिल्कुल चुस्ती बनी रहती है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए इस तरह की हेल्दी जो आपकी लाइफ स्टाइल है होना बहुत जरूरी है। राधेश्याम जी का भी मेल आ चुका है, और ये अच्छा राधेश्याम शाकिया जी हैं, कासगंज से हमें लिख रहे हैं, और ये लिख रहे हैं कि ये मॉर्निंग में 1 घंटा वॉक करते हैं, और उसके बाद लौट कर ओट्स मूंग बेसन का चिल्ला चाय के साथ खाते हैं। दिन भर में 3 मील्स लेते हैं, जिसमें बेसन चना सोयाबीन जौ की 5 रोटी खाता हूँ। शाम को खाना खाने के बाद 45 मिनट छत पर ये चहलते हैं, और रात को सोने से पहले दूध में मखाने डाल कर दूध पीता हूँ। भाई देखा, ये सारी चीजें इसलिए ना कि लोग कैसे क्या करते हैं, भाई जब सुनेंगे तो थोड़ा सा तो अवेयर होंगे ही होंगे। मेल आ चुका है महेंद्र दीपेन जी का है, और इन्होंने नागौर से मेल किया है, मेरी सेहत का कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, बस सादा जीवन और मेहनत है। मैं बाहर से फास्ट फूड से पूरी तरह से दूरी बनाए रखता हूँ, घर का सात्विक भोजन विशेषकर छाछ को प्राथमिकता देता हूँ। मेरा दिन भर का काम मेहनत का है, जिसमें दिन भर शारीरिक श्रम है और वो किसी वर्कआउट से कम नहीं है, और मेरा मानना है कि मेहनत का पसीना और घर का खाना ही सबसे अच्छी दवा है। बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत खुश है आज का जो विषय है उस पर बात करने की।
मुंगीसापुर कानपुर देहात से ये लिख रहे हैं, और ये लिख रहे हैं कि पहले ये 5 बजे उठ जाते हैं, 1 किलोमीटर घूमते हैं, टहलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, इनका एक्सीडेंट हो गया है शायद, इस वजह से इधर ये टहल नहीं पाते हैं, लेकिन ठीक है, आप खाने पीने में कंट्रोल करें और जो भी एक्सरसाइज जिस भी हालत में आपसे संभव हो सके उसको अपनाइए। पिंकू सोनी जी का भी मेल आ चुका है और ये लिखे हैं कि 8 बजे उठता हूँ, अकेले की वजह से सुबह टहलना भी नहीं जा सकते हैं और रेडियो ऑन करके सुनता रहता हूँ। ये बाराबंकी से हमें लिख रहे हैं, भाई ये तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। 6 बजे से हमारा FM रेनबो की शुरुआत हो जाती है, आप टहलिए और इसको अपने साथ रखिए, क्योंकि आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हमारा रेडियो भी जाता है और ये इस आदत को आपको सुधारना है। अकेले हैं तो क्या हुआ, अपने लिए तो काफी है ना। और किसका मेल है, श्याम चौहान जी का भी मेल आया है और इन्होंने हमें दरियाबाद बाराबंकी से लिखा है, लेकिन हेल्थ की कोई बात नहीं लिखी है। चलिए अब फटाफट ये गाना सुन लेते हैं और उसके बाद फिर और लोगों के ईमेल्स भी लेंगे।

1:55 का वक्त है। अमन नवाब जी का मेल आ चुका है और संडीला से ये लिख रही हैं, और इनके हेल्दी लाइफ स्टाइल का जो मंत्र है वो हेल्दी फूड और फ्रूट्स है। इनकी फेवरेट है तुरई, कद्दू, लौकी और लौकी का रायता। इन्हें दही वाला बहुत पसंद है। पनीर भी खाती हैं, ये अंडा भी खाती हैं, और सीजनली जो फ्रूट्स हैं वो इन्हें बहुत पसंद है, इसीलिए ये बहुत खुश रहती हैं। थोड़ी बहुत ये एक्सरसाइज भी करना जानती हैं दोस्तों, और करती भी हैं। राजेश से इनका भी मेल आया हुआ है और इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखकर भेजी है कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या है। और भाई सभी लोगों ने जो अपनी फरमाइशी गानों की फरमाइश की है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बिल्कुल लेंगे। और ये तालिब अंसारी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें बाराबंकी से लिखकर भेजा है और ये फिट हैं। और बस एक चीज मैं जरूर ध्यान रखता हूँ कि बाहर का खाना मैं नहीं खाता हूँ, अगर खाना पड़ा तो साफ सुथरा, और बाकी चीज़ों का भी ये ध्यान रखते हैं तभी ये फिट हैं। और मैं लखनऊ में हेल्थ से अच्छा नहीं रहता हूँ, गांव में बहुत अच्छा। अच्छा, अगर ये लखनऊ में रहते हैं तो ये हेल्थ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। विपिन कुमार पांडे जी का मेल आया है, वारिस अली खान जी का भी मेल आ चुका है असबाग लखनऊ से, और इन्होंने लिखा है कि पैदल चलने पर आपको मधुमेह नहीं होता है। और भाई मैं टहलना मैंने शुरू किया।

बहुत दुबला भी हो गया है और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं ये भी। और भाई दोस्तों, अब इसके साथ प्रोग्राम इसको करते हैं वाइंड अप, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम वॉचमेल आपका इंतजार कर रहा है। और बढ़िया प्यारा वाला गाना, इस पर डांस करिए ताकि आप दुबले हो जाए। दुबना।

0: परिणाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www हमारे newzone.air पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
3: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
4: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
5: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त

0: फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

ये पीछे पीछे आ गई और हम आगे आगे चल रहे हैं। 2:37 और ये देखिए 38 हो चले हैं। और तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद बेबी आलिया आयान बाबू का मेल आया है। अब्दुल गफार जी का भी मेल संजय कॉलोनी खंडवा से आया है और आप प्लीज बार बार मेल ना करें। और सुनील पाठक जी का भी मेल आ गया है और भाई आपका मेल तो शामिल किया जाता है, आप कैसे कैसे कह सकते हैं कि आपका मेल नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इन्होंने हमें जगराव पंजाब से कमल दीपिका और सुच्चा भाई जी और गायवा के साथ मेल किया है। राजकमल यादव जी का भी मेल आ चुका है और शुभ दोपहर आपको भी। और इनके साथ ज्यादा कोई नहीं है। अच्छा, रमजान समीर और सावन कुमार कई लोग हैं इनके साथ में। और इन्होंने सूरतगंज बाराबंकी से हमें मेल किया है। साहिब आलम का भी बब्बन समीर के साथ में मेल आ चुका है। इन्होंने ऐशबाग लखनऊ से हमें मेल किया है। और सरावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद और ढेर सारे नामों के साथ प्यारा सा मेल आया है। और मुंबई से अहमद भाई दुखनी सफर जूही इकबाल सभी का मेल आया है। ब्रिजेश विश्वकर्मा तारा सोनाली सोनम का भी मेल टीकमगढ़ आ चुका है वहां से। और दीपेश वर्मा जी का भी मेल आया है। और भाई आप का मेल छत्तीसगढ़ से आप हमें मेल करते हैं। और पूनम ज्योति शिवांश के साथ में अजमत अली जी का भी मेल आया है और इन्होंने सीतापुर से हमें मेल किया है। आयुषी मौर्या ने भी हमें मेल किया है। और रेनू और रामेश्वर मम्मी पापा सभी लोग इनके प्रोग्राम को हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्नाव से ये हमें मेल कर रही हैं। आफ्ताब अंसारी गंग कहाँ से मेल किया है, गंज डुंडवारा से मेल किया है। और रियासत हुसैन नजमा बेग रियाजत जसपुर उत्तराखंड से मेल कर रहे हैं। सनानंद सदानंद का भी मेल आया है सुशीला देवी के साथ में। कुमार गौरव है अकोला से, इन्होंने हमें मेल किया है। मुकेश कश्यप शीतल सोनू सुरेश के साथ में दूल्हापुर से मेल किया है। और ये नरेश मल्होत्रा नीटू का भी खैल बाजार पानीपत से लक्ष्य लाडो के साथ मेल आया है। तुलसी मस्कीन का भी मेल आ चुका है इनके साथ। वीना चैतन्य चंडीगढ़ से और बिहार कॉलोनी से हमें मेल कर रहे हैं। रामेश्वर जी का मुंगिसापुर कानपुर देहात से मेल आया है। उमाकांति कमलेश के साथ ही हमें मेल कर रहे हैं। और कहाँ से मेल आया है, कहीं से जगह तो नहीं लिखी है। और गुन्नौर से आदिल और अली मुजफ्फर अली का मेल है। शाहरुख नूर अंसारी का भी मेल आ चुका है फरियाद शकील के साथ। मटकली जिला बरेली से, हरियाणा से अंकित कांगड़ा मोनी प्रिंस बोर्ड सीताराम के साथ में मेल है। और ये किसका मेल आ गया है, ये पिपरिया से कमल कांत गुप्ता का दीपा रिमझिम के साथ इन्होंने मेल किया है। ओम बघारिया जी का भी मेल आया है क्रियांश और योगेश के साथ पंजाब से ये हमें मेल कर रहे हैं। किसका मेल, टीटी मल्होत्रा जी का भी मेल चंडीगढ़ से आ गया है। और ये राजकुमार डूडी प्रमोद पुष्पेंद्र का फ्रांस हिसार से मेल आया है। दिलीप कुमार सोनी भागलपुर बिहार से हमें मेल कर रहे हैं। और अब दोस्तों गाना सुनाते ना, नहीं तो सिर्फ नाम लेते रह जाएंगे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो। लखनऊ
1: विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow,
3: धड़कन लखनऊ की।

और दोस्तों 2:51 हो चले हैं और साथ ही साथ ढेर सारे ईमेल्स आ गए हैं। और भाई कभी कभी तो ये भी सोचते हैं और कुछ लोगों की राय भी है जो बहुत सारे लोगों के नाम लिखकर दे देते हैं ना, तो जो भेज रहा है उसी का ही नाम लिया जाए। और रोज रोज वही नाम टाइम भी जाता है और ईमेल्स भी सही से हम नहीं पढ़ पाते हैं। आर्यन राज का रोहित और पीयूष के साथ मुजफ्फरपुर बिहार से मेल आया है। और वारिल मुंबई से नवाब खान इशरत जहां अजरा का मेल आ गया है। शाहरुख नूर अंसारी का भाई आपका मेल पढ़ा जा चुका है फिर भी आपने फिर से भेज दिया। शमशुल कमर राही शाहीन अदनान और गंज डुंडवारा से मेल आया है। उषा रावत जी का भी मेल आ चुका है। कोई भी फरमाइश नहीं है, अमेठी से प्यारी सी बात के साथ ये हमें मेल कर रही हैं। विजय मोहबिया कविता पेंटर बाबू के साथ खंडवा से हमें मेल कर रहे हैं। और ये नंदन कुमार जी अंकित के साथ हमें मेल कर रहे हैं बिहार से, थैंक यू मेल करने के लिए। और ये विकास बंसोड़े रेखा आदित्य का मेल महाराष्ट्र से आया है। हीरामणि वर्मा पुष्पेंद्र नोखेलाल के साथ छत्तीसगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं। और ये मेल महाराष्ट्र से हरिभाव और अनिकेत शुभांगी श्रवण का भी आ चुका है। और एक मेल महाराष्ट्र से ही है भाई, देखिए महाराष्ट्र से कितने लोग मेल कर रहे हैं। संतोष एस काले तेजस लोकेश के साथ हमें मेल कर रहे हैं। और कौशिक अस्मिता का भी मेल राजकोट गुजरात से आ चुका है। और नूर आयशा अहमद बागवान इकबाल अहमद का छोटी बलिया से मेल आया है दोस्तों। और ये आ चुका है मेल मुजर्रत जहानाज का तलहस जहानाज सीतामढ़ी बिहार से ये हमें मेल कर रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं होता है जिसका मेल छूट गया हो। यासीन अनजान का भी मेल आया है। संजय डिगिया जी का मेल संजय साहू पोचिया कला से। हनुमन सिंधे और हीरामणि वर्मा का मेल आ चुका है। और सिद्धार्थ गुढ़ाने हैं, बसंत कुमार सिन्हा है, मोहम्मद सादिक का मेल, दारा सिंह का मेल, कोमल तिवारी का मेल और हरिभाऊ का भी मेल, आर्यना मंशूर हसन का भी मेल आ चुका है। और दुर्गा राम साहू का भी मेल आया हुआ है। ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, विठल जादव, पंकज शर्मा, उत्तम कुमार भगत, नरेश मेहरा अरोरा, आर कुमार, ढेर सारे लोग जिन्होंने दोबारा क्या चौबारा पचवारा क्या क्या बोले उतनी बार मेल किया है। सोमदत्त का भी मेल है, लालगिरी का भी मेल है, हरजिंदर सिंधे हैं, लक्ष्मण लोखंडे हैं और रोशन जहां है, संजय मारकांडे, अशोक कुमार खरे, इन्होंने दोबारा नहीं किया भाई एक ही बार किया, दिनेश वर्मा, गगनदीप थांदी, जावेद अख्तर, राजेश वर्मा, इतने लोगों ने मेल किया। बलवेश पवार का भी एक ही बार मेल आया। मोहम्मद कमर, हिमकेश्वर साहू और महेंद्र प्रसाद मोदी, हरजिंदर सिंधे, सुदर्शन शाह, इतने लोगों का मेल आ चुका है। और अब प्यारी है किस बात की, प्यारे से ट्रैक की। और उसके बाद प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में होगी शालिनी आपके साथ 3 बजे से। और हाँ 3:30 से जो हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है NCERT वो सुनना बिल्कुल नहीं भूलना है, इसीलिए आधा घंटे पहले बता दिया। अपना समय देख लें और अपने काम को आगे पीछे शिफ्ट कर लें।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। गुड आफ्टरनून दोस्तों, म्यूजिक आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बॉलीवुड संगीत का विकास 1900 के दशक से आज तक। तो साझा कीजिए अपने विचार इस ईमेल आईडी पर airkansomedia@gmail.com।

0: दोस्तों, संगीत हमारी भावनाओं की भाषा है। ये हमें हंसाता है, रुलाता है, प्रेरित करता है और यादों के सफर पर ले जाता है। हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास लगभग एक सदी से भी अधिक पुराना है। इस दौरान संगीत ने तकनीक, समाज और संस्कृति के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास किया है। आज के कार्यक्रम में हम दशक दर दशक जानेंगे कि बॉलीवुड संगीत कैसे बदला, कौन कौन से कलाकारों ने इसे नई पहचान दी और किन गीतों ने इतिहास रचा। फिलहाल सुनते हैं ये ट्रैक।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

दोस्तों 1930 से 1940 की बात करें तो भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। इस फिल्म के साथ ही फिल्म संगीत का जन्म हुआ। उस समय फिल्मों में कई कई गीत होते थे और कलाकार स्वयं गाते थे। रिकॉर्डिंग की तकनीक सीमित थी, सभी कलाकार एक ही माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर गाना रिकॉर्ड करते थे। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। उस दौर के गीतों में सादगी, भावनात्मकता और भारतीयता प्रमुख थी। इसी दौर का एक गीत लीजिए, एंजॉय कीजिए। आपको बताना है फिल्म का नाम।

दोस्तों 1950 और 1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस दौर में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे और आशा भोसले जैसे महान गायकों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक धुनों

और पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत किया। गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि कविता हुआ करते थे। गीतकारों के शब्दों में साहित्य की गहराई दिखाई देती थी। इस दौर के गीत आज भी सदाबहार माने जाते हैं, क्योंकि इनमें भावनाओं की सच्चाई और संगीत की मधुरता है।

पश्चिमी संगीत का प्रभाव बढ़ रहा था। रॉक, जैज और पॉप संगीत के प्रयोग शुरू हुए। इस दौर में रोमांटिक गीतों की लोकप्रियता भी बनी रही। आ रहा है 1970 के दशक का ये रोमांटिक ट्रैक।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो।

0: मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
0: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर। पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: एक आवश्यक सूचना सुनिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए, awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

दोस्तों अब आया 1990 का दशक जो कैसेट संस्कृति का दौर था। घर घर में टेप रिकॉर्डर और वॉकमैन दिखाई देते थे। रोमांटिक फिल्मों और प्रेम गीतों का बोलबाला था। इस दौर में मेलोडी और भावनात्मक गीतों ने लोगों को संगीत से और अधिक जोड़ा। फिलहाल हम जोड़ रहे हैं आपको इस ट्रैक से।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: म्यूजिकल प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर अपनी रेडियो दोस्त रितु के साथ। दोस्तों, साल 2000 के बाद संगीत पूरी तरह डिजिटल हो गया। रिकॉर्डिंग तकनीक में क्रांति आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साउंड क्वालिटी भारतीय फिल्मों में सुनाई देने लगी। फ्यूजन संगीत का चलन बढ़ा और भारतीय संगीत वैश्विक मंच पर पहचान बनाने लगा।

वेल गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं वर्तमान दौर में। आज संगीत केवल रेडियो, टीवी या सीडी तक सीमित नहीं है। मोबाइल एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने संगीत सुनने का तरीका बदल दिया है। रैप, हिप हॉप, इंडी और फोक म्यूजिक का दौर है। आज के युवा संगीत में विविधता पसंद करते हैं। एक और लोकगीतों का आधुनिक रूप सुनने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर रैप और इलेक्ट्रॉनिक संगीत भी लोकप्रिय है।

दोस्तों, बॉलीवुड संगीत का इतिहास केवल गीतों का इतिहास नहीं है, बल्कि भारत के बदलते समाज, संस्कृति और तकनीक का इतिहास भी है। सुरों की ये यात्रा 1931 में शुरू हुई थी और आज भी नए रंगों, नए धुनों और नए प्रयोगों के साथ आगे बढ़ रही है। और हम बढ़ रहे हैं प्रोग्राम में लास्ट ट्रैक की ओर।

102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। हमारा अगला प्रोग्राम होगा आपकी पसंद, लेकिन उससे पहले सुनिए खोए हुए व्यक्ति से संबंधित एक सूचना। क्षेत्राधिकारी अपराध जनपद फतेहपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रियंका मिश्रा पत्नी प्रवीण मिश्रा निवासी ग्राम मलवा कांधी छत फतेहपुर दिनांक 15 फरवरी 2022 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 35 वर्ष, कद लगभग 150 सेंटीमीटर, इकहरा बदन और स्वस्थ शरीर है। ये हिंदी जानती हैं। इनके मिलने की संभावना प्रयागराज और कानपुर व इसके आसपास है। इनके मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें, क्षेत्राधिकारी अपराध जनपद फतेहपुर। सूचना समाप्त हुई।

एफएम रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। आपकी पसंद प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं सबसे पहले आपके लिए बरसात फिल्म का गाना, जिसे आवाज दी है कुमार सानू ने। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइशें आ चुकी हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, पिंटू, राजेंद्र सिंह, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका, परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और परिवार के सभी लोग, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। तो चलिए आप सभी की पसंद पर सुनिए बरसात फिल्म का ये ट्रैक।

आपकी पसंद प्रोग्राम में अगला गीत आ रहा है अर्पण फिल्म से, जिसे आवाज दी है अनवर ने। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइशें आई हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला और विशाल, हटौत बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, न्यू दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोडे, रेखा, अदिति, वैभव, आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे।

प्यासा सावन फिल्म का गीत आ रहा है अब आपके रेडियो और मोबाइल सेट पर। लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर की आवाजें हैं, संतोष आनंद के बोल हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के लिए हमारे पास ईमेल लिख भेजी है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा घोटके, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया। इसी के साथ जुड़ चुके हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपके पसंद प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर, और प्रोग्राम में लीजिए सुनिए इंतकाम फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र किशन का लिखा गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गीत के लिए हमारे पास ईमेल फरमाइशें आई हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया, दर्शन भाई, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश और सोनाली नारंग, खंडवा रोड सनावत से शाहबाज, अरबाज, फहरहाज, फरदीन, समीर, मोइन शेख, योगेश गुजराती, आनंद जोशी, दुर्गा प्रसाद सैनी, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से सुनना चाह है नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी। तो चलिए, आप सभी की पसंद पर पहुंच रहा है इंतकाम फिल्म का ये ट्रैक।

0: आपकी खातिर। जी हाँ, इसी फिल्म का गीत आ रहा है अब आपके रेडियो और मोबाइल सेट पर। बप्पी लहरी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। शैली शैलेंद्र का लिखा गीत है और संगीत बप्पी लहरी का। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान, नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, मोर टक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल, और बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं हमारे साथ ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा।
1: प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल।

और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

आपके पसंद प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। और दोस्तों आपके पसंद प्रोग्राम में अब लीजिए सुनिए दाग द फायर फिल्म का गाना, सुखविंदर सिंह की आवाज़ है, समीर का लिखा गीत है और संगीत राजेश रोशन का। और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइशें आ चुकी हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरीत, रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम, दानिश अंसारी, श्रद्धा नंद आर्य, अभियानंद, परमानंद राज, एस डी अंसारी, आसमा खातून, मालियान सरधना, मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।

पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत की फरमाइश आ चुकी है। सराभा नगर जालंधर से जी आर पाल और समस्त पाल परिवार, और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, निगमाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर जुड़ चुकी है हमारे साथ। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और इसी के साथ जुड़ चुके हैं पिंगावाला चौक गौराया जालंधर से ज्योति मक्कार, मन्नत भरत और करनाल सहानी। तो आप सभी की पसंद पर हम लेकर आए हैं प्यार झुकता नहीं फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ें हैं, एसएच बिहारी का लिखा गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल सिया, आरती, अरुण धोगड़े, भाव साहब धोगड़े, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से जुड़ चुके हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। इसी के साथ हमारे पास फरमाइश आई है ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह की। आप सभी ने सुनना चाहा है नाइट इन लंदन फिल्म का गाना, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

आपकी पसंद प्रोग्राम में अब लीजिए सुनिए बुढ़ा मिल गया फिल्म का गाना, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है आई है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक, आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, सीता और गीता, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह जुड़ चुके हैं अभी भी हमारे साथ। तो चलिए आप सभी की पसंद पर हम पहुंचा रहे हैं आप तक बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये ट्रैक।

वो कौन थी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा है और मदन मोहन ने दिया है संगीत। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहा से रमेश्वर कठहरिया, उमाकांति कठहरिया, कमलेश कठहरिया, निशा कठहरिया, प्रज्ञा कठहरिया और प्रतिमा कठहरिया। गांव खर कड़ा चौबीसी से जुड़ चुके हैं गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट, तमन्ना कांगड़ा और डोंडी लोहारा बालोद से देव जाटव, राधिका जाटव और आरती जाटव।

तो दोस्तों समय हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, तो आपकी पसंद प्रोग्राम से अपनी रेडियो दोस्त रितु को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हमारे अगले प्रोग्राम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, शाम के 5 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। मायगांव के एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट से दिखाई पड़ती है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने किया। इस मौके पर लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। श्री खन्ना ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में देश विकास के नए आयाम हासिल कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। लखनऊ स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चल रही पंजीकरण प्रक्रिया को 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 5 और 2 विशेष चरणों में होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत पहले चरण की च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग 2 जुलाई तक होगी, जबकि सीट अलॉटमेंट 4 जुलाई को किया जाएगा। वहीं सीट कन्फर्मेशन एवं फ्रीज एवं सीट फ्लोट 4 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगा। लखनऊ पुलिस ने पहली मुहर्रम के शाही जुलूस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत आज शहर के कई रास्तों पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। पहली मुहर्रम का शाही जुलूस आज शाम 7 बजे से बड़ा इमामबाड़ा से शुरू होकर रूमी गेट और छोटा इमामबाड़ा पर जाकर समाप्त होगा। इस दौरान कई मार्गों पर भी यातायात प्रतिबंधित रहेगा। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM Rainbow.
3: I am संध्या त्रिगुनी. बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की.
4: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ. पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताज़ा जानकारियाँ भी देता है. That's why I love FM रेनबो.
5: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
6: पहुंचाते हैं हम. और एक दौर जो आता था ना, तब वो जो टॉप 10 गाने होते थे, वो पूरे गाने जो हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. और आज इस प्रोग्राम में हम आपको 2020 के टॉप 10 सॉन्ग्स पूरे के पूरे पहुंचाएंगे. और वो गाने किस फिल्म के थे, किस पे फिल्माए गए थे, कौन से उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे, कौन उसके लिरिसिस्ट थे, बहुत सारी चीजें हैं जो उस गानों से रिलेटेड हम बात करेंगे. और उस गानों को भी हम पहुंचाने वाले हैं आप तक, जिसमें से आ रहा है टॉप ऑफ द टॉप्स में पोजीशन नंबर 1 पे ये ट्रैक.

इस प्रोग्राम में हम आपको 2020 के टॉप 10 सॉन्ग्स पूरे के पूरे पहुंचाएंगे, और वो गाने किस फिल्म के थे, किस पे फिल्म आए गए थे, कौन से उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे, कौन उसके लिरिसिस्ट थे, बहुत सारी चीजें हैं जो उस गानों से रिलेटेड हम बात करेंगे, और उस गानों को भी हम पहुंचाने वाले हैं आप तक, जिसमें से आ रहा है टॉप ऑफ द टॉप्स में पोजीशन नंबर 1 पे ये ट्रैक।

ये जो गाना है दिल बेचारा मूवी का, और इस गाने की जो खासियत है वो ये है कि इसका म्यूजिक जो है वो ARMR ने दिया था, कंपोज किया था उन्होंने, और साथ ही साथ इसमें गाया भी था गाना जी अरिजीत के साथ। और ये गाना जो था वो सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था बल्कि इमोशंस का एक सफर था

0: विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।

0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
0: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा।
1: अंदाज है सबसे निराला,
0: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
1: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: अच्छा, कह सकते हैं कि ये जो एक इरा था, यानी ये जो साल था 2020 का, इसमें बहुत सारे गाने जो हिंदी फिल्मों के थे वो उतने ज्यादा हिट नहीं हुए जितने कि जो नॉन फिल्मी ट्रैक थे। जैसे कि अभी आपने

आला सुना, बी प्राक का जमाना आया, वो जो दौर था वो इतना लोगों के सर पे चढ़ के बोला कि लोग बस उन गानों के दीवाने हो गए। जैसे कि अगर हम गुरु रंधावा के इस ट्रैक की बात करें तो इस गाने ने भी भाई कोई भी ऐसी महफिल नहीं थी, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जहाँ पे अपना जलवा ना बिखेरा हो। और इसकी जो बीट थी, इसका जो नोरा फतेही का डांस था, साथ में गुरु रंधावा की जो एक एक्टिंग है, जो उनके डांस स्टेप थे, बहुत ही सिंपल से थे, लेकिन लोगों ने इतने ज्यादा पसंद किए कि इसको ला के रख दिया टॉप नंबर 4 पे। तो सुन ले।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: शिद्दत मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है।
1: बारिश में भीगता सतर आया।
0: शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।
2: और आपको वक्त बता दें, 5:25 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है टॉप 10 तरन में आपके साथ, और नेक्स्ट टॉप 10 का ट्रैक नंबर 4 आप तक।

0: जी
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
5: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
4: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: क्या बात है, आजकल टाइम से घर?
8: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
7: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
8: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
9: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए, तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।

अच्छा देखिए 5:34 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है टॉप 10 तरनों में आपके साथ, और 2020 के जो टॉप 10 सॉन्ग थे वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन 2020 मतलब अब देखिए आजकल के जो सॉन्ग्स होते हैं और आजकल का जो दौर है वो बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है। अब देखिए कि कब 2025 आया था और कब 2026 की आज 17 जून हो गई, मतलब मिड हो गया, और इसी तरह जिंदगी बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन उस दौर के जो गाने होते थे ना, वो हम आपको बता रहे हैं कि उस दौर के जो गाने होते थे वो इतने छोटे छोटे होते थे कि मतलब 4 मिनट, 3.5 मिनट, 4.5 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। तो हमने ये सोचा कि क्या उस दौर में लोग गाने कम कम लिखते थे, या जो म्यूजिशियन थे उनको लगता था कि भाई कम कम म्यूजिक जाएगी, कम कम लिमिट के गाने बजाओ, कुछ इस तरह का होता था क्या? देखिए बुर्जु खलीफा जो अभी आपने ट्रैक एंजॉय किया, ये मतलब इतना बढ़िया डांस ट्रैक था कि इसमें जो जब भी हमने आपसे बताया कि पार्टी होती थी या कुछ होती थी तो ये गाना जरूर प्ले होता था, इतना एनर्जेटिक वोकल ने इस गाने को पार्टी एंथम बना दिया था। निकिता गांधी और शशि ने तो क्या बढ़िया गाना गाया था। लेकिन अब जो ट्रैक आप तक आने वाला है वो भी जो डांस लवर्स है ना उनके लिए ये गाना किसी ट्रीट से कम नहीं होता है। पंजाबी बीट्स और पावरफुल कोरियोग्राफी के साथ ये ट्रैक हर डीजे प्लेलिस्ट का एक हिस्सा बन गया था, नहीं बन गया है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोग डांस फ्लोर पे जाएं और इस गाने की फरमाइश ना करें, इस गाने पर उनके जो कदम हैं, उनके जो पैर हैं वो ना थिरकें। यस, ट्रैक कौन सा? ये वाला 5:35 प्रोग्राम टॉप 10।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

वैसे अगर 2020 की बात करें तो उसमें कुछ गाने ऐसे थे जो बिल्कुल पेपी नंबर्स थे, कुछ गाने ऐसे थे जो बहुत ही सूदिंग नंबर थे, और काफी ऐसे बोल थे उसमें कि जो हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रैक हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, उसके जो बोल हैं, उसका एक एक जो बोल है ना, उस पर जब आप ध्यान देते हैं और बहुत ही गहरी, बहुत ही तन्हाई में कहीं बैठकर लाइट को ऑफ करके आप बहुत ही ध्यान से सुनते हैं ना, तो समझ में आता है कि भाई ये जो गाना लिखा गया होगा क्या सोचकर लिखा गया होगा। लेकिन कहते हैं ना कि लिखने से ज्यादा जब गायक उस गाने को गाता है तो उस गाने में जान गायक ही डालता है, उसकी जो आवाज का अंदाज होता है वो उस गाने को हिट बना देता है। अब इसमें अरिजीत की जो आवाज है और उनका जो स्टाइल है, उनका जो एक गहरा, एक कहते ना कि एक कनेक्शन होता है हर गाने से, वो इस गाने में साफ सुनाई दे रहा है। नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन साफ सुनाई दे रहा है, और एक एक वर्ड इसका जो है, जो उन्होंने अदा किया है अपनी ज़ुबान से, जो उनका वोकल है ना, मतलब इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि बस जैसे ही इस गाने को हम प्ले करेंगे आप कहेंगे यस, ये गाना था उस दौर में टॉप 10 की हिट लिस्ट में। तो ट्रैक कौन सा है सुना दे।

0: 107. डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

और 5:54 हो चुके हैं। टॉप 20 जो 2020 में टॉप 10 गाने थे वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको ये जो शो है वो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और अब सॉन्ग नंबर 10 के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। सुनते रहिए रेनबो द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ। नेक्स्ट प्रोग्राम है शाम अवध तरन्नुम आपके साथ।

0: शिद्दत मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है।
1: बारिश में भीगता सतर आया।
0: शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने कहा है कि यह वितरण केंद्र की प्रमुख रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार को औपचारिक बनाना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। पीएमओ ने कहा है कि इस योजना से देशभर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली है। मऊ, हापुड़, अमरोहा और गौतम बुद्ध में केंद्र सरकार के 12 वर्ष तथा प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन कल्याणकारी एवं विकास परक योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन जन प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास की नई दिशा स्थापित हुई है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। बनायू जिले के थाना उझानी क्षेत्र में ग्राम बुटला के पास आज एक ट्रैक्टर और ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज बनायू में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनायू में हुई दुर्घटना में जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में आज खेले जा रहे भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे एक दिवसीय मैच में शुभमन गिल और ईशान के किशन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का लक्ष्य रखा है। भारतीय टीम 49.5 ओवर में 402 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 19 जून से 21 जून तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो, घंटे 93.7।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक ए प्लस प्लस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में पीसीओडी और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: बजकर 4 मिनट हो गए हैं और शाम्यावत लेकर हाजिर है तरन्नुम, और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से शेर के साथ। हवा में इत्र की महक और अदब की जुबान, हवा में इत्र की महक और अदब की जुबान, लखनऊ के लोगों में बसती है पूरे अवध की जान। तो आइए सुनते हैं इसी खूबसूरत शेर पर ये खूबसूरत सा नगमा।

अवध, यानी एक ऐसी जगह जहां पर आपको हर मजहब की हर संस्कृति नजर आती है। अभी देखिए, कल बड़ा मंगल था, भंडारे थे, लोग खूब भंडारों को खा रहे थे, एक दूसरे को शरबत पिला रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। और आज, आज बुधवार है, आज मुहर्रम की पहली तारीख है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों की याद में शाही जुलूस निकाला जाएगा। ऐसा ही है अवध। आप देखिए, चौक की गलियां हो, छोटे इमामबाड़े से लेके बड़े इमामबाड़े तक, लोग दिलोजान से जुटे हैं। कोई खाना खिला रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, लोग एक दूसरे को बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। ये वही अवध है जहां पे आपको बड़ा मंगल भी दिखाई देता है, जहां पर आपको मुहर्रम भी नजर आता है। और इसलिए ये बात हमने आपसे की क्योंकि आज मुहर्रम पर जब जुलूस निकलेगा, आपसे कुछ ही देर में 7 बजे मुहर्रम में जो शाही जरी का जुलूस निकलने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे डायवर्जन हैं जो पुराने लखनऊ में होंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तभी आप उधर जाइए, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा काम नहीं है तो फिर आप उधर जाने से बचिए। अब डायवर्जन कहाँ कहाँ होंगे ये भी हम आपको बता दें। सीतापुर रोड की ओर से आने वाले जितने भी वाहन हैं वो डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से पक्का पुल होते हुए बड़ा इमामबाड़ा की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन्हें डालीगंज ओवर ब्रिज से चौराहा नंबर 8 IT चौराहे से होकर ही जाना होगा। दूसरी चीज ये है कि हरदोई की तरफ से आने वाले सभी प्रकार के वाहन कोनेश्वर चौराहे से घंटा घर नहीं जा सकेंगे, इन्हें चौक मेडिकल क्रॉस होकर जाना पड़ेगा। अब कैसरबाग से सीतापुर की ओर जाने वाले वाहन पक्का पुल की ओर नहीं जा सकेंगे, इन्हें डालीगंज पुल से इक्का तांगा स्टैंड, नदवा बंधा से बाएं IT चौराहा, कपूर थला चौराहा और मड़ियाव होकर ही जाना होगा। हुसैनाबाद की ओर से आने वाले जितने भी वाहन हैं वो हुसैनाबाद तिराहे से छोटा इमाम बड़ा होकर घंटा घर की तरफ नहीं जा सकेंगे। लेकिन एक चीज है जो जा सकती है और आ सकती है, वो है आपसी भाईचारा, आपसी मेल जोल, जो हमारे अवध की आन बान और शान है। और ये जो ट्रैक हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस ट्रैक में सारी चीजें समाहित हैं। जी हाँ, इसमें राम भी हैं, इसमें रहीम भी हैं, इसमें अली भी हैं और इसमें राधा रानी भी हैं। तो आइए सुनते हैं ये ट्रैक।

और दोस्तों अवध की जमीन को आप क्या कहेंगे, इसके आसमान को आप क्या कहेंगे, जितने भी कसीदे पढ़ लिए जाएं, जितनी भी कविताएं लिख ली जाएं, जितने भी शेर इसके ऊपर लिख लिए जाएं, उतने ही कम नजर आते हैं।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाए पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: और दोस्तों आपको बता दें 6:17 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शामी अवध, और बहुत ही खास जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले हम आपको दे दें, उसके बाद फिर इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 6:30 से यानी 6:30 से आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत हेडिंगले लीड्स में भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। लेकिन जो प्रोग्राम है हमारा वो आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप ऐसे ही सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ये वक्त है इसमें एक और भी बहुत खास इन्फॉर्मेशन है जो हम आप तक पहुंचा दें, और ये जो खास इन्फॉर्मेशन है वो है हमारी और आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई। देखिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक, और योगा को प्रमोट करने के लिए देश भर में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि हर इंसान निरोग रहे, खुश रहे। ऐसे में LU के योग डिपार्टमेंट ने खास वर्कशॉप का आयोजन किया था। इसमें खास तौर पर जो त्रातक है वो क्रिया जो है उस पर जोर दिया गया था। अब ये त्रातक क्रिया क्या है, ये एक एंशियंट योगिक क्लींजिंग टेक्निक है और मेडिटेशन प्रैक्टिस है। ये कैसे आपकी आईसाइट को इम्प्रूव करता है, आपको जो मतलब अगर आपकी निगाह कमजोर हो रही है तो इतना इफेक्टिव है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं अगर ये क्रिया आप करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो कहते हैं ना लोग कि एकाग्रता नहीं हो पाती, किसी भी काम में एक तरफ से दिल नहीं लग पाता है, तो आपके जो मन की चंचल वृत्तियां हैं उनको कंट्रोल करता है ये योगा, एकाग्रता बढ़ाता है। और साथ ही साथ जब आप ठहर जाते हैं, हमारा और आपका जो जहन है वो जब रिलैक्स हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट हैं जो हमारी और आपकी लाइफ को कामयाब बनाने की ओर अग्रसर करते हैं, कामयाब बनाने की तरफ लेकर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपके पैसे बच सकते हैं, क्योंकि जब आप योग करेंगे तो फिर आप निरोग रहेंगे और फिर डॉक्टर भी आपसे दूर रहेंगे। लेकिन ये कि जो मेल मुलाकातों का सिलसिला है ये ऐसे ही जारी रखिए। 6:19 नेक्स्ट ट्रैक आप तक।

अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें दिल करता है कि भाई बहुत सारे लोग हों, खूब मौज मस्ती करें, ऐसा दिल करता है ना। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जब आप शामिल होते हैं और जब उसकी पिक्चर आती है, न्यूज़पेपर पे आती है या सोशल मीडिया पे डाली जाती है और बहुत ज्यादा मॉब होती है, भीड़ होती है, क्राउड होती है और उसमें आप नहीं भी दिखाई दे रहे होते ना, तब भी आप कहते हैं अरे ये जो पीछे खड़ा ना, इसके पीछे जो सर दिख रहा है, उसके जो बाल दिख रहे हैं, उनमें से वो जो बाल है ना वो मेरे हैं। और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि वो जो जोश होता है ना, वो जो एक अंदाज होता है वो बिल्कुल अलग होता है। उसमें कहीं ना कहीं अगर इंसान की हाथ न से एक उंगली भी नजर आ जाती है तो लोग कहते हैं भाई इसमें हम शामिल हुए थे। तो अब ऐसे ही कुछ होने वाला है, कहाँ होने वाला है ये भी हम आपको बता दें। और ये जो चीज होने वाली है ये होने वाली है चौक में, यस, चौक के गलियों से गुजरने वाली है विशेष यानी स्पेशल फूड हेरिटेज वॉक। और इसका जो आयोजन है ना वो कल होने वाला है। अब इसमें क्या क्या होना है, इसमें ये होना है कि भाई इसमें अगर आपको जाना है यानी स्पेशल फूड हेरिटेज वॉक में अगर आप चाह रहे हैं इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए, चौक की गलियों में जाने के लिए, तो इसकी शुरुआत होने वाली है राजा की ठंडाई से और समाप्ति होगी गोल दरवाजे पे। और इस पदयात्रा में शुल्क लगने वाला है, इसका शुल्क है 300 रुपए पर पर्सन, यानी अगर आप जाएंगे तो आपके 300 रुपए हो गए और आपके दोस्त अहबाब जो हैं या आपके फैमिली के जितने भी लोग जाना चाह रहे हैं इस हेरिटेज वॉक में शामिल होना चाह रहे हैं तो उसमें भी 300 रुपए शुल्क लगेगा। इंटरेस्टेड अगर पार्टिसिपेंट चाहते हैं इसमें आप कैसे जाएं, तो इसमें आपको हम बता दें कि UPSTDC के लैंडलाइन नंबर है 9149099890। इस पे आप कॉल कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और चले जाइए। लेकिन आपको साथ में ये भी बता दें भाई कि अपने देश का गौरव बढ़ गया है और देश में जो शहर है ना लखनऊ, उसका गौरव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है, अभी हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सूची में शामिल हो गया है अपने लखनऊ का नाम, अपने शहर का नाम। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी ऐसी चीजें होंगी तो फिर हमारे लखनऊ का जो नाम है वो ऐसे ही आगे आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। और आपको अभी कुछ ही देर पहले हमने बताया था कि कुछ ही देर में आंखों देखा हाल जो है मैच का, यानी जो भारत और नीदरलैंड के बीच होने वाला है T20 क्रिकेट मैच, उसका आंखों देखा हाल हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले पहुंचा रहे हैं ट्रैक, कौन वाला, ये वाला।

0: to spend some time on the wicket and then you can take the game ahead. I think that is the key and hopefully, you know, we'll bat well.
1: Any changes to your lineup for today?
0: Yes, we do have one change. Arundhati is resting today. Place of our Nandini Sharma is back.
1: All right. And just finally, against Netherlands, first time you're meeting them, no complacency.
0: Well, I know they are a very good side. They are the one, you know, who is improving every single game. And hopefully, you know, we play our best cricket.
1: Yeah, I saw you guys practicing hard yesterday. All the very best to your team today.
0: Thank you so much.
1: Right, just a reminder of what has happened out here. The Netherlands, under gloomy skies, have won the toss and they will be bowling first.
2: लीड्स में द नेदरलैंड्स की कप्तान बेबेटा दे लीड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया।
3: जी हाँ बिल्कुल, और क्या ये सही फैसला हो सकता है क्योंकि सिर्फ सरफेस को नहीं स्काई को भी देखा गया है। हमें बताएंगी मिस माथुर वैशाली, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड डिसीजन टू बोल फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया?
4: मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नीदरलैंड के पास उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं एंड देखा गया कि हालांकि इस पिच पे सबसे ज़्यादा विकेट स्पिनर्स को ही मिली हैं एंड उन्होंने जो चेंज किया है वो है मीडियम पेसर का एंड right. अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों पे पहले ही इस पिच के ऊपर वोमेंस टी ट्वेंटी ब्लास्ट 2026 में अभी हुआ है रिसेंटली एंड इसमें 26 स्पिनर्स पे बोल्ड विकेट्स मिली हैं एंड 17 फास्ट बॉलर्स को मिली है। तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स को खिलाना ज़्यादा बेटर था बट यहाँ पे चेंज हुआ है तो बेटर हमारी इंडियन टीम के लिए बहुत बेटर है ये और हमारी शेफाली वर्मा के लिए एक महत्वपूर्ण चांस है क्योंकि वो मीडियम पेसर को जैसे हिट करती है हम सब बखूबी जानते हैं एंड उसके बाद जब हमारी जेनिमा आती है तो वो किसी को टिकने नहीं देती है बॉलर को और वहाँ उसके बाद जो बारी संभालती है हमारी हरमनप्रीत कौर तो वहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए भारतीय टीम की क्योंकि ऊपर के ही बैटर आज इस लाइनअप को खत्म करके आ सकते हैं। और इस पिच पे खासियत और है, यहाँ का जो स्कोर अगर हम देखें तो 150 तक गया है।
3: राइट, बट वुड दैट बी इनफ इज अ बिगर क्वेश्चन नाउ दैट इंडिया बैटिंग फर्स्ट। कर्नल भूपराज जी, इंडिया हैज आल्सो मेड अ चेंज बट दैट्स इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। अरुंधति रेड्डी इज गिविंग वे टू नंदिनी शर्मा टू बी इन द साइड। द यंग नंदिनी शर्मा गेटिंग वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस वुड बी एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट टू वॉच। Having said that, India batting first. Do you also have a number in mind looking at that surface?
5: Actually, the last match we won very easily. But there were two concerns, you know. The first, as far as the batting is concerned, Shefali didn't score runs, nor did Jemima.
3: Right.
5: So, it is good that we are batting first. At least both of them will get a good hit and get some confidence back before the next match against South Africa.
3: Which is the bigger one?
5: Yeah, that is the main, you know, sort of knockout match. Whosoever wins that match goes into the semi-final. That's the way things stand now. Now, as far as the change in the bowling is concerned, a second concern in the last match was that the fast bowlers did not bowl well. So there is a change in the fast bowlers, but I would have expected three fast bowlers to play in this match, keeping the wicket in mind.
2: Absolutely. और इस बीच हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1084-2342-1085 और इसके साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार।
6: नमस्कार, मैं आपका रेगुलर श्रोता लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ कारंजा घर के से।
2: जी एक बार फिर से आपका स्वागत है।
6: अब पहले मैच में तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा बात सही है लेकिन हमारा जो पेस बॉलिंग का मसला है उसमें थोड़ा हम कहीं पे भी कमजोर लग रहे बाकी टीमों से और शेफाली वर्मा और जिमिमा राजपूत का जो फॉर्म है उसमें थोड़ी चिंताजनक बात है। तो इसके लिए क्या आविष्कार कार्यवाही इन दोनों पेस बॉलरों के लिए कुछ करेंगे, इसके ऊपर मेरा सवाल है।
2: जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। एक तो तब्दीली हो चुकी है, नंदिनी आई है, WPL में काफी प्रभावित किया था। उसके अलावा शेफाली का ये जो साल रहा है, पिछले साल बहुत कंसिस्टेंट थी T20s में लेकिन इस साल कंसिस्टेंसी मिसिंग रही है।
7: ठीक है, बट शी इज अ प्रूवन कस्टमर, काफी रन बना चुकी है एंड शी इज गॉट क्रेडिबिलिटी और बैकग्राउंड उनका जो है। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आप एक सीजन रन नहीं किया कि उसको बिठा दो, और ऐसा नहीं होता। सो कंसिस्टेंसी, द सिलेक्टर्स हैव शोन कंसिस्टेंसी, टीम मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंसी दिखाई एंड देयर आर सो मेनी मैचेस और क्रिकेटर्स नीड टू बी बैक्ड, स्पेशली समबडी लाइक शेफाली। दैट्स व्हाई द टॉस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया गोइंग टू बैट बिग टेस्ट, बट अगेन एज हरमनप्रीत सेड, यू हैव टू स्टिक टू योर विकेट एंड प्ले टू द कंडीशंस।
3: Absolutely. And coming back to Vaishali here, now Nandini Sharma will be seen in the ball in hand a little later. You mentioned 150 and you also mentioned that the spinners are the ones who are doing the talking.

0: here. So gone are the days where if you talk about England, it's the Pacers who raise their collar up.
1: Maybe, but I can say ki यहाँ पे सबसे मेन है दोनों टीमें आज पहला मुकाबला खेल रही है T20 का एंड इस मुकाबले को हम सेकंड मैच की तरह नहीं एक जीत के मुकाबले की तरफ देखते हुए नजर देख सकते हैं क्योंकि हम दोनों टीमें एक दूसरे के प्लेयर्स को नहीं जानती हैं ओडीआई में खेला है उन्होंने बट ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जितना स्कोर हमारे बैटर और पार्टनरशिप बनेगी वो हमारे आगे आने वाले मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो साउथ अफ्रीका टीम के साथ आने वाला है तो यहाँ की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है शेफाली वर्मा का बल्ला चलना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जेमिमा का भी बल्ला चलना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी स्मिति का चल रहा है क्योंकि पार्टनरशिप अगर बनती है तो ही रन आगे हमारे बढ़ते हैं और स्कोरबोर्ड पर दिखते हैं तो ये अगर नंदिनी शर्मा की बात करें तो नंदिनी एक बहुत अच्छा चांस मिला है उनको खेलने का और रेड्डी की जगह पे उनकी अगर उनकी लास्ट मैच की अगर फील्डिंग की बात करें और बॉलिंग की बात करें तो वो उतनी खास रही नहीं एज कम्पेयर टू आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड नंदिनी उस जगह को उस स्थान को बखूबी निभाएंगी और आज जिस तरह की पिच है तो देखा जाता है कि स्किट भी होता है बॉल इस पिच पे तो वो चीज देखने को भी मिल सकती है नंदिनी शर्मा से एंड उसके साथ हमारी जो स्पिनर्स है वो लाइनअप जो है हमारे स्पिनर्स का वो काफी अच्छा है बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी बहुत अच्छी है तो ये एक बेनिफिट है हमारी इंडियन टीम के लिए
2: शेफाली ने पिछले मुकाबले में शुरुआत एक छक्के के साथ की थी 3 डॉट बॉल खेला और उसके बाद अपना विकेट गवा दिया हरमनप्रीत ने टॉस पे कहा था कि विकेट ऐसा है कि वक्त दे सकते हैं विकेट को समझ के बड़े शॉट्स फिर खेलने की कोशिश कर सकते हैं क्या शेफाली की तरफ से वो अप्रोच आप देखते हैं
3: देखिए शेफाली की गेम ऐसी है कि वो हर बॉल पे बड़ा शॉट मारने की कोशिश करती है लेकिन अगर थोड़ा टिक के खेले तो शी कैन गेट ए वेरी बिग स्कोर टुडे
2: जी बिल्कुल और इस बीच हमारे साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ रहे हैं उनसे हम बात करते हैं तो जल्दी ही बात करते हैं लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एंड वी टॉक्ड अबाउट स्मृति मानधना इनफैक्ट इन द बिल्डअप टू द टूर्नामेंट सौमित्रो स्मृति लुक लाइक स्ट्रगलिंग बट स्मृति इज नेवर एक्चुअली स्ट्रगलिंग बिकॉज व्हेनेवर इट्स बिग गेम्स स्मृति ब्रिंग्स हर ए गेम
4: 100 most influential sportspersons of the world. Only 2 cricketers to find their place in Time magazine. Smriti Mandhana can never go wrong, right? अभी अभी RCB को उसने tournament champion किया एक बार नहीं दो बार किया 17 centuries. You never question her credibility, right? Pedigree, credibility, and even last match she got runs, right? She's not that she's out of form. क्योंकि she's a perfect batsman to take the innings forward और देखिए शेफाली वर्मा को तो हम बात कर रहे हैं कि उनकी ज़रूरत है उनको रन बनाना कंडीशंस को फेस करना जैसे कर्नल सैद यू कांट हिट सिक्स इन एवरी बॉल यू हैव टू प्ले द बॉल टू इट्स मेरिट और देखिए आई थिंक द डच हैव डन द राइट थिंग बाई चूजिंग एन एक्स्ट्रा पेसर सो इट इज दे आर गोइंग टू बी टेस्टेड एंड इट्स गुड फॉर अस Good for India because before you need this kind of tests, you need this kind of competition to play the bigger matches.
0: Indeed, and Mr. Bhupendra, Colonel Bhupendra, we were mentioning that Yastika is also in now. The fact that Yastika is in as a batter, even though Richa might be seen with the gloves rather than Yastika behind the wickets, does it also tell you that India is looking at the next opponent too, which is South Africa? I want to be better prepared for that because Bharti Fulmali got just one opportunity but wasn't enough on that particular occasion. Little harsh on her, or you feel Yastika is the right move ahead because of more experience, given that there are bigger games coming up?
3: Look, if you compare Bharti and Yastika, what you have to see is what position they are going to play. Yastika is playing at number 3. And if we feel that she can fit into number 3, then it is a good idea to play Yastika Bhatia because she has these shots to play in the power play to hit over right. The fielders. And she can get the runs. But if she has to play at number 5 or number 6, it is better to play Bharti because she's actually tuned to play at 5 and 6.
0: Right, so it depends completely on India's approach.
3: As to where the position they are going to play.
0: देखते हैं एंड वक्त हो चुका है एक और कॉलर लेने का जो इंतजार कर रहे हैं जी हाँ
5: हेलो सर नमस्कार गुड इवनिंग
0: नमस्कार
5: मैं मध्य प्रदेश सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर
0: बताइए विपिन जी
5: सर मेरे दो सवाल थे। पहला ये था कि क्रांति गौड़ जो शायद

0: पिछले मैच में उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाई थी, तो उनके बारे में जानना था। और दूसरा ये था कि इस पिच पर कितना स्कोर हो सकता है अगर शेफाली वर्मा चल जाए तो।
1: अगर शेफाली वर्मा चल जाए तो, पहले पहले बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए, एंड बहुत ही सही सवाल था। अगर शेफाली वर्मा चल जाए तो मिस माथुर आप बताइए कितना स्कोर हो सकता है।
2: अगर शेफाली वर्मा चल जाती है तो 180 प्लस स्कोर जा सकता है इजिली, क्योंकि शेफाली का बल्ला जब चलता है तो वो धूम मचा ही देता है। और उसके साथ अगर मंदना भी जिस तरह से वो लय में दिखती हैं, दोनों अगर चलते हैं तो हो सकता है 200 प्लस भी जा सकता है ये स्कोर। तो इट डिपेंड कि शेफाली वर्मा को आज पेशेंस के साथ खेलना होगा, हर बॉल को हिट करने के चक्कर में ना जाके हर बॉल को, हर बॉलर की बॉलिंग को देखना है कि किस वे में खेलना है।
1: right.
2: क्योंकि अगर वो प्लेयर्स को देख के हिट करती है, मोस्टली देखा गया है कि वो हाथ में मारने के चक्कर में वो बाउंड्री पे कहीं ना कहीं कैच दे ही देती हैं, उससे आज उनको बच के चलना है और फील्डर्स को देख के मारना है हिट।
1: So ladies and gentlemen, you heard it from the opening batter herself then. Now Kranti Gaur एक ही ओवर मिला था पिछली बार, 14 रन उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन आप देखें तो विपक्षी टीम भी पूरे 20 ओवर नहीं खेली थी, 17 में सिमट गई थी पाकिस्तान, इफ यू टॉक अबाउट इट। सो क्रांति, डू वी हैव बिग इनफ अ सैंपल साइज टू से दैट शी इज आउट ऑफ फॉर्म और शी नीड्स अ लिटिल बिट मोर टाइम एंड रिदम एज एनी फास्ट बॉलर वुड वांट।
3: कंडीशंस इन हेडिंगली आर जस्ट परफेक्ट फॉर हर।
1: ओके,
3: ओवरकास्ट कंडीशंस, व्हाट एल्स कैन अ फास्ट बॉलर वांट, एंड इफ शी कैनॉट यूटिलाइज दिस कंडीशंस एंड द ऑपोजिशन इज नेदरलैंड्स नॉट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, टुडे इज द डे टू गेट सम विकेट्स एंड गेट द
4: And talking about gaining confidence back, Colonel, we saw in the previous game, Richa Ghosh was explosive. In fact, she too had been struggling for form heading into the tournament. Got a half century in the warm-up against England and then subsequently that knock of 34.
5: Yeah, she played really well. Actually, if you see in the last 6-7 matches that she's played, she's got about 3-4 overs to play in all these matches. And the only time she got a chance to play 10 overs, she got a 50. I think she got 66 in that. So she's playing very well. And if she gets a chance to play today, if her batting comes, I'm sure she'll do well.
1: All right, and what about Jemmy, who has the experience of playing in Leeds? Will that be of great effort, a great experience? The fact that you played in Leeds, does it help you as a batter sometimes?
5: Oh yes, it does help you. And I'm sure she'll play well today. Only thing is that, you know, the first 5-6 runs that you score, that you have to be careful. Okay. If you start hitting from the first ball, there are chances that you may get out. But what you have to see is your opposition. Netherlands has lost the last 6 matches that they've played. And they have got only one professional player. Rest are all club cricketers in a way. So the opposition is not that strong. So I suppose we should do well today.
4: Sumitro,
3: I want to add something about the Dutch.
4: Yeah.
3: Nobody is a professional. They play sport as a way of life. And even their hockey, even the women's Olympic champions, they come and play. You know, it's the stress levels in sport is so less that they come to play and enjoy a sport. That is why they have qualified for this World Cup, the first time they did, and they beat some big teams like Thailand and Scotland who have played World Cups before. So they know how to enjoy a sport. They don't mind losing, but they have set small targets. If you hear their Scottish coach, Neil McRae, what is he saying? He's saying we are setting small targets, not big targets. They're not aspiring to beat India. They're trying to match India. Their aspiration is to not finish in the semi-final. Their aspiration is to finish top 8 mein hum qualify karenge. So next World Cup mein hum automatic qualify karenge. So they have set reasonable targets, achievable targets, and that's the beauty of these Dutch players. All these players who come to play, they don't put unnecessary stress ki isko out karna hai, isko run banana hai, aisa nahi hai. They come to enjoy, and that's the beauty of these teams.
1: And sometimes being an underdog does free you from all
3: absolutely
1: the other pressure that you might carry. Absolutely. Isn't it? Isn't it like the car headlights then, Megha? It just shows you the next couple of feet, but that's what you need to see in order to reach a destination eventually.
3: And no high beam.
1: No high beam. Yes, no high beam.
4: Absolutely. एक और बात जो वो लगातार कह रहे हैं कि इंडियन टीम से इंस्पायर हुई है उनकी ये जर्नी, और काफी सारी महिला क्रिकेटर्स के लिए वो खुद इंस्पिरेशन के तौर पर आती हैं। अब अगर हम बात करें वापस भारतीय टीम की और आज के 11 की, दीप्ति शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी में योगदान दिया, छोटा कैमियो ही खेला लेकिन ऋचा घोष के साथ वैशाली, वो वहां पे साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी, और उसके बाद

0: तो 5 विकेट निकाले।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि दीप्ति शर्मा एक सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम के अंदर हरमन के साथ, और एक एक्सपीरियंस प्लेयर का होना बहुत जरूरी होता है टीम के साथ, और उन्होंने वो दिखाया है कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर की बॉलिंग किस वे में होती है। एंड उसके साथ अगर बात करूँ उनकी दूसरी विकेट की, तो उन्होंने जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में उन्होंने स्वीप स्क्वायर लेग रखा था और वहाँ पर स्मृति मंदना ने कैच किया था, दैट वॉज मतलब जो एक थॉट होता है वो उनका वो कम्प्लीट हुआ वहाँ पर, एंड वो माइंड में जो सोचती है वैसा वो अकॉर्डिंग टू फील्ड लगाती है और वही बॉल डालती है। ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर की खासियत है जो हमने लास्ट मैच में देखा भी है, और मैं होप करूंगी कि आज के मैच में भी 5 नहीं उससे ज्यादा विकेट ले। एंड उसके साथ साथ उनकी अगर बैटिंग की बात करें, उनका जो हमने इंटरव्यू सुना तो उसमें उन्होंने बोला कि हमारे जो कोच हैं उन्होंने बोला कि आपके लिए 5th नंबर ही अलाउ है बैटिंग का, एंड सी सेड मैं वहां पे रेडी हूँ, फिट हूँ वहाँ पे मैं खेलने के लिए, एंड उन्होंने वो शो भी किया।
0: शुरुआत की थी गुलफिरोजा के विकेट के साथ रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश उनके तरफ से, और उसके बाद आलिया को भी आउट किया था अपने अगले ही ओवर में। टॉकिंग अबाउट वॉकिंग दी टॉक, हरमनप्रीत कौर पिछले मुकाबले में जब पारी थोड़ी लड़खड़ाती भी नजर आ रही थी, 2 जल्दी विकेट गिर गए थे, तब पारी को संभाला स्मृति मंदाना के साथ, 91 रन की साझेदारी हुई थी भूख वहां पर, और राणा बॉल ही खेल रही थी, लेकिन उनका उस वक्त पे टिकना महत्वपूर्ण था।
2: या दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक विकेट और वहां गिर जाती तो हमारी टीम कुछ ज्यादा ही अंडर प्रेशर हो जाती, बट दोनों जोन से हैं बिग मैच प्लेयर्स हैं और उन्होंने सिचुएशन को संभाला और अच्छा खेला, 91 रन की पार्टनरशिप, और उसके बाद फिर से 2-3 विकेट जल्दी गिरे, बट ऋचा घोष ने पूरी इनिंग फिर दोबारा संभाली और हमारे को एक बड़ा टारगेट की तरफ ले गई।
3: जी और बात करें अगर स्मृति मंदाना की, तो फिर हल्की सी जो हलचल उठती है ना इधर उधर से, लोग बोलते जरूर हैं कि मे बी शी गेट्स फाउंड आउट व्हेन देयर इज एन ऑफ स्पिनर इन ऑपरेशन, क्या आप भी ऐसा देखते हैं कि सीगर्स हो गई नेदरलैंड्स की तरफ से या फिर ओवरडाइक हो गई, कहीं ना कहीं एक चुनौती प्रदान कर सकती हैं?
4: क्यों नहीं, एनीथिंग इज पॉसिबल, ऑल यू नीड आर 10 गुड बॉल्स और 10 बैड शॉट्स, सो दैट एंड इन T20 द मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम है, आपको तो चाहिए एक ही बॉल आउट करने के लिए, एंड व्हाई नॉट, इट्स गुड टू सी इंडियंस अंडर प्रेशर, अगर जितना प्रेशर डालिएगा नेक्स्ट मैच के लिए उतना प्रिपरेशन बेटर होगा, सी क्रिकेट इज आफ्टर ऑल अ माइंड गेम, you can't right. be complacent, you can't be overconfident, and you know I always say teams like Netherlands like the banana skin ki kela ka chilka aap kabhi bhi phisal sakte hain, aur jaise maine shuruaat mein kaha hai ki cape world of football world cup mein jo hum examples dekh rahe hain kuch bhi possible hai sport mein,
2: but this wicket is slightly greenish and when a spinner is bowling in the opening overs the ball may not turn, it'll skid through, there is a chance that it can take average and person can get caught in the slips.
1: And अभी आपने बात की रॉबिन की, अभी मैंने जो देखा है रॉबिन काफ़ी टाइम से बॉलिंग नहीं कर रही है, ऑफ स्पिन वो डालती हैं और वो काफ़ी टाइम से बॉलिंग नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि इस मैच में भी वो ना बॉल डाले, क्योंकि एक रिदम में होना बहुत जरूरी होता है वो बॉलर के लिए, और वो अभी तक वो रिदम दिख नहीं रहा है क्योंकि वो काफी लॉन्ग टाइम से बॉलिंग में नहीं है।
0: और यहाँ से पावर प्ले में क्या रणनीति निकल कर उतर सकती है भारत की टीम भूप, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, ग्रीन विकेट है, कप्तान ने कह दिया है कि थोड़ा संभल के समझ के खेलना होगा।
2: And not go totally defensive, try to score runs and put up a big score in the power play.
3: And do you have a number in mind, the big score?
2: Yeah, it'll be over 60.
3: Over 60?
2: Yeah.
3: And this is Shefali going bang bang from the word go.
2: Both players will score, and even if a wicket falls, Gee. The number 3 batsman will also go for runs. And it's going to be a biggest score. It'll be much more than 60.
4: So you don't need to go bang bang.
3: Okay.
4: What is 10? 10 when you... and 2 singles, then do we have to go bang bang? No, and it's not necessary ki pehla over se aap 10-12, see the Dutch will come with a plan, when they select an additional fast bowler, obviously they'll have a plan, or don't forget they are good fielders.
3: Correct.
4: Right? And fielding does matter, ki aapko pata hai ki agar, jaise maine pehle bola ki 10 gain chahiye aur 10 bad shots chahiye, so I think pedigree
3: जी
4: एप्लीकेशन एक्सपीरियंस जैसे आपने

0: बोला कि हरमनप्रीत कैसे पकड़ के खेला, कैसे इफ दे डोंट डू अ पर्सन इज गोइंग टू प्ले 200 matches, international matches, if that person is not going to apply or herself as a skipper, then who will?
1: Right. You want to lead from the front.
0: Yes. So application has to be the buzzword, the keyword, and the Dutch will definitely come out with the plan.
1: और इस ground में अगर हम experience की बात करें तो Callis उनके तरफ से कई matches खेल चुके हैं इसी ground पे. So she would understand the angles better. आपको लगता है उसमें जरूर मदद करेंगी वो कप्तान की कि फील्डर को यहाँ प्लेस कीजिएगा, यहाँ रन्स भी बच सकते हैं, कैचेस भी बन सकते हैं.
0: Definitely. See, English conditions are very different from Indian conditions or elsewhere. Ball will swing and it's overcast. It's typically summer English conditions. And Callis, I mean, when I say Callis, it reminds me of another Callis who used to never was not expressly fast. Mm-hmm. He would just bowl to the line and length and let the batsman make all the mistakes. That's why, as you said, I'm sure with her inputs, her captain Babbitt would definitely put their fielders at the right places.
2: And we've seen Babita De Ligt being very inspirational throughout this journey of the Netherlands team. वापस भारतीय टीम पर आते हैं और जो बल्लेबाजी का क्रम है वो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यस्तिका भाटिया वापस आ गई हैं टीम में भारती फुलमल्ली के जगह पे और दीप्ति शर्मा को कहा गया है कि पांचवें नंबर पर वो जनरली बल्लेबाजी करेंगी, तो क्या तब्दीलियां होंगी क्रम में?
3: मुझे लगता है जहां पर अभी देखा गया है कि जैमी फर्स्ट ही डाउन आएगी एंड सेकंड उसके बाद हरमनप्रीत कौर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आती है. अगर जैमी की पहले विकेट अगर गिर जाती है तो उसके बाद हरमन आएगी, अदरवाइज हमारे मुझे लगता है कि यस्तिका भाटिया आएगी और अगर ओवर्स कम होंगे तो डेफिनेटली ऋचा घोष वहां पे आएंगी बैटिंग करने, क्योंकि वो टीम का एक्स फैक्टर है और वहां पर वो अगर जहां भी आती है वहां से वो रन कैलकुलेट करते हैं, तो वो सिंगल को डबल में कैलकुलेट करती है और डबल से वो फोर में कैलकुलेट होता है, तो ये एक बेनिफिट मिलेगा लास्ट के 4-5 ओवर्स में ऋचा घोष से हमें.
2: जी, और क्या यही बल्लेबाजी का क्रम आप भी देखते हैं?
4: लुक, इफ यू आर गोइंग टू प्ले यस्तिका भाटिया एट नंबर 5 और नंबर 6, आई थिंक वी आर वेस्टिंग हर टैलेंट. इफ शी हैज टू प्ले, शी हैज टू प्ले नंबर 3.
2: बिल्कुल. और इसके साथ ही हम यहां पर अपनी चर्चा की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुकाबले की शुरुआत होने ही वाली है, तो जाने से पहले जल्दी से प्रेडिक्शंस लेते हुए चलते हैं. सौमित्रो, आपसे शुरुआत करते हैं.
0: 170,
2: नॉट टू डिसिमिलर फ्रॉम द लास्ट गेम.
4: Oh yes, it'll be, score will be over 170.
3: नीदरलैंड के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास बनाने के लिए बहुत कुछ है, तो I'm thinking 180.
2: So it's broadly around 175 if you try and draw an average over here. Thanks a lot to each one of you for your analysis, and we shall now turn our attention to live action as the two Indian openers Smriti Mandhana and Shefali Verma are heading out into the middle. Would it be 170 or 180? We try and find that out over the next an hour and a half.
0: Thank you.
5: First ball, 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, हेडिंगले क्रिकेट स्टेडियम लीड्स लंदन में इस समय T20 विश्व कप महिला विश्व कप के तहत भारत और नीदरलैंड्स के बीच मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज या बैटर्स जिनको हम कहते हैं बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। शैफ अली वर्मा, स्मृति मंधना दोनों ही बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही हैं। स्मृति मंधना ने पिछले मैच में एक शानदार अर्धशतक जमाया था और भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध जीत में मदद मिली थी। जहां तक नीदरलैंड्स का सवाल है, नीदरलैंड्स की कप्तान ने आज बेवेट डिलीड जो विकेटकीपर भी हैं उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के बजाय उन्होंने सोचा कि वो एक टारगेट को चेंज करेंगी और उन्होंने पहले भारत को मौका दिया है कि आइए आप बल्लेबाजी कीजिए, हम

0: आपके विरुद्ध जो टारगेट है उसे पूरा करेंगे। नेपाल में जो क्वालिफायर्स खेला गया था महिला विश्व कप के लिए, उसमें इन्होंने पहले किया आयरिस ज्वेलिंग जो 24 साल की हैं और दाएं हाथ की मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करती हैं। 101 विकेट वो अब तक ले चुके हैं। ज्वेलिंग बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। हालांकि नीदरलैंड्स का ये पहला विश्व कप है, इससे पहले बांग्लादेश के विरुद्ध इनको सशक्त टीम जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में महिलाओं की चैंपियन है, इस समय तैयार हो रही हैं नीदरलैंड की गेंदबाज और सामना करने के लिए भारत की स्मृति मानधना बाएं हाथ की। दाएं हाथ से उनकी पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और उस धीरे से पुश किया था वाइड स्मिडाउन की तरफ, लेकिन रन लेने का वहाँ पर कोई भी प्रयास नहीं किया। ज्वेलिंग जो मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करती हैं इस समय तैयार हैं और जैसे जैसे हमको मौका मिलेगा हम आपको पूरी टीम का विवरण भी देंगे। फिलहाल क्योंकि मैच शुरू हो चुका है स्मृति मानधना तैयार हैं। एक बार फिर से उनकी गेंद लेग स्टंप के बाहर था, संभवतः वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से एक अतिरिक्त रन, तो भारत का खाता खुला एक अतिरिक्त रन के माध्यम से। वाइड के जरिए मिला है ये रन और अभी तक दोनों ही बल्लेबाज एक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ी हैं, शैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने केवल एक गेंद अब तक खेली है और रन लेने का सिलसिला अभी उनका शुरू नहीं हुआ है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, उसे पुल किया तो शॉर्ट आर्म पुल, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, लेकिन इससे पहले बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि वो दो रन जुटा लें। भारत का स्कोर हो गया 3 रन बगैर किसी नुकसान के। नीदरलैंड्स ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उन श्रोताओं की जानकारी के लिए जिन्होंने किसी कारणवश अपने रेडियो सेट्स कुछ देरी से खोले हैं, हम आपको बता दें कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच ये मैच गेंद धीरे कुछ धीमी गेंद थी, अपनी रफ्तार पर थोड़ा नियंत्रण किया और गेंद को हवा में छोड़ दिया स्विंग होने के लिए। अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, इन स्विंग गेंद बाएं हाथ के बैटर के लिए और स्मृति ने उसे सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया। नीदरलैंड और भारत के बीच T20 महिला विश्व कप का ये दूसरा मैच, ये गेंद फिर लेग स्टंप के बाहर थी और वाइड का इशारा एक बार फिर से अंपायर की तरफ से और एक रन और भारत के खाते में जोड़ा है। भारत का स्कोर हो गया 4 रन बगैर किसी नुकसान के। हेडिंगली का ये विकेट, जहाँ पर इससे पहले भी एक मैच हो चुका है, बादल मैदान में छाए हुए हैं लेकिन पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बल्लेबाज इसमें कुछ बैलिंग। इस बार ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया ऐसे और बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हुए दोनों ही बल्ले बैटर्स ने अपना छोर बदला, स्मृति के खाते में एक रन और जुड़ गया। 3 रन उनका कुल स्कोर हो गया, भारत का स्कोर हो गया 5 बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है, ज्वेलिंग जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज लंबे कद की खिलाड़ी हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं कि विश्व चैंपियन भारत के विरुद्ध वो अपने आत्मविश्वास को समेटें और अच्छी नियंत्रण के साथ 94% उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण रहता है उनका और देखना है ज्वेलिंग अपनी इस अगली ओवर गेंद में क्या कुछ कर पाती हैं। दाएं हाथ के ओवर द विकेट गेंदबाजी करने वाली, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पे गए, कट किया उसे और डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: ज्वेलिंग की ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ जा रही थी, हवा में अपना आर्म के साथ छोड़ी थी गेंद को, टप्पा खाने के बाद उछली थी गेंद और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे कट किया था शैफाली वर्मा ने 4 रन के लिए। एक गेंद अब तक शैफाली ने खेली है, उसमें चौके के साथ अपना खाता खुला है। भारत का स्कोर 9। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, धीरे से इसे पुश किया था, तो कोई मौका नहीं लेना चाहती शैफाली वर्मा, क्योंकि जिस तरह से अभी तक वो बल्लेबाजी कर रही हैं पिछले जो घरेलू टूर्नामेंट है उसमें बहुत ज़्यादा असरकारी बल्लेबाजी वो नहीं कर पाई थी, लेकिन लिहाजा वो अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए खेलना चाहती हैं। पहला ओवर समाप्त हुआ। विश्वनाथ,
2: वेल गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल लिसनर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। Well, this is the first World Cup. They are the debutant Netherlands, and

0: and heats it. She opens, in fact, the batting for Netherlands, and she's got a sister also playing the same game, isn't it? It's quite amazing. Silver Seagers. Here is Heath Seagers. Up she comes now with her off spinners, and she's getting the ball around the over the wickets to Shefali. Comes in now short, and he hits it hard off the back foot. It's going down towards the extra cover fence. The ball should win the race as that ball runs away for four. Well, that was too friendly. It was short and wide and spinning away and was easily put away by Shefali Verma. So, but I feel this is this kind of game that you can improve your batting average at times. Though the Indians don't take Netherlands lightly. So he does in just a couple of paces, runs and bowls down the leg side, and it's been worked away towards a whitish mid-on. Runs with the strike for an easy single, and India move up to 15. Just to give you what happened with the toss, Netherlands won the toss and preferred a bat second. I was a bit surprised. I felt their weapon probably was the bowling. And it's such an inexperienced side. I'm sure we're going to talk a little bit more. Next ball is nicely tossed up. And a brilliant dive. And that can't get past her. This is running down towards the extra cover fence for four. When Smriti placed that cover drive, I think that's an absolutely a very elegant offer to see that. She's a delight to watch when she plays that cover drive, and a beautiful time of the ball. He played well against Pakistan the last game, and the Indians are not taking Netherlands so lightly. So India move up to 19, one ball to go in the second over after they've been sent in by Netherlands. If you just joined us. It's Smriti on 8 and Shefali on 9. Last ball of the first over from Seagers coming in. As she's going to ball right arm round the wickets. Slower, and she has to reach for it, and then she drives beautifully. It beats cover, an extra cover. That'll be another 4. Well, that sort of a pace and spin, I'm sure the Indians are going to enjoy the bowling of the Netherlands at the moment now. So Goswami, I think, you know, would you say winning the toss and batting second was the best option for Netherlands?
1: लगता है कि भारतीय टीम जो कि विश्व चैंपियन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, तो उनको लगा होगा ऐसा कि एक बार परखा जाए और कोई एक टारगेट जो बनाती है भारतीय टीम, एक अगर मौका देती है तो क्या कुछ कर सकते हैं वो, तो इस तरह का एक उनके दिमाग में रहा होगा कप्तान के, और उन्होंने पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का मौका दिया है. और उन श्रोताओं के लिए कि आज भारत और नीदरलैंड्स के बीच में महिला विश्व कप का ये मैच चल रहा है. ज्वेलिंग आई है अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैट पुट पर गए, मिड विकेट की तरफ गेंद को धीरे से प्लेस किया है, एक ही रन मिल पाएगा. शेफाली वर्मा का स्कोर हो गया, इसके साथ ही डबल फिगर में 10 रन 5 गेंदों का सामना किया. स्मृति मंधाना इस समय खेल रही हैं 12 रन के स्कोर पर, और भारत का स्कोर 24 रन बगैर किसी नुकसान के. 2.1 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है. भारतीय टीम जो इस मैच में खेल रही है, हम आपको बहुत तेजी से बताएंगे इसके इस ओवर के बाद में. और एक बार फिर से ज्वेलिंग दाएं हाथ से ओवर द विकेट, उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैक फुट पे गई और शॉर्ट कवर्स की पोजीशन पे गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई मौका नहीं रन लेने का. और एक बार फिर से ज्वेलिंग हल्के हल्के कदमों से अपने गेंदबाजी के रनअप की ओर आ रही हैं. स्मृति मानना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर जो कप्तान हैं, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्रीचरणी, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा इस समय भारतीय टीम में खेल रही हैं. ज्वेलिंग एक बार फिर से दाएं हाथ से उनकी गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैक फुट पे गई, ड्राइव किया स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन फील्डिंग वहां पर हो गई है. फील्डर खड़ी थी, बहुत तेजी के साथ उन्होंने गेंद पर झपट्टा मारते हुए फील्ड किया, लेकिन बल्लेबाजों के पास इतना समय था कि वो रन लेते. भारत का स्कोर इसके साथ ही हो गया 25 रन. स्मृति का स्कोर है इस समय 13 रन, और अब शेफाली वर्मा 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर सामना करने के लिए ज्वेलिंग की अगली गेंद का, हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए जा रही हैं. शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फिर से, और धीरे से उसे प्लेस किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर हैं वहां पर, एक ही रन मिलेगा. और एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला, और शेफाली का स्कोर इसके साथ हो गया 11 रन. स्मृति अब सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं 13 के व्यक्तिगत स्कोर पर. हालांकि पहली बार नीदरलैंड्स को इस विश्व कप में मौका मिला है. नेपाल में खेले गए क्वालिफायर्स में चौथी टीम के रूप में उन्होंने क्वालिफाई

0: She was on top of it. It was kind of a friendly half volley, I would say, by all means. And Shefali, the player of the match in the women's 50 over World Cup, awesome. And now everyone wants her to find some form. So India racing away inside the park, like. And I'm not sure whether it's the right call to bat second from the Netherlands' point of view. Three boundaries in this over. One ball to go in the fourth. Warning balls. Oh, she tries to cut it away. And a bit of swing there. She was trying to glide it outside the off stump and missed it and went through to the keeper. So four overs gone. India really going well. None for 42.
1: भारत का इस समय स्कोर काफी धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जैसा कि श्रोताओं को जानकारी होगी कि 20 ओवर के मैच में 6 ओवर पहले जो फेंके जाते हैं वो पावर प्ले के रूप में, जहां पर 9 खिलाड़ी विकेटकीपर और गेंदबाज के साथ में 9 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर रहते हैं, लेकिन उसके अलावा 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं और उसके बाद 5 खिलाड़ी घेरे के बाहर और उसके अलावा शेष खिलाड़ी घेरे के अंदर। इस समय 42 रन का स्कोर है भारतीय टीम का और उन एक कदम आगे बढ़े अगली गेंद थी ज्वेलिंग की और ड्राइव किया 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: भारत इस टूर्नामेंट में 4.1 ओवर का खेल हो चुका है और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रही है। और उन श्रोताओं की जानकारी अगर लेना चाहें तो हीदर सीजर्स जो टीम है इस समय खेल रही है, हीदर सीजर्स, पीबी मॉलकेनबोर्ड, बेवेट डीलेड, स्टीर कैलिस, रॉबिन रिस्क, फ्रेडरिक ओवरडिस्क, आयरिश ज्वेलिंग और मर्थ वैन डेन राड, कैरोलिन लैंग, सिल्वर सीजर्स। इस बीच इस गेंद को धीरे से पुश किया था और पूरी तरह से फील्ड वहाँ पर सजी हुई है, बहुत ही रक्षात्मक फील्डिंग जिसे कहते हैं कि हर स्ट्रोक नज़र है नीदरलैंड्स के फील्डर्स की और वो पूरी तरह से इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह भारत की टीम को रनों की बाढ़ बनाने से रोकें। इस बीच ये गेंद बैकफुट पे गए और ड्राइव किया उसे बहुत तेजी के साथ 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: इस समय भारत का स्कोर हो गया 46 रन। 4.3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। इस ओवर में 2 चौके पहली गेंद पर और तीसरी गेंद पर लगे हैं और इस समय भारत धीरे धीरे अपने प्रयास में है कि ये जो पावर प्ले है वहाँ पर उसका स्कोर कुछ इतना मजबूत हो जाए कि आने वाले खिलाड़ी एक रनों का पहाड़ खड़ा कर सकें। इस बीच ज्वेलिंग की ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था इस गेंद को ऑन साइड में, ऑन ड्राइव बहुत तेजी के साथ जा रही है और बिल्कुल सीमा रेखा के पास गेंद को रोका और इस बीच बहुत के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। स्मृति का स्कोर इसके साथ ही बढ़कर हो गया 23 रन और 2 रन उन्होंने लिए। 23 रन पर खेल रही हैं स्मृति और बहुत अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है, लेकिन देख रहे हैं अंपायर के कहीं उनका जूता लग तो नहीं गया। लेकिन अभी फिलहाल 48 रन 4.4 ओवर के खेल के बाद ज्वेलिंग मध्यम गति की तेज गेंदबाज हैं और स्मृति इस समय खेल रही हैं 23 रन के स्कोर पर, 16 गेंदों का सामना किया है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शैफाली वर्मा जो भी 23 रन, उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया है, 10.29 की औसत से रन बन रहे हैं। इस बीच ये अच्छी गेंद थी, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, कमर की ऊंचाई तक उछली, सुरक्षात्मक तरीके से उसे खेल दिया और एक डॉट बॉल यानी कोई भी रन इस गेंद पर नहीं बना है। भारत की स्मृति ईरानी को 3 चौके और चाहिए और T20 में उनके 600 रन। इस बीच में ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार धीरे से पुश किया था कवर्स की तरफ, लेकिन फील्डर हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार ने बताया कि भारत अपना 222वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहा है। भारत के अभी तक 122 मैच जीते हैं और 93 मैच हारी है, जबकि 4 मैच बारिश के कारण या अन्य कारण से रद्द हुए हैं।
0: Well, the amount of T20s are getting played, I feel, you know, maybe after 10 years, you could see each of these cricketers playing 300, 400 T20s. And I'm sure 10 years before, we were all talking, you know, if someone hits, someone plays 100 test matches, that's a, you know, that's a, something, a monumental feat. Now it's all gone. And maybe after 20 years' time, we'll see each individual member playing 300, 400 T20s. And let's say the world is moving on. 222 T20 internationals for India till now, and they won 122 of them, lost 90.

0: And there is a discussion on between the Dutch women trying to sound out how they can end this era. And the Captain D Lee now in a customary wicket-keeping position now. Here is Mandara. She bowls left arm, or rather right arm, around the wickets again down the leg side. Tell you, oh my tall, I may tell you that. It's swinging, and it's swinging not to the likes of to the bowler. It's swinging the wrong way. That would have been a nice line for to a right-hander. And now there's a discussion again going on between the captain. She's run all the way to the bowler's bowling mark. And it probably she has to hold cross seam, you know, to control that swing, I think, you know. She's got a nice high arm action. She's delivering it beautifully, but she's not getting a direction right now. Pressure on the bowler. It's a long over. Four deliveries have been six wides. Van der Rad bowled short, pulls her away on the onside after mid-wicket. There's a fielder over there, and just a single. And that'll be relief for the bowler, isn't it? Absolute relief. Nine runs on this service. Should be the most lengthiest over in Women's World Cup, if I'm not wrong. Six wides. Quite extraordinary. And we've got a colourful scorecard here. And we'll just look at the scorecard now. It's 58 for Nolas. And Van der Rad, I'm sure she'll be highly frustrated with the way things are going on at the moment. Mandana 24, Shafali 25. And Indians have raced to a lovely start. One ball to go in the power play. Right arm over, she bowls now. And it's pushed away on the onside. She'll get a single, not more than that. Long over is finally ended. Relief for the bowler. And six overs gone. No wicket for 59.
1: नीदरलैंड इस समय में थोड़ी सी परेशान क्योंकि उनकी गेंदबाज वैन डी राड ने एक लंबा ओवर फेंका और लगभग दो ओवर जितना एक ओवर हो गया कितनी वाइड फेंके गए यशवंत चार्ड हमारे स्कोरर बताएंगे और हमारे स्टेट्स गुरु जो कि रनों का लेखा जोखा और रिकॉर्ड्स के बारे में मनोज कुमार हमारे साथ हैं इस समय इस कॉमेंट्री में और मनोज कुमार ने बताया कि नीदरलैंड अपना 112वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहा है नीदरलैंड ने अभी तक 52 मैच जीते हैं 55 मैच हारे जबकि 4 मैच खराब मौसम के कारण अनिर्णित रहे यानी उनका कोई परिणाम नहीं हुआ इस समय नीदरलैंड के सामने एक चुनौती है भारत के जो कि विश्व चैंपियन है एक दिनी क्रिकेट की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का जलवा लोग देख चुके हैं और इस समय इस बात का है कि ये T20 महिला विश्व कप का 10वां संस्करण है इससे पहले ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत टीम के रूप में काफ़ी आगे रही है और ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट को सर्वाधिक बार जीता है और एक बार इंग्लैंड एक बार न्यूजीलैंड एक बार वेस्ट इंडीज़ को ये T20 विश्व कप जीतने का अवसर मिला है इस समय लीड्स में खेला जा रहा है मैच भारत और नीदरलैंड्स के बीच में और भारत की टीम जो कि मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई 6 ओवर्स का खेल हो चुका है 59 रन पावर प्ले में भारतीय बैटर्स ने बनाए हैं स्मृति मानना और शेफाली वर्मा दोनों ही बहुत बड़ी खिलाड़ी मानी जाती हैं विश्व क्रिकेट में और ख़ास तौर से जहां तक स्मृति मंधाना का सवाल है स्मृति मंधाना भारत की सबसे सशक्त बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी एक विशिष्ट छवि लेकर वो उतरी हैं और बहुत ही मजबूती के साथ वो अपना गेम खेलती हैं और उन श्रोताओं के लिए एक और जानकारी कि 2026 की टाइम मैगजीन में स्मृति मंधाना को सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है और इस सूची में रोनाल्डो और मेसी जैसे ग्रेट फुटबॉलर्स हैं और अल्कारेज जैसे टेनिस के सितारे हैं वहाँ स्मृति मंधाना को टाइम्स मैगजीन में 100 सशक्त और सबसे बेहतरीन लोगों में माना है
2: द क्रिकेट कमेंट्री विल कंटिन्यू आफ्टर अ शॉर्ट फीफा अपडेट वर्ल्ड फुटबॉल अपडेट फ्रॉम द बीबीसी
3: Hello, this is Ed Harry at the BBC Sports Centre with the latest World Cup news. Defending champions Argentina made a winning start to their campaign, beating Algeria 3-0 in Kansas City. Argentina's superstar forward Lionel Messi scored a hat-trick. Also in Group J, Austria beat Jordan 3-1 in San Francisco. In Group I, Kylian Mbappe

0: So the spinners in action. They run through the overs quickly, compensating for what that one over that came. Next ball is down the leg side, trying to sweep. She misses. Shefali, and wide call with the umpire. And we're just getting a bit contagious of seeing so many whites now.
1: इतनी गेंदबाजी में अब तक दिख रहा है नीदरलैंड्स के गेंदबाजों में वो नियंत्रण नहीं मिल पा रहा है जिसकी उम्मीद वो कर रहे हैं.
0: Yeah, you're right. Actually, they probably will learn quickly. Langebel's full toss and she just misses it and she drags the ball down towards short fine leg. No, and I think there was a gift out there to get it somewhere on the onside for the 4 or 6. Lange, she got a couple of wickets in the game against Bangladesh. She got Netherlands back into the game. Very unusual bowling. She comes and bowls and driven up pushly. I tell you, didn't carry. And beautifully bowled by De Lange. I would say by far the best of the overs from the Dutch girls. One ball to go. 71 for Neolas. Next ball is short and flicked away. She picks up from outside the off stump down towards whitish mid wicket. And the air ends now. So 8 overs gone. India going at 9 an hour. None for 72.
1: भारत और नीदरलैंड्स के बीच इस समय महिला विश्व कप जो कि 20-20 ओवर का विश्व कप है खेला जा रहा है इंग्लैंड की धरती पर और भारत का इस टूर्नामेंट में ये दूसरा मैच है. पाकिस्तान को पराजित करके भारत ने बहुत ही मजबूती के साथ अपने इरादे जाहिर किए हैं महिलाओं ने. और नीदरलैंड्स का जहां तक सवाल है, नीदरलैंड्स ने इससे पहले बांग्लादेश के विरुद्ध एक मैच खेला था और उसमें वो पराजित भी हो चुकी हैं. तो नीदरलैंड्स जो पहली बार विश्व कप में क्वालिफाई किया है, देखना है कि क्या कुछ कर पाते हैं. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 से अधिक मैच खेलने का अनुभव नीदरलैंड्स के साथ जुड़ा हुआ है और इस समय 72 रन भारत का स्कोर 8 ओवर्स की समाप्ति पर. स्मृति खेल रही हैं 32 रन पर और शेफाली खेल रही हैं 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर. और वांडे वार्निंग आई है अब नई गेंदबाज के रूप में, पहली ही गेंद वाइड के रूप में और एक अतिरिक्त रन और जुड़ा है और अतिरिक्त रनों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर हो गई है. 11 रन अभी तक भेज चुके हैं 8 ओवर के खेल में अतिरिक्त रनों की. ये अतिरिक्त रन बहुत महंगे पड़ते हैं. कई बार ऐसे मौक़ों पर जबकि मैच बराबरी की स्थिति में आता है तो उस समय ये जो अतिरिक्त रनों का एक बोझ होता है वो बहुत मुश्किल होता है. इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को उठा दिया है और लेकिन कोई फील्डर नहीं है. बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ लेकिन अब जाके गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और बल्लेबाजों के पास पूरा समय था रन लेने का. सैफ अली ने बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए 2 रन पूरे किए, 32 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया. 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और भारत का स्कोर इस समय 75 रन बगैर किसी नुकसान के. T20 महिला विश्व कप इंग्लैंड एंड वेल्स के तत्वावधान में खेला जा रहा है इस समय और भारत जो कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व कप खेला गया था गत वर्ष उसमें चैंपियन है. दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराया था और नीदरलैंड इस समय एक तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ी कमजोर टीम. 75 रन भारत का स्कोर 8.1 ओवर के खेल में अब तक हो चुके हैं और शेफाली वर्मा अब तैयार हो रही हैं. 32 का व्यक्तिगत स्कोर है समय उनका और देखना है शेफाली जिनको रनों की बहुत ज़रूरत थी इस समय तैयार हो रहे हैं. वान डेर वार्निंग इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और भारत के अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ. अंपायर से वो बातचीत कर रही हैं वान डे वार्निंग और वो देखते हैं कि आगे क्या कुछ कर पाती हैं. वो गेंदबाजी करने का सिलसिला निरंतर जारी है लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि वैन डे वार्निंग जो कि गेंद कर रही हैं, पहली गेंद वाइड फेंकी थी, दूसरी गेंद के साथ आ रही हैं शेफाली वर्मा को. उनकी गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर थी और इस समय विकेट के पीछे उसे कप्तान ने गैदर किया. कोई रन नहीं हुआ. 73 रन भारत का स्कोर बगैर किसी नुकसान के इस समय हो चुका है.
0: Well, that's the line. That's the line to bowl. Fuller just outside the off stump. Beautifully bowled.
1: जी जी जी. बहुत बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यक है. और इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को ड्राइव किया था. गेंद हवा में उछली हुई और बहुत बेहतरीन तरीके से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: वार्निंग की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और बेहतरीन तरीके से

0: उसे बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। हालांकि गेंद हवा में थी लेकिन कोई फील्डर वहां नहीं था और सैफ अली वर्मा के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका ये निकल के गया है। अब तक उन्होंने 6 चौके जमाए हैं 34 रन के व्यक्तिगत स्कोर में। एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी लेकिन अपना सर झुकाया और उसे जाने दिया विकेट कीपर के पास में।
1: Well, I don't see the Indians good hookers of the ball, hookers or pullers of the ball, and it really surprised Shefali for sure.
0: यह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 27वां मौका है जब सैफ अली और स्मृति मंधना ने पहले विकेट के लिए भागीदारी की है 50 या उससे अधिक की। मनोज कुमार ने बताया इस बीच ये गेंद और ये गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए निकल गई।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: भारत का स्कोर 83 रन बगैर किसी नुकसान के इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों ही बैटर्स या बल्लेबाज खेल रहे हैं। स्मृति मंधाना 32 पर, सैफ अली वर्मा 38 पर। नो बॉल का इशारा भी अंपायर ने किया है और अब जाके एक और फ्री हिट मिलेगा भारत को। सैफ अली तैयार हैं फ्री हिट लेने के लिए और जिस तरह से गेंदबाजी की थी, ऊंचाई पे उछलती हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने भी देखा था हिट और उसको फ्री हिट दिया है अंपायर ने। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद और संभवतः वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से और एक और अतिरिक्त रन भारत के खाते में जुड़ा है। 14 रन अब तक अतिरिक्त रन के रूप में दे चुकी हैं नीदरलैंड्स की गेंदबाज। 84 रन बगैर किसी नुकसान के। वार्निंग जो गेंदबाजी कर रही हैं, वार्निंग काफ़ी अच्छी गेंदबाज मानी जाती हैं लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी हो सकता है कि विश्व चैंपियन के सामने एक नई टीम उतरती है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है और वही लगता है नीदरलैंड्स के साथ। इस बार इस गेंद को उठा दिया है, इस देखना है, लेकिन फील्डर उसके 30 गज के घेरे के बाहर की तरफ खड़ी थी और पहले टप्पे के साथ में गेंद फील्डर के हाथ में गई और इसके साथ ही ये ओवर भी समाप्त हुआ।
1: Well, that's a good comeback, isn't it? She got a no ball, which was just above the waist of Sैफ Ali, and then she followed with a wide, and then a dot ball. So that's a good comeback by all means, fair vendor. It's still there, 3 balls remaining in this over, and the run rate now inching towards 10. It's 9.88 precisely, 84 for Nola, the ninth of the warning balls. She thrashes this one on the offside, straight to the fielder at cover point, no run. And two dot balls in a row. So we've seen 3 wides and 1 no ball in this over. I think, you know, that's going to be a real frustration. We'll see how many extras in this game so far. How many wides, how many byes? I mean, 14 extras. It's quite extraordinary. We're inside the 10th over, so that's quite high. In fact, 15. That's what... 15 wide, so it's quite extraordinary in the T20 game. The next ball has been flicked away on the onside. It's going down to its deep backward square. Just a single. And in comes the throw from Caroline De Lange. It's none for 85 and one ball to go in the 9th over. Now the speed of Van der Wonning is around about, I would say 108 to 115. And I feel that the fast bowlers from Netherlands have done a good job in this game so far. But the only problem is they haven't got the line and length clear. On top of that, plenty of wides. And the ball is still, you know, just moving around. There's something there for the medium-paced bowlers. And we're not seeing the keeper standing up to the stumps for the fast bowlers. Only on a couple of occasions I've seen that. Netherlands, a very small country with a population of 1.8 crores. And Dutch is the language they speak. And they're long cricket now, moving away from football. Here is Van der Wonning. Around the biggest balls, and she drives and misses and through to the keeper. First time the ball is beaten the bat rather. And a long over again, Van der Wonning has bowled 2 overs, none for 25. And after 9 overs, it's none for 85. And 11 more overs to come after this, I think. Just looking at the clock, you know, 45 minutes ago, and they bowled just 9 overs, which means it could be, you know, penalised towards the later half of the game. But I feel this is one game where 200 looks there, doesn't it?
0: जिस तरह से भारतीय टीम यहाँ पर खेल रही है, निश्चित रूप से एक उम्मीद बन रही है कि भारत की ये महिला खिलाड़ी अपनी इस पारी को बहुत आगे तक ले जाएंगी। लेंगे एक बार फिर से लेग ब्रेक गेंदबाज और ओवर पिच गेंद थी, उसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेल दिया 4 रन के लिए।

0: ये लगा आभा का चौका।
1: यशवंत चाट जो बहुत ही हमारे स्कोरर हैं, अनुभवी स्कोरर, लेग साइड में ये पहला चौका लगा है ये बताया है उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन जानकारी। और 89 रन बगैर किसी नुकसान के 9 ओवर की समाप्ति के बाद ये 10वां ओवर चल रहा है। डी लेंज इस समय गेंदबाजी कर रही है, फुल टॉस गेंद, फिर गेंद को ड्राइव किया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फिर से 4 रन के लिए।
0: ये लगा आभा का चौका।
1: डी लेंगे अब जाके जमीन पर अपने हाथ रगड़ रही हैं, गोया की गेंद उनके हाथ से छूटी है, कुछ नमी सी है हाथ में। और इस बीच दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज हैं डी लेंगे, और देखना है कि वो अपनी गेंदबाजी में भारतीय बल्लेबाजों को कोई प्रभावित कर पाती हैं या नहीं। इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल चल रहा है, भारत के रनों की संख्या बढ़ती हुई 93 पहुंची है। और डी लेंगे एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी गेंद, और इस बार ऑफ के बाहर जाती हुई को धीरे से कट किया था पॉइंट की तरफ फील्डर के हाथ में, और दोनों खिलाड़ी हालांकि क्रीज से बाहर निकल चुके थे और नॉन स्ट्राइक एंड पर जब तक की गेंद पहुंचती और गेंदबाज उसको विकेट्स पे लगाती, दोनों ही बैटर सुरक्षित अपने अपने स्थान पर पहुंच चुकी थी, बहुत आगे निकल चुकी थी। स्मृति मंधना बहुत ही किस्मत वाली रही कि इससे थ्रो बहुत धीमा आया, और अन्यथा भारत को एक नुकसान उठाना पड़ सकता था, बहुत महत्वपूर्ण विकेट होता। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया कवर्स की तरफ, बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है, अब जाके गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन तब तक एक रन और शैफाली वर्मा ने अपने खाते में जोड़ लिया है। और भारत का स्कोर निरंतर मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए, और जिस तरह सा का पिछली गेंद पर एक मौका था नीदरलैंड्स के लिए स्मृति मंधाना को रनआउट करने के लिए, शैफाली वर्मा 48 रन पर जा पहुंची हैं, 32 गेंदों का सामना किया है, 150 की स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रही हैं इस समय। स्मृति 32 रन के स्कोर पर खेल रही हैं, जो पहले आगे थी अब शैफाली से थोड़ा रनों के मामले में पीछे आ चुकी हैं, लेकिन स्मृति मंधाना जिस तरह से खेल रही हैं, इस बार ये गेंद थी एक कदम आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही देखा गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद को ड्राइव किया था वाइडिस मिडॉन की तरफ, एक रन अपने खाते में जोड़ा और उनका स्कोर हो गया 33 रन, 28 गेंदों का सामना किया है स्मृति मंधाना ने। और शैफाली खेल रही है इस समय 48 के स्कोर पर 2 रन, उनको एक नई ऊर्जा भी देगा। इस बीच ये गेंद ऑफ के काफी बाहर थी, ड्राइव किया इसने मिड ऑफ की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन ही मिलेगा, और भारत का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर जा पहुंचा है 96 रन बगैर किसी नुकसान के।
2: So 96 from Tervis, India really in firm control of this game in the first half, and 200 probably I feel could be there. We're just talking about Netherlands as a country, a very small country with 1.8 crore population, and Dutch is the language, which has got a bit of a German mix into that, and they're all these years, their first loves being football. I keep saying about that, but these people have done something a little different. The men's team also does a good job in cricket, so it's just a question of time before we see them play international ODIs and test matches. Long way to go. And Manoj asked, statistician comes with some kind of a record to keep us heavily engaged. Highest score in power play for India in World Cup, 59 in this game at Leeds, 59 for 3 versus Australia in Cape Town in 2023 semi-final, 54 for 2 versus Bangladesh in Perth 20, and 51 for no loss against Bangladesh in Bengaluru 2016. Gwender Rad Bowles beautifully driven, beats a fielder at cover, diving save by Frederick. And I tell you, it was a wonderful save indeed, and appreciated by the whole team. Was it a catch? I'm not sure whether it carried or not, but we'll just pick it up. And Shefali has got to a 50. That's what everyone wanted. The whole country has been chasing about Shefali's form. And finally, she found some form today. 50 from 34. And acknowledged by her batting partner, Smriti Mandana. It was driven officially. I tell you, that was a catch. That will go in as a dropped effort. And it was in the air, and unfortunately she couldn't grab it with both hands. Frederick is pushed the fielder, and she races her bat. Shefali, 50, not out. So India is going on well now, and they are 97. And Shefali's runs predominantly have come on the offside, 28 of them, and balance on the onside. So that's been the mix. Wendon Rad

0: 10 रन प्रति ओवर की इस तरह में बहुत ही मजबूत रगड़े के साथ भारतीय टीम अपना स्कोर बढ़ाती जा रही है। क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल है, कहीं यहां पर ताश के पत्तों की तरह से पारी बिखर जाती है, कहीं रनों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। एकमात्र छक्का भी इस मैदान पे लगा है और इस बीच ये देखना है कि गेंद 115 रन पर भारत को पहला झटका लगा है। शैफाली वर्मा आउट होकर वापस पेवेलियन जा रही हैं। ऐसे गेंद को फ्लाइट किया था, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को उछाल के मारा था और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पार इस गेंद को बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई फील्डर ने अपने हाथ में लिया और ये पहला विकेट भारत का गिर चुका है। सैफ अली वर्मा जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रही थी और उनको ज्वेलिंग ने कैच किया। सीगर्स की गेंद पर 55 रन बनाए, 38 गेंदों का उन्होंने सामना किया और विश्व कप में ये पहला अर्धशतक है। मनोज कुमार हमारे स्टेटिस्टिशियन बता रहे हैं कुल मिलाकर 33वां T20 15 का मैच है, 33वां मैच है जिसमें इन्होंने ये विश्व कप में अर्धशतक जमाने का पहली बार अवसर पाया है। मनोज कुमार स्टेटिस्टिशियन बता रहे हैं। तो भारत को ये पहली विफलता कह सकते हैं, भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सैफ अली वर्मा खेल रही थी लेकिन एक गेंद पर उन्होंने शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को हवा में उछाला था और बिल्कुल सीमा रेखा के पास जाकर गेंद पहुंची थी और ज्वेलिंग वहां पर खड़ी थी। सीजर्स को एक सफलता मिली इस अगली गेंद, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया उसे और बेहतरीन तरीके से कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 15 रन ने सुवर में अब तक आ चुके हैं लेकिन जो सुखद बात है वो ये है कि इसमें नीदरलैंड को सफलता एक मिली है विकेट लेने की। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए उनकी गेंदबाज हरीश बीसी कैंग को ड्राइव किया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। 119 रन अभी भी स्कोर है और जेमिमा रॉड्रिक्स इस समय आई है नए बल्लेबाज के रूप में। एक अमेरिकन गेंद को ड्राइव किया और गेंद जा रही है मिड ऑन बाउंड्री की तरफ लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद खड़ी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, ज्वेलिंग ही खड़ी थी, ज्वेलिंग ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया लेकिन तब तक भारत के पास मौका था एक रन लेने का। 12 ओवर की समाप्ति पर 121 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर।
2: Well, I was just looking at the celebrations after the fall of Shefali's former wicket. Every Dutch girl, they got absolutely excited seeing the exit of Shefali and they were very happy because they got the first breakthrough. But I'm sure when the Netherlands team hits back to their home country, I'm sure they're going to remember this experience for a long time. And we're going to have the bowling analysis, I keep saying, which I missed in the last few minutes. Zwelling, 3 overs for 22. Sages, 2 overs for 26. And she got a wicket too in the last over. Warning, 2 overs 25. Van der Rad, 2 overs for 16. And Nylander, 2 overs, none for 16. One wicket taker so far. And now change in bowling. We're going to see another leg spin bowler in action. She bowled 1 over before this. And I was surprised that she was taken away. It is Silver Seager. She can bowl around the wicket. Over the wicket with a round arm action. Short climbs onto the batswoman. And it's pulled away down to its deep. It's quite like a juggle with the ball, in fact, by Wender Wunning. And finally, she sends the return back to the wicket keeper. 1 for 122 from 12.1 overs. And India heading towards a massive score. Dave. I think she had a nasty bounce coming up because of the... there was a hole dug over there, maybe a yard or two in front of her, and it just bounced on her. And luckily, it was a nasty one.

0: कैच लिया और उछलते हुए गेंदबाज ने भी अपने आप अपनी खुशी का जाहिर किया यहाँ पर। और भारत का स्कोर इस समय 162 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जेमी मर रॉड्रिक्स ने दो चौके इस पारी में लगाए थे।
1: You look at the celebrations of the Dutch girls. Amazing, isn't it? They are celebrating each and every moment of this game. They're really enjoying this World Cup as a team together. And whenever they get a wicket, you know, irrespective of the score, I think the celebration has been wonderful to watch. And they are taking this game to a different level when they go back to Netherlands a couple of weeks from now. I'm sure there'll be a lot of learnings, and this experience is going to be very handy for them, for the future generation within Netherlands, to take the game and endorse T20 cricket very seriously. And their celebrations are wonderful to watch.
0: बिल्कुल। इस समय मंधाना और शैफाली वर्मा रॉड्रिक्स तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। स्मृति मंधाना ने 74 रन बनाए, शैफाली वर्मा ने 51 रन बनाए और रॉड्रिक्स ने 23 रन बनाए। इस बीच गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड में मिड विकेट रीजन में, लेकिन एक रन ही मिलेगा। यस्तिका आई है नए बल्लेबाज के रूप में, एक रन के साथ अपना खाता खोला और भारत का स्कोर 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से आज भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए एक मजबूत आधार यहां पर रखा था, लेकिन उसके बाद तीन विकेट भारत को गिरे और भारत का स्कोर बहुत मजबूत है इस समय 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और रॉड्रिक्स गेंद को स्वीप करना चाह रही थी ऑन साइड में, लेकिन जैसे ही गेंद उनके बल्ले के नज़दीक से निकलते हुए ग्लव से टकराई और विकेट के पीछे बबेट ने उनको कैच किया। इस बीच अगली गेंद थी राजकीय, उस गेंद को ड्राइव किया है ऑफसाइड में और पीछे खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कैलिस खड़ी थी वहां पर, स्टीर कैलिस, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 164 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर। रिचा खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर और यस्तिका खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर। तो इस समय भारत को और रनों की आवश्यकता है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही बल्लेबाज कुछ और रन जुटाएंगे। इस बीच ओवर पिच गेंद के देरी से फ्लिक किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद को फील्ड करती सीजर्स गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, लेकिन एक रन और यस्तिका ने लेते हुए अपना स्कोर कर लिया। दो रन, दो गेंदों का सामना किया उन्होंने, दो रन बनाए, 165 रन भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर इस समय चल रहा है।
1: And Vendor Red, she's come back strongly after her first over, went for 6 wides, and I tell you, she's found her rhythm so well.
0: जी, एक बार फिर से वेंडर रेड वापस गेंदबाजी करते हुए, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी लेकिन इस बार दोबारा डालनी पड़ेगी, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से।
1: इट्स माय कर्स।
0: जैसे ही आपने तारीफ की, उन्होंने एक वाइड गेंद डालते हुए बताया है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण अभी भी उनके पास में नहीं है। 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर। रिचा खेल रही हैं, रिचा घोष विकेट कीपर हैं भारतीय टीम की, एक रन के स्कोर पर, और यस्तिका खेल रही हैं दो रन के स्कोर पर। 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर यह गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और गेंद को लेकिन बहुत ऊपर उठी है, देखना इसको नीचे फील्डर कैच करवाते हैं, यहीं ड्रॉप कर दिया, ये गेंद छोड़ दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मौलकबीर वहां पर खड़ी थी, उनको लगभग गेंद उनके हाथ में आ चुकी थी, लेकिन यस्तिका की किस्मत अच्छी रही कि गेंद एक आसान कैच छूट गया डच खिलाड़ियों के हाथ से। काफ़ी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन दोनों खिलाड़ियों के बीच में हुआ था। उन्होंने देखा कि मिड ऑफ पे खड़ी फील्डर आगे आ रही हैं, लेकिन जब देखा कि वो नहीं आ रही हैं तो वो आगे बढ़ी और उन्होंने गेंद को हाथ में ले लिया था, लेकिन छिटक कर कैच चला गया। इस तरह के कैच बहुत महंगे साबित होते हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को धीरे से डीप स्क्वायर लेंग की तरफ से सीजर्स के पास खेल दिया, एक रन और अपने खाते में जोड़ते हुए यस्तिका का स्कोर हो गया 3 रन और ऋचा घोष खेल रही हैं 2 रन के स्कोर पर इस ओवर की समाप्ति पर।
1: Well, in the last over, it was not really a catch that was dropped. They also missed the run out. In fact, Richa was not running to the other end. She thought she's going to be out for sure. And it was a very easy chance that was spilled at the cover area. I tell you, that was basic stuff. It was kid stuff indeed. And that should have been catchable at any standard. And unfortunately, she dropped it. It all happens in any form of cricket at any level, but they probably would have got back to basics in trying to run the batter at the other side. They missed both of them. It's a bit of an experience on the part of Netherlands side, but nevertheless, India in a very strong position

0: But I'm very impressed with Van der Waart comeback. She had a horrendous first hour. Dean Lange, she comes to in balls and will be stumped easily. Easily stumped indeed. It's Jastika, she's gone. Again, a lot of celebration in the Dutch camp. Lange gets her first wicket. She got two in the first game against Bangladesh. In India, 164 for four. Correction, 168 for four. And the wickets have started to fall at very, very frequent intervals indeed. Nicely tossed him. And that one spinned with the arm and was an easy stumping for the captain, Dean Lange, to complete. That's got the batter's standard by a mile. So celebration all across. I could see the smile coming from everyone in the Dutch team. They're all enjoying every moment of this World Cup. They're enjoying every wicket of this. So it's Jastika Barrier, stemmed by lead and off the bowling of Dean Lange. And I won't say India in a spot of border with the fourth wicket going down, but I think, you know, the exit of Mandana, the flow of runs have been controlled to a large direction. We haven't seen, the boundaries and the sixes getting in. So we'll just give you the bowling scorecard in a while from now. We're just getting it from a scorer. But the captain is in. Lange bowled short. And that's thrashed off the back foot down towards deep extra cover. Oh, it's a nasty bounce for the fielder patrolling the boundary. I think the ball hit one of those playing turf indeed and bounced on to her. And the captain is over the mark. Harmanpreet Kaur, the 50-50 winning World Cup last year. And I tell you, she's really led the team by an example. There's a lot of discipline in the side, and she's been well respected within the side as a leader. And I think she's done a great job for the team. Lange, Dean Lange, she's in the last of bowls. This is hit high, straight down the ground. One go for five, I presume. No, it's gone for four indeed. And a tremendous hit indeed by Richa Ghosh. That's a penalty you play when you drop her, because she smashes that one. In fact, it's gone for six, actually. And we couldn't pick it up very cleanly here. It's gone for six. It just managed to cross the boundary ropes over there. Flat indeed from Richa Ghosh, and boy, she's a very powerful lady. And when she hits them a long way. Pretty strong wrist indeed. Here's the next ball. Lange ball short, wide. She has to wait and reach for it. And a good diving stop at backward square on the offside. And that takes Richa up to 9 from 4 deliveries. India 176 for 4. The 2.2 overs remaining in this game. They still managed to bowl with the least of penalty, I presume, because they had plenty of wides in this game. So 15 wides in this game. It brings the captain on strike, Harmanpreet Kaur. 178 matches, 4,112 runs. Amazing career indeed. First ball, she goes back, rocks off the backward, but unfortunately it goes straight to Heath Seegers at extra cover. No run. She's on 1 from 2. Look at the run rate, 9.87, going steady. With the next match coming up after a few hours from now, Pakistan and South Africa. Harmanpreet Kaur off the backward cuts this one. They're running a tough single indeed. There's a chance of run out of this non-strikers end. They still complete the run. And at the end of 18 hours, it's 4 for 177.
1: 18 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर है 177 रन और भारत की तरफ से जो विकेट्स गिरे हैं पहला विकेट गिरा था 115 रन के स्कोर पर शैफाली वर्मा आउट हुई थी दूसरा विकेट 162 के स्कोर पर स्मृति मंधाना आउट हुई तीसरा विकेट 162 के स्कोर पर ही गिरा जेमिमा रॉड्रिक्स आउट हुई थी और उसके बाद चौथा विकेट यास्तिका भाटिया के रूप में गिरा था उस समय स्कोर था 17.168 रन स्कोर था और इस तरह से जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस तरह की गेंदबाजी कर रही हैं नीदरलैंड्स की गेंदबाज वहां पर रनों की संख्या तो बढ़ाई भारत ने लेकिन विकेट भी गिरे हैं 18 ओवर के बाद 9.83 के औसत से रन जुटाए हैं भारतीय टीम ने इस समय भारत का स्कोर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए 177 रन 4 विकेट के नुकसान पर और ये 19वां ओवर यानी इसके बाद भी इस ओवर के बाद एक ओवर और खेला जाएगा इस बीच गिराड इंडियन को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद धीरे से कलाइयों के सहारे से स्क्वायर लेग की तरफ खेला हरमनप्रीत ने और अपने खाते में एक रन और जोड़ दिया हरमनप्रीत का स्कोर इस समय 3 रन। ऋचा घोष अब आ रही हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक स्ट्रोक प्लेयर कही जाती हैं और कई मौकों पर भारत के लिए उन्होंने अंतिम क्षण में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, मुझे याद है गत वर्ष जब विशाखापट्टनम में विश्वनाथ और मैं एक दिनी विश्व कप में कमेंट्री कर रहे थे, ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बहुत ही शानदार स्कोर किया था। इस समय ऋचा घोष तैयार हैं 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर 178 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह अगली गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है, गेंद बिल्कुल हवा में जा रही है और 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर।
2: ये लगा आभा का छक्का।
1: बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा हम बता ही रहे थे कि ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक मूड से बल्लेबाजी करती हैं। ऋचा घोष ने बिल्कुल स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और पूरी ताकत के साथ गेंद को हवा में उछाल दिया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए जाकर गिरी थी। एक और शानदार छक्का ऋचा घोष के बल्ले से निकला और भारत का स्कोर 184 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ऋचा घोष फिर से तैयार हो रही हैं, 5 गेंदें उन्होंने मात्र खेली हैं और 15 रन बना लिए हैं। अगली गेंद शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल किया है उसे, देखना है फील्डर नीचे नहीं लेकिन बहुत पीछे थी फील्डर और पहले टप्पे के साथ फील्डर के हाथ में आया डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। 1 रन और ऋचा घोष ने अपने खाते में जोड़ लिया, 16 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। इस समय 185 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर। ऋचा का स्कोर हो गया 16 रन 6 गेंदें मात्र खेली हैं और वैन डी राट की ये इस ओवर में 8 रन अब तक ले चुके हैं, 3 गेंदें अभी भी शेष हैं। हरमनप्रीत इस बार तैयार हैं अगली गेंद का सामना, फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया उसे और गेंद अब जाके फील्डर के हाथ में आई लेकिन तब तक हरमन और ऋचा ने 22 गज के इस घेरे की पट्टी को दौड़ते हुए पूरी किया। हरमनप्रीत का स्कोर हो गया 4 रन 5 गेंदें उन्होंने खेली हैं। ऋचा अब 16 रन के स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं अगली गेंद का। भारत और नीदरलैंड्स के बीच में T20 विश्व कप का यह मैच, टॉस नीदरलैंड्स ने जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। राग की यह गेंद शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, पॉइंट बाउंड्री की तरफ उसे गेंद को टैक किया था और 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: 190 रन भारत का स्कोर 19 ओवर की समाप्ति पर।
0: Well, the last shot was just fantastic to watch from Harmanpreet Kaur. Just bounced inside the fence for 4-1 bounce. And the fielder at the boundary, she was not at the edge of the boundary rope. She was just, yeah, what I would say, a couple of yards in front, and she was never in control of that. That was catchable by all means. 190 for 4, one ball to go in the 19th over. And, well, India should get past 200, I think. That's what everyone was looking at. Ran in the last of bowls, Fuller. That's beautifully bowled. It was a dot ball in the over. Fuller, Yorkerland ball. And Richie was trying to make some space and crush it and missed it. And a dot ball. 4 for 190 from 19. Exactly 10 is the scoring rate from India's point of view. If you just switched on your radio sets, you're driving the car. It's one of the best form of entertainment. And India was sent in by Netherlands today, the second of the matches they're playing this World Cup. They're 190 from 19 overs and well set for a 200. I think we're not seeing a 200 score in this World Cup so far. And well, we're not seeing much surprises from the Dutch women, but I tell you, they've taken this game at a different level and they're going to be a big inspiration for the future generation within Netherlands to come up. And the first game they played against Bangladesh, they played well. First ball, here is now, Zwilling Bowles gets an edge, it's going down towards deep. Third man, and run away for 4.
2: Ye laga, abha ka choka.
0: Not a great start to the last ball, to the last over. It was a tick outside edge and it flies past the fielder who is inside the circle within the 30 yards and wide off her for 4. So that's what India needed. 194, 5 legal deliveries remaining and good entertainment indeed provided by the Indian batters. Richa goes in 20 from 8 and Harmanpreet Singh on 8. Next ball is wide down the leg. Well taken by the keeper. Beautifully done indeed.

0: 15 run opening stand between openers Shefali and Smriti, and India posting 209 for 5, India's first 200 run score in T20 World Cups. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha. Joining me in studio as my co-host is Suhas Vedam. Our experts are former cricketers Colonel Bhoop Raj Singh, Vaishali Mathur, and senior sports journalist Soumitra Bose.
1: Welcome everyone.
2: Thank you.
1: Highest ever T20 World Cup score for India. Let's start with that here. We were talking about being presented with a challenge. Harman wanted a challenge. Boy, have they responded to that challenge brilliantly. 200 breached, and I think it'll do a world of good to their net run rate as well, which they're eventually looking at, and of course the confidence. Mr. Soumitra.
2: Certainly. In fact, 209 is a par for the course. But again, I think Netherlands will be disappointed with the way they started, but they finished very strongly. Catches dropped, and the difference that could probably make is the 16 runs of extras that they conceded. Out of that, 14 white balls, one no ball. That means they have bowled more than 2 overs to the Indians, and the Indians capitalized in 50s by. You know, we were talking about Shefali Verma. She did it. And of course, Smriti Mandhana's always on song. I think it's a good total for India.
1: Right, a couple of boxes ticked, especially, Colonel, when you look at India's top order. You wanted them to come back into form before the bigger South Africa assignment arrives.
3: Oh, yes. Shefali has played really well today. And so has Jemima. For the short time she was there, she scored about 20 runs. And of course, Mandhana was flawless. We had a minor hiccup in the 16th and 17th overs where we lost 3 quick wickets. But that, I suppose, was that we wanted to go in for a big score, 200 plus. And we took some chances, and that is how we lost those 3 quick wickets.
1: Right, so no complaints there whatsoever. They had to bat that way.
3: Not at all.
0: वैशाली जब ये दोनों ओपनर्स शिफाली और स्मृति सॉन्ग पे होती हैं अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देखने को मिलता है पावर और टाइमिंग
4: जी शिफाली पावर एंड स्मृति टाइमिंग एंड सबसे अच्छी बात ये फियरलेस बैटिंग करी आज शेफाली वर्मा ने एंड ये उनके लिए बेटर है क्योंकि उनका जो बैट का स्विंग है वो साउथ अफ्रीका के लिए मैच के अगेंस्ट उनको बेटर वे में उनको कह सकते हैं कि रन रेट उनका इक्वल कर सकता है एंड उसके साथ साथ स्मृति मंदना हमेशा ही इतना फियरलेस खेलती हैं वो तो उसकी उनके बारे में क्या ही बात करें हम और उसके साथ अगर मैं जेमिमा की बात करूं तो जेमिमा ने काफ़ी फियरलेस बैटिंग करी है लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये लग रहा था कि उनको और बेटर पिच पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए था क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम जो आने वाला आपका नेक्स्ट मैच है उसके लिए आपको टीम पिच पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी था आज एंड यस्तिका भाटिया एज अगर हम कंपेरिजन करें भारती की और यस्तिका की तो दोनों सिमिलर है अभी दोनों एक ही जगह पर स्टैंड कर रहे हैं एंड कोई भी खेले बट हरमनप्रीत को उनकी जगह पे आना चाहिए था और बेटर हमारा रन रेट बढ़ सकता था एंड उसके साथ अगर हरमन की बात करूँ तो लास्ट मैच और इस मैच में देखें तो उनका बैट उस तरीके से चल नहीं रहा है जो साउथ अफ्रीका के लिए हमें चाहिए बैटिंग
1: राइट अगर हम बॉलिंग की बात करें नेदरलैंड्स की तो दिलांगा उन्होंने 2 विकेट चटकाए और सीगर्स ने भी 1 विकेट चटकाया उसके बाद

0: बावजूद अगर आप देखें तो इंडिया वर एबल टू टैकल द स्पिनर्स वेल. क्या उन विकेट्स के चलते आप कह सकते हैं ये कर्नल की इस विकेट में कुछ ना कुछ तो है स्पिनर्स के लिए, मदद जरूर है?
1: या देयर इज स्लाइट यू नो असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स. हालांकि विकेट थोड़ी फास्ट खेल रही है, लेकिन अगर आप राइट स्पॉट पे फ्लाइट करके बॉल डालोगे तो हल्की सी टर्न भी है जिससे बैट्समैन को खेलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी.
2: Soumitra, it's also about who they are up against. For example, Asset Mandhana, even if it's an off spinner in front of her, is not going to be uncomfortable.
3: Absolutely. But just to add to what Colonel said, all the five wickets that India, all the wickets that fell, so all were bad dismissals. Have you noticed that? What kind of strokes Jemmy played, you know, Richa was lucky because she was dropped on two.
0: Right.
3: I mean, imagine if Harmanpreet was also not dropped. We could have been in bigger trouble. It so happens कि ये जो आप हमारा टीम है, opposition है is Netherlands. Imagine, can you do this with Australia or South Africa? Answer is no. And spinners, yes, fine, but did you see if the ball turned too much? Not too much, maybe. Because the point is this, they were both trying to, that's what I said, कि in the 16th over onwards, the Dutch bowlers tried to get something back out of this game.
0: Right.
3: That's why Dilange got. But again, the wickets we gave Dilange were gifts.
0: Got it.
3: Except for the fact that Yastika stepped out, missed the line completely and was bowled. And was stumped.
0: Right.
3: So the point is just how you played the match. I think it's largely because the two batsmen in the top of the order, they got the runs. And if you see the contrast of the first match, where the middle order got the runs, top order did not, where it was a bit of a reverse. Mm-hmm. But things are, there are lessons to be learned from this match.
0: Hopping about the spinners once again then, if it's not turning as much, Vaishali, jis tarike se chahalkadmi ki thi Smriti ne, the fact that she was able to use her feet to the spinners, that brought a lot of runs. Do you think the opposition will borrow a leaf out of her book? Wo bhi waise hi khelne ki koshish karenge jis tarike se Smriti ne pace out kiya tha apne innings ko?
4: ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है कि जहाँ पर अभी स्पिनर, अगर हम पूरा आंकड़ा निकाल के देखें तो अभी भी स्पिनर ने ही विकेट ज़्यादा ली है. एंड हमारी दीप्ति शर्मा, अगर वो जैसे उन्होंने लास्ट मैच में पकड़ के एंड स्पॉट बॉलिंग की थी, वही अगर वो उस तरीके से बॉल करती और श्री चरणी करते तो हो सकता है आज दोनों ही बॉलर अपने नाम भी विकेट्स कर सके.
2: वो पर खास करके हमने दीप्ति के केस में देखा है कि अगर वो कोई चीज को वेरी करती है, वो होता है उनका पेस, वो होता है उनके लेंथ, लेकिन लाइन हमेशा सटीक ही रहता है.
1: देखिए, शी इज अ वेरी गुड बॉलर. हम उसको जो नेदरलैंड्स के बॉलर है उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते. शी इज अ बिग मैच प्लेयर, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा विकेट्स ले रखी हैं, तो उसकी बॉलिंग यहाँ पे इस विकेट पे बड़ी अच्छी होगी. एंड मुझे लगता है कि जो नेदरलैंड्स के बैट्समैन हैं उनको काफ़ी ट्रबल करेंगी. और जिस प्रकार से ये विकेट खेल रही है, मुझे लगता है जो हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स हैं वो भी विकेट लेंगे, क्योंकि बॉल स्किड हो रही है थोड़ी, तो फास्ट भी करते हैं हमारे बॉलर्स. एंड ये जो नेदरलैंड्स के बैट्समैन हैं, इनके पास इतना थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर वन आउट बैट्समैन.
0: राइट. और फान दे राड अगर आप देखें तो अराउंड द विकेट आ रही थी बतौर पेस बॉलर, वहां से भी मौके बनाए थे उन्होंने, क्योंकि उस एंगल को टैकल करना बहुत मुश्किल लग रहा था, खासकर तब जब बैटर्स नए थे क्रीज में. क्या नंदिनी शर्मा आज वो पैतरा अपना सकती हैं?
3: कर सकते हैं. Fast bowlers. If you see the Dutch fast bowlers, आप initially जब वो ball कर रहे थे, their overs were 10 ball overs.
0: Right.
3: आपने notice किया होगा कि England में जो है कि line and length control, especially line को maintain करना, especially when you go angle road delivery, उसको control करना बहुत ही मुश्किल है. और it will be a test for the Indians, of course, as Colonel said that you can't compare Indian bowlers with Dutch bowlers. You know, they're just coming out and playing. Deepti Sharma or all are fast bowlers. काफी experienced है. They big match players, and you know, you will see better bowling from this. Only thing is they have to be supplemented by good fielding.
1: Nandini Sharma can move the ball both ways and she'll be quite effective on this wicket.
2: Interesting. Aur isi beech hamare saath ek
5: दिवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया.
6: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं.

0: और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष या राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिला

0: महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,100 पर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर ₹94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently

0: She's a wonderful middle order player. 66 innings, 1,953, got an extra strike rate of 104. First ball, she's back and defends up to shortest mid-wicket. The captain, Harmanpreet Kaur, the fielder. It's 2 for 50, we're in the 8th over. And the game slowly creeping away from the Dutch women. Deepthi Sharma. Up she comes, runs in a few paces and bowls short. And stumped stylishly off the back for a lovely stroke indeed. And this is going down towards the extra cover fence for four. Well, that was a quality stroke indeed. Beautiful shot off the back foot. And it looked very elegant, very graceful. And a nice shot indeed for Callis to get off the mark. She goes up to four. And one ball remaining in the 8th over. 2 for 54 is the Netherlands scorecard, chasing 210. And now the sweeper goes on the fence on the offside. There's a deep cover now. Next ball. She came forward to play and then ended up playing from the crease. She was deceived in the flight. Beautifully bowled by Deepthi Sharma. A successful over, 1 for 9 from that over. And at the end of that over, over number 8, Netherlands 2 for 54.
1: नेदरलैंड्स के स्कोर इस समय 54 रन दो विकेट के नुकसान पर, जो दो खिलाड़ी आउट होकर पेविलियन लौटे हैं, हीथर सीजर स्कॉट, स्मृति मंधाना बोल्ड, कीर्ति शर्मा 21 रन, मेलकेन बोर कॉट, जेमिमा रॉड्रिक्स बोल्ड, दीप्ति शर्मा 15 रन। दीप्ति शर्मा जैसे ही मैदान पे आती हैं वो एक सनसनी फैलाने के लिए बॉलिंग गेंदबाजी करती हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी पाकिस्तान के विरुद्ध की, जिस तरह आधी टीम को बाहर किया था। इस बीच एक बार फिर से श्री चंडी के गेंद को स्वीप किया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन वहां पर खड़ी फील्डर ने उसे गेंद को फील्ड कर लिया, कोई मौका नहीं। आज एक दुर्भाग्य रहा भारत का कि श्रेयंका पाटिल अपनी ही गेंद पर गेंद को रोकते हुए गिर पड़ी थी और एंकल चोट उनको लगी है। उनको मैदान के बाहर ले जाया गया। राधा यादव उनकी जगह फील्डिंग कर रही हैं। समय नीदरलैंड्स का स्कोर 55 रन दो विकेट के नुकसान पर। अभी भी 155 रन की आवश्यकता है, 71 गेंदों का सामना अभी करना है। डी लीट इस समय खेल रही हैं 13 रन के स्कोर पर, कालिस खेल रही हैं 4 रन के स्कोर पर। ड्राइव किया से पॉइंट की तरफ पर राधा यादव ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में फील्डिंग कर रही हैं श्रेयंका पाटिल की स्थान पर। श्री चरणी जिस तरह से गेंदबाजी कर रही हैं, एक ऑफसाइड में एक दीवार सी खड़ी कर रखी है कप्तान। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, स्वीप करना चाहती थी, अंपायर की तरफ देख रही हैं और वाइड का इशारा। इस मैच में जो अंपायर हैं क्लियर पोलोशेक और सूर्य डफन जो कर रही हैं मैदान में अंपायरिंग, लॉरेन अगेन बैग तीसरे अंपायर यानी टीवी अंपायर के रूप में गेंदबाजी कर रही हैं। इस समय नीदरलैंड का स्कोर 56 रन पर। दो लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया और गेंद को फील्ड किया गया और रन लेने का जो सिलसिला है वो और आगे बढ़ता जाए। इससे पहले भारतीय खिलाड़ी बहुत मुस्तैदी के साथ फील्डिंग कर रहे हैं। किसी भी तरह की अभी तक जो फील्डिंग में एक कसावट नज़र आती है नीदरलैंड की फील्डिंग के मुकाबले, वो अभी तक भारत के लिए बहुत ही संतोषजनक बात है। 57 रन दो विकेट के नुकसान पर। डी लीडे समय खेल रही हैं, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया था सीधे कवर्स के पड़े खिलाड़ी के हाथ में, शेफाली वहां पर खड़ी थी, गेंद को फील्ड कर लिया, रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया। श्री चरणी इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करती हैं श्री चरणी, जैसे बाएं हाथ की गेंदबाज हैं और बैटर्स को कोई मौका नहीं दे रही हैं। इस बार श्री चरणी गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, स्लॉट पे पड़ी, ड्राइव किया इसे, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा कवर पर हरमनप्रीत कौर खड़ी थी, गेंद को फील्ड कर लिया और रन लेने का कोई भी मौका नहीं दिया। लीड और कैलिस इस समय दो बैट्समैन बैटर्स खेल बीच मैदान पर, बाबेट डी लीड जो कप्तान हैं। इस बीच एक बार फिर से श्री चरणी की गेंद लेग स्टंप की तरफ, गेंद को टर्न किया था और देखना है गेंद पैड से टकराई या बैट से लग के गई। अब जाके फील्ड किया दीप्ति शर्मा ने और अंपायर भी देख रही हैं और बेल्स हालांकि वहां पर बिखेर दी थी, एक हाथ ऊपर करके एक हल्की सी अपील विकेट के पीछे से श्रेया घोष कर रही हैं, लेकिन अंपायर ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 9 ओवर की समाप्ति पर 59 रन दो विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर।
0: Well, it's a bit grinding there for Netherlands.

0: टॉप लेन गेंद थी, बैकफुट पे गई और गेंद को स्क्वायरस थर्ड मैन की तरफ निकाल दिया चार रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: कीर्ति गौड़ मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी उनकी और ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी। बल्लेबाज ने मौका तोड़ा और गेंद को धीरे से कट कर दिया था डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चार रन के लिए। इस समय क्रांति गौड़ से बातचीत कर रही हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर, उनको समझा रही हैं कि किस तरह से उनको अपनी गेंदबाजी की दिशा बनाए रखनी है और दोनों बैटर्स कहना होगा बहुत अच्छा खेल इस समय दिखा रहे हैं। लीड खेल रही हैं 16 रन पर और कैलिश खेल रही हैं 17 पर सामना करने के लिए अगली गेंद का। इस गेंद को धीरे से पुश किया था मिड विकेट की तरफ और इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता एक रन और लीड ने अपने खाते में जोड़ा, उनका स्कोर कैलिश ने अपने खाते में जोड़ा 18 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। लीड का स्कोर इस समय है 16 रन 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बैबेट दी लीड कप्तान है और विकेट कीपर भी हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि क्रिकेट में विकेट कीपर की को आकर बहुत देर तक जमने के लिए गेंदों को देखना नहीं पड़ता। इस बीच ये गेंद को धीरे से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ ड्राइव कट किया है और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: लेग स्टंप के बाहर थीर गेंद को धीरे से उन्होंने हवा में थी, हालांकि फील्डर जो खड़ी थी शॉर्ट फाइन लेग पर उन्होंने गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था, पुश भर किया था गेंद को अपने बल्ले से और फील्डर के हाथ में तो नहीं आई लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जरूर चली गई। लीड इसके साथ ही 20 रन पे जा पहुंची, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसने अच्छी गेंद थी, इस बार एक कदम आगे बढ़ी, धीरे से गेंद को पैड के साथ खेली थी लेकिन इसके साथ ही रन लेने का कोई मौका वहां पर लीड को नहीं मिला। बबेट द लीड कप्तान हैं और इससे पहले जो बांग्लादेश के विरुद्ध मैच खेला था इस T20 विश्व कप में अपना पहला मैच खेला था, वहां पर 50 रन से अधिक उन्होंने बनाए थे, एक अर्धशतक बनाकर टीम को एक सांत्वना दी थी। हालांकि बहुत कम स्कोर पर उनकी टीम वापस पेविलियन लौट चुकी थी, ऐसे मौके पर डी लीड ने आकर अपनी पारी को संवारा था। इस बीच एक बार फिर से तैयार, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद थी लेग ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, गेंद को खेलना चाहती थी लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकते हुए थी विकेट कीपर घोष की ग्लव्स में जाके पहुंची। बबेट डी लीड बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रही थी बांग्लादेश के विरुद्ध एजबेस्टन में, उन्होंने बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 45 बॉल में 50 रन स्कोर किया था। लीड फिर से तैयार हो रही हैं, क्रांति गौड़ के शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, गेंद को पुल करना चाहती थी पूरी तरह से चूकी और गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गई और देखना है अंपायर बात कर रही हैं वहां पर कि क्या कहीं गेंद बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर एक निर्धारित ऊंचाई से ऊपर निकली, लेकिन 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की समाप्ति पर।
2: Oh, that was a good bouncer. It was a bouncer heading on straight towards her head, and she missed it completely. She had a look at the umpire, the square leg, and there was no signal from the square leg umpire, which means it was a genuine delivery. So, see, the bounce has been a bit effective in this World Cup, I've seen, because some of the tracks in England also have a bit of bounce. There's always something there for fast and swing bowlers. 133 more needed from 54 deliveries, which is 9 overs, and the game is just getting beyond the reach. Shefali bowls the first ball and it's placed backward a square on the offside straight to Jemima, and no addition to the total. So only 77 for 2. Missed some opportunity over there finding boundaries, and this World Cup India probably will be one of the contenders. Shefali close to some bowls. Oh, she's bowler beautifully bowled. She missed it completely, and Callis is gone bowled, and that was beautifully bowled, and I think it held its line a bit as the player was the batter was waiting for the spin, and that didn't happen. It went, well, it slided on and it broke the timbers. An amazing delivery indeed by all means. It drifted away, I can tell you that. And then it held its line, and the batter played the wrong line completely, and the stumps are disturbed. So which means the third wicket is

0: down for Netherlands, 77 for 3 in the 12th over. And Sterry Callis walks back 18 from 13 with the help of 3 boundaries. And probably these are the opportunities that I think batters should not lose, as a matter of fact. This is a beautiful platform to find some form and get ready for the rest of the other games. So qualifying for the semi-finals is very challenging now, because you're in a pretty strong group, and when you play teams like Australia or India or South Africa, as a matter of fact, it won't be that easy indeed. So Netherlands have lost their third wicket. Callis has gone bowled by Shefali Verma, a beautiful delivery which actually drifted away, and it held its line and got the batter playing the wrong line. 77 for 3. And it's Rich Key, she's the new batter in, and she's going to play Shefali Verma. She's a very tricky customer, quick and one, flicked away on the onside, and she's off the mark. Rich Key of the first ball, and that brings the captain on strike, 20 from 19. And she's played beautifully in this game so far. Got a half century in the last game against Bangladesh. And Shefali all of a sudden has got the habit of breaking partnership indeed. And very effective and fast becoming a genuine all-rounder. Next ball. She's back again. Pulls it high over deep into wicket. One go for four has been patrolled by Renuka. And in comes the throw, rather, she was the fielder, and restricts to just a single. It's 79 for 3, two more balls remaining in the 12th over, as Netherlands need 131 from 50 deliveries, and the game is just getting beyond the reach. Rich Key on strike. Takes guard from the umpire. And she goes for the reverse sweep. We're not swinging reverse sweep in the whole game. This is going down towards the third man area, and that's gone away for four. A smart bit of cricket indeed. And a lot of scoops being played, the sweep's been played, and the first time I'm swinging a reverse sweep and played to effect. And it fetches her four more runs, and she's up to five. And a welcome boundary here for the Netherlands. And, well, the cricket time is a very funny game. She's on 5 from 2, 83 for 3 in the 12th over, 127 needed. Shuffle in the field from Harmanpreet Kaur. No reinforcement on the offside within the 30-yard circle. 4 inside the circle. Next ball. She's up and defending, back to the ball. A very proper defensive push back to the ball. It brings the O to an end. 12 overs gone. It's 3 down for 83.
1: 12 ओवर के समाप्ति पर 83 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी है नीदरलैंड्स की टीम, लेकिन जैसे जैसे ओवर्स बीतते जा रहे हैं मैच भारत की पकड़ में आता जा रहा है और नीदरलैंड्स से दूर जाता जा रहा है। मात्र 8 ओवर का खेल अब शेष रहा है और 15 से अधिक रन अगर प्रति ओवर बनाने की क्षमता है नीदरलैंड्स की, तब तो कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर आज की परिस्थिति में, अभी की परिस्थिति में देखा जाए तो नीदरलैंड्स की टीम अब थोड़ी सी परेशानी में। 6.92 की उनकी गति है, जबकि उनको चाहिए 15.88। इस बीच क्रांति की पहली गेंद को घुमा दिया है ऑनसाइड में। बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज का घेर की पट्टी को पार किया। एक रन उनके खाते में जुड़ा है और इसके साथ ही स्कोर हो गया 83 रन। इस बीच 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच एक जानकारी हम और आपको दे चुके हैं कि दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है भारत और अफगानिस्तान के बीच में लखनऊ में खेला जाएगा। इस बीच ये गेंद हवा में ऊपर है, देखना है फील्डर्स के नीचे है या नहीं, लेकिन बहुत ही थोड़े से अंतराल से बच गई, वो बाल बाल बची। वहाँ पर स्मृति खड़ी थी, गेंद की तरफ लपकी थी, लेकिन गेंद उनके हाथ पे नहीं आई। डी लीड 21 रन पर सामना करेंगे, जबकि रिस्क क्या स्कोर हो गया 6 रन बगैर किसी नुकसान के। 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर्स के खेल पर और 125 रन अभी भी चाहिए नीदरलैंड्स को इस मैच में पार पाने के लिए 46 बॉल में गेंदों पर बहुत मुश्किल काम। शॉर्ट ऑफ लैंड गेंद थी, पुल करना चाहती थी, हालांकि पीछे विकेट कीपर अपील की मुद्रा में है, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। एक अतिरिक्त रन और इस ओवर में दूसरा अतिरिक्त रन एक लेग बाई से मिला था पहली गेंद पर, उसके बाद में एक रन बल्लेबाजी में मिला था और उसके बाद में ये वाइड गेंद करार दी गई। 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर। कप्तान बबेट डी लीट इस समय बीच मैदान में सामना करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ हैं रिच्क। इस बीच एक गेंद को पुश किया था लीड ने और एक रन अपने खाते में जोड़ा। 22 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। भारत ने आज अफगानिस्तान के विरुद्ध सेकेंड जो मैच खेला था 170 रन से जीता है भारत ने, और ये सूचना हमारी श्रोताओं को दी जा रही है कि आज जो मैच खेला गया था लखनऊ में, दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था और उसमें भारत ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 170 रन के बड़े अंतर से अफगानिस्तान को पराजित किया है। 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच लीड्स के में खेला जा रहा T20 विश्व कप का ये मैच। 112 ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ खेला, एक रन और जोड़ा है 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है और अगर उनको प्रति ओवर 16.50 रन की दरकार है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है नीदरलैंड्स के लिए। और इस बीच क्रांति की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को कट किया था, स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ, लेकिन अब जाके राधा यादव ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर एंड में, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था कि वो रन जुटा लेते। 2 रन और जुड़े हैं नीदरलैंड के खाते में। जिस तरह से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, छिटकी थी वहां पर फील्डर के हाथ से, गली में खड़ी फील्डर के हाथ से लगकर गेंद गई थी स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ, थोड़ी सी मुस्तैदी रखी जाती थी, ये कैच हो सकता था। इस बीच एक बार फिर से क्रांति की गेंद, अगली गेंद अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन बैट और बल्ले से उलझी गेंद बहुत तेजी के साथ रन चुराते हुए डी लीड्स दौड़ी, वहां पर उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। इसके साथ ही 25 रन 13 ओवर की समाप्ति पर 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर।
0: No Indian bowlers have been tossed in this game, and a lot of cricket going around the world. India playing Afghanistan, and they won the game today, the second ODI by 170 runs, with centuries from the captain and of course the wicketkeeper. They're all hammering hundreds, and it was a comprehensive win for India. 402 when they batted first. Shubman Gill scored 154. And Ishan Kishan scored 124, and they won comprehensively. 170 runs is the margin of victory. So 6 bowlers have been used, and one is indisposed, which is Sri Lanka. Otherwise, Kranti Grau has bowled 4 overs for 26. Nandini back in action now. 2 overs, 1 for 16 balls. She goes for the scoop, does well, beats the short final leg fielder. This will race away now. It probably should be stopped a few yards inside the fence by Sri Charani. Couple of runs here. The scoop has come into effect in this game well from Netherlands' point of view. It's one area where there's a lot of risk involved, but as a matter of fact, it fetches you more runs and disturbs the rhythm of the bowlers. And that takes lead. She's on 27 from 25, fast catching up with the half century scored last Sunday against Bangladesh. Next ball, she daps the ball in down towards long gone, and they've all settled for a single. Lot more than that. Not sure why, Nandini's running after that, because she's well aware of the fact there is a fielder patrolling the long on boundary, and I probably can appreciate the commitment over there, but that's absolutely unnecessary. 3 for 95 in the 14th over. 115 more needed from 40 deliveries, which is beyond the reach of this Netherlands team. And I'm sure by the time these guys come and play in the next World Cup, you probably will see a reshaped young Netherlands team. Next ball is pushed back to the bowler, and a shy back at the bowler. I think it's hit her somewhere. and a bit of a friendly gesture and acknowledgement from both sides, both by the batter and the bowler. And it's a dot ball in the entry for 95. Rich K, she's on 7 from 6, having played a nice little river sweep in the last over. And I think 2 on 5, or rather 2 on 9 for Bowling is a massive.

0: massive target to be chased and won. I felt maybe that they should have batted first. I mean, you know, to their advantage, as a matter of fact, and have some runs on the board and defend the total rather than chasing anything over 209. Nandini bowls, slam a ball, and he gets an inside part of the bat. Again, a clash between the bowler and the batter, and they get an easy run indeed. It takes Rich K up to 8 from 7 and D lead back on strike 28 from 26. 6.2 is still remaining after this. It's the formalities we're going through. And it's probably one of the most, you know, one-sided affair of this overall World Cup. I probably can tell you that. And mind you, Netherlands have to play Australia, South Africa and Pakistan. They probably will fancy the chances against Pakistan, as a matter of fact, but it's two strong teams. They need to play again. Nandini bowls this time short. She can't see. She's been stumped smartly. Brilliant bit of work from Richa Ghosh. The captain goes stumped beautifully. And Nandini gets another wicket, isn't it? She's got a second wicket. And Netherlands now in deep trouble. They lose their key premier player. The captain gone stumped smartly. She was coming down the track. And then she bowled it short intentionally. And she missed it completely. And an easy stumping for Richa Ghosh to complete. And that brings to an end the end of the Captain D-lead, stumped by Ghosh and off the bowling of Nandini for a well-compiled 27. Probably she could have stayed in there to get a better personal landmark, and 28 from 27. She walks back but dejected, and she knows the importance of a wicket, and Netherlands sink further. 96 for 4, and well, it's been, you know, Goswami, a one-sided affair. You know, the moment they lost it, they won the toss and preferred to bat first. To my surprise, they should have batted first, I feel, and put some score and defend the target. They did well against New Zealand. Correction, they did well against Netherlands in the first game. This Indian side is pretty strong, both with bat and ball, and tons of experience behind them, and so much of creative play continuously and consistently. And there's some potential match winners on the side, the guys who can turn around quickly, and there are some players who can change the course of the game in few overs, someone like Richa Ghosh or Smriti Mandhana. She's such a wonderful player to watch, and a very gifted left-hander. It's been India's day so far. The men team have proven their mettle. They won the game against Afghanistan by 170 runs. And the women's team is not far away. That one is a 50-over match, and the one that we're doing is a 20-over game. And June has been a month flooded with variety of sports. Tennis, football, variety of T20, 50-50, test matches going on. England are playing New Zealand today with 220 for 5. New Zealand sometime back. No Stokes in the game. He's got his own problems beyond the playing hours. Unfortunately, there's Root leading England after a long gap, and he's playing his 167 test match. Would you believe he's playing 167 test match, and the rest of the other England side all put together 114. But a wonderful cricketer. Fancy him to get past Tendulkar somewhere down the line. He's got 3 or 4 years of cricket left with his bat. So right now, back here in Leeds, India on the way. They're in complete command of this game. And Netherlands probably haven't batted badly, but they're learning, continue to learn as the game goes on, the months and years to come. And they're probably, at some point of time, in the next 10 years' time, they'll be a strong contender in the T20 format, as a matter of fact. So right now, new player is going to step into the centre. Play briefly held up with the exit of the captain, who's been stumped smartly by Ghosh, and off the bowling of Nandini. And one casualty in the inside with Patil, the off-spinner, you know, just bowled one ball, and she had a nasty fall. She slipped, and she suffered an ankle injury. Over Dick. She's the new batter in, and the batter at the other side is Rich K. Netherlands 96 for 4, one ball to go in the 15th over, and the target they're chasing now looks very unrealistic. 210. Nandini with the last ball of her third over. Bowls fuller and lifted in the air, wide of mid-on. It'll be cut off by Jemima Rodrigue. She does well to cover, have to run 15 metres. Couple of runs here, and after 14 overs, Netherlands 4 for 98.
1: 14 ओवर की समाप्ति पर 98 रन पर 4 विकेट इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है, जो 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। हीथ सीजर्स, स्कॉट स्मृति मंधाना, बोल्ड कीर्ति शर्मा 21 रन, मेलकन बोर्ड कॉट जेमिमा रॉड्रिक्स बोल्टी शर्मा 15 रन, बबेट डेलीट स्टंप ऋचा घोष बोल्ड नंदी शर्मा 28 रन और स्टीव कैलिस जिनको सैफ अली ने बोल्ड किया था 18 रन के स्कोर पर। और इस समय चार विकेट जो गेंदबाजी का सिलसिला है, नंदी शर्मा ने 3 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिए, सैफ अली वर्मा ने 3 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट लिया है। और पाटिल जैसा कि इंजर्ड होकर चली गई थी, गेंद फेंकी थी, श्री चंडी ने 2 ओवर में 11 रन दिए, कोई विकेट नहीं। और दीप्ति शर्मा ने 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की। तो इस समय नीदरलैंड जूझ रही है भारतीय आक्रमण के समक्ष। 14 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, डिसीजन को रिव्यू किया गया है, देखना है अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है और तीसरे अंपायर अब टीवी पर देखकर टीवी अंपायर लॉरेन एगेन बैग टीवी अंपायर की भूमिका इस मैच में निभा रही हैं। और डिसीजन जिस तरह से आपको हम निरंतर बता रहे हैं कि गेंद को स्वीप करना चाहा था और गेंद उनके बूट पे लगी है, देखना है गेंद बैठ के कहीं किसी किनारे भीतरी किनारे से तो नहीं लगी, यही देखना है। और अगर नहीं लगी तो फिर उसकी क्या दिशा रही है, क्या गेंद स्टंप्स को छूकर निकल रही है या स्टंप्स के पास से निकल रही है, इन्हीं सब बातों का एक चिंतन होता है। और तीसरे अंपायर की तरफ से ये निर्णय किया जाता है। क्रिकेट में जब से रिव्यू सिस्टम आया है, बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब बेहतरीन बल्लेबाज कई बार गलत तरीके से आउट दे दिए जाते थे, लेकिन बाद में इस तरह की कंट्रोवर्सीज निकलती रहती थी। लेकिन फिलहाल देखना है कि अब जाके पूरी तरह से संतुष्ट, मिडिल स्टंप पर गेंद टकराई है, लेकिन देखना है कि क्या निर्णय होता है। अंपायर ने अपना निर्णय दिया, आउट हो गए हैं बैटर और ये अंपायर की उंगली उठी। इसके साथ ही क्रीज की पारी यहीं पर समाप्त हुई और एक और करारा छक्का लगा है। रॉबिन रिस्क 8 रन पर आउट हुए हैं। LBW बोल्ड श्री चरणी, उन्होंने मात्र 3 डॉट गेंद बनाई, 1 रन उनके खाते में जुड़ा और इस तरह से दक्षिण नीदरलैंड्स को एक और करारा छक्का लगा है। और देखा जाए तो एक तरफा मैच होता हुआ विश्वनाथ ही नजर आ रहा है कि किस तरह से पहले टॉस जीतने के बाद एक मौका मिला था कि वो बल्लेबाजी करती, लेकिन उन्होंने बेटर समझा, उचित समझा ये कि हम पहले गेंदबाजी करें। भारत ने 209 रन का स्कोर उनके समक्ष दिया है।
0: Well, at times I probably will say it's a match of the unequals, isn't it? One of the top-ranked team playing a team which is new entrant and a long way to go. Charney bowls and driven towards long off for a single. She's off the mark's willing. She bowled well indeed and takes Netherlands up to 99 for 5.
1: ज्वेलिंग ने अपना खाता खोला है, एक रन लिया है, जिस तरह से पिछली गेंद पर आउट हुआ था, अंपायर ने एक और आउट नहीं दिया लेकिन रिव्यू दिया और उस पर भारत को सफलता मिली। 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है। ओवर डिस्क इस समय 2 रन के स्कोर पर खेल रही हैं। ज्वेलिंग ने 1 रन बनाया है और अब 111 रन पीछे है अभी भी नीदरलैंड्स की टीम भारत के मुकाबले, जबकि 34 गेंदों का खेल शेष रहा है। बहुत ही मुश्किल, कोई चमत्कार ही हो तो अलग बात है। इस बीच ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, सुरक्षात्मक तरीके से खेला, गुड लेंथ गेंद थी। एक बार फिर से श्री चरणी को सफलता मिली कि उन्होंने मौका नहीं दिया बैटर को रन लेने के लिए। ओवर डिस्क इस समय खेल रहे हैं 2 रन के स्कोर पर और एक बार फिर से श्री चंडी गेंदबाजी करने के लिए राउंड विकेट, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव करना चाहती सीधा, लेकिन गेंद बन लेके बाहरी किनारे से लगते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: एक चौके से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन निश्चित रूप से ये मैच अब भारत की पकड़ पे मैं आ चुका है। श्री चरणी ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस ओवर में 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी और अंपायर ने हालांकि उसको आउट नहीं दिया था, लेकिन बाद में रिव्यू लेने पर उनको सफलता मिली। इस बीच ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ, इससे पहले कि गेंद फील्ड की जाती थ्रो किया जाता, 1 रन और उन्होंने अपने खाते में जोड़ा हालांकि मिस फील्ड हुई 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस समय स्कोर है और एक गेंद अभी भी शेष है श्री चैनी के इस ओवर की 14.5।

0: पांच ओवर का खेल पूरा हो चुका है। नीदरलैंड्स के बल्ले से अभी तक 104 रन निकले हैं, 5 विकेट का नुकसान उनको हो चुका है, आधी टीम उनके आउट होकर पेविलियन लौट चुकी है और भारत के लिए ये एक आत्मविश्वास भरी गेंदबाजी इस समय की जा रही है। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैक फुट पर गए, गेंद को धीरे से पुश किया स्क्वायर लेग एम्पायर की तरफ और इससे पहले की गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता है, एक रन और जोड़ लिया। 106 रन 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है नीदरलैंड्स का।
1: So the game has gone one-sided, isn't it? Last 5 is coming up and it's certainly out of reach now. The ask is around about 20 runs on overs.

0: बचे हैं। एक तरह से मैच भारत की पकड़ में पूरी तरह से आ चुका है और अब अंपायर की तरफ से सरआरएस के साथ ही आउट, एक और विकेट मिला है। श्री चंडी ने इस गेंद को थोड़ा से हवा में फ्लाइट किया था और डीआरएस लिया है वहां पर। बल्लेबाज ने देखा कि जैसे ही उनको लगा कि कहीं उनका किनारा नहीं लगा है, श्री चंडी की गेंद को कट करना चाहती थी लेकिन बॉल ने उनके बल्ले का एक बाहरी किनारा लिया या नहीं लिया यह अब डीआरएस के जरिए तय होगा। लेकिन भारत के खेमे में उत्साह, क्योंकि अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर ली थी और अब देखना है कि बहुत नज़दीकी मामला है उनकी बैट से लगी या नहीं। यहाँ से देखने पर तीसरे अंपायर के पाले में गेंद गई है अब, और जो मूल निर्णय है वो आउट का है अंपायर की तरफ से, और देखना है कि गेंद बल्ले से टकराई या नहीं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट के पीछे ऋचा घोष ने लिया है, और अगर ये परिणाम में बदलता है तो एक और विकेट नीदरलैंड का गिर जाएगा। बैट से टकराई है और अंपायर ने अब जाके अपने निर्णय को वापस बरकरार रखा है, और अंपायर ने दूसरी बार तीसरे अंपायर की सलाह पर अपनी, देखते हैं उंगली उठाई या नहीं। लेकिन लेकिन बैटर पेवेलियन की तरफ लौट रही हैं और धीरे धीरे कदमों से लौट रही हैं। अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से निर्णय को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा की गति से जब गेंद निकलती है कई बार तो ऐसा लगता है कि बैट से लगा है, लेकिन विकेट कीपर ऋचा घोष को पूरा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, और अब जाके निर्णय अंपायर का उंगली ऊपर उठी और राड जो कि शून्य पर आउट होकर पहली ही गेंद पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया और सातवां विकेट नीदरलैंड्स का गिर चुका है। और अब सीजर्स आई हैं बीच मैदान पर और ये श्री चरणी लगातार दो विकेट ले चुकी हैं, हैट्रिक पर हैं। देखना है अगर वो ये कमाल कर पाती हैं कि एक विकेट और वो अगर अगली गेंद पर लेती हैं तो एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम पर जुड़ जाएगी। 16.2 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है, 113 रन 7 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर है, और अब कितने रन की आवश्यकता है सवाल यह नहीं है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि भारत कितनी जल्दी इस मैच पर विजय प्राप्त करती है। इस बीच इस गेंद को ड्राइव किया था लेकिन गेंद मैदान पर लुढ़कती हुई जा रही थी, गेंद को फील्ड किया, एक रन और खाते में जुड़ा है। सीजर्स ने अपना खाता खोल लिया है 114 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें शेष हैं और श्री चरणी अपनी कलात्मक गेंदबाजी से कितना कुछ कर पाती हैं। सीजर्स ने 24 पारियों में 69 रन बनाए, बहुत अच्छी बैटिंग कोई उनकी रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रही है, और 20 गेंदों का खेल अब शेष रहा है, 96 रन की दरकार है जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। भारतीय दर्शकों में अपार उत्साह, तिरंगा झंडा भी फहराया जा रहा है, शोर करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही ये गेंद को खेला था लेकिन गेंद टप्पे के साथ उछली थी हवा में और विकेट के बीच में आके उसको अपने हाथों में लिया था श्री चंडी ने। ऐसा लगा था यहाँ पर दर्शकों को कि कोई कैच है, लेकिन क्योंकि बैट्समैन ने बहुत सुरक्षित तरीके से खेला था, अगली गेंद अच्छी और इस गेंद को उठा दिया है। देखना है गेंद बाउंड्री में क्या पार, जिसके साथ ही आउट, एक और विकेट गिर चुका है श्री चंडी की इस ओवर में। देखा जाए तो 3 विकेट उन्होंने जरूर लिए हैं, लेकिन लगातार 3 विकेट लेते तो हैट्रिक होता, लेकिन इस ओवर में सफलतम 17 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 114 रन 8 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर, और बहुत ही सफल ओवर जिसमें 3 विकेट उन्होंने श्री चंडी ने लिए हैं, और एक तरह से बहुत ही शानदार जेमिमा रॉड्रिक्स जो कि लॉन्ग पोजिशन पर फील्डिंग करती हैं उन्होंने कैच किया। आयरिस ज्वेलिंग 8 रन पर आउट हुई है, कॉट जेमिमा बोल्ड श्री चरणी, और 114 रन 17 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। विश्वनाथ,
1: Well, it's a triple wicket over indeed. Remarkable for her, and she's got figures of 4, for 19 from four overs. Sri Charani, she's having a

0: बेटर और जितना आप मिडिल करिएगा कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे. लाइक शी स्टिल से शी स्टिल नॉट हैप्पी आफ्टर 250s. दैट्स द हॉलमार्क ऑफ टॉप बैट्समैन.
1: एक्सीलेंट.
0: दे आर नॉट हैप्पी विद स्कोर्स. इट्स हाउ यू प्ले द गेम राइट. सो मच ऑफ इट इज इन द माइंड. You know that okay, today's Holland, so I'm going through, and even if I didn't score, somebody else would score. But these margin of errors, you know, when you go up progress and you're looking to play the semifinals, the margin of error goes down, and that is the time when these kind of players like Smriti Mandhana starts to feel it that something is not quite right. And that's what she exactly said. So she has to improve. So has Shefali. Shefali showed great signs of improvement. Mm-hmm. So you see that the way she scored the runs, not right. through the aerial route, but through the ground route and on either side of the wicket. That's good. That's a great sign. But again, if you analyze the other batsmen, like we spoke in the middle session,
1: right.
0: all five batsmen threw their wickets, gifted their wickets. As far as the bowling is concerned, not much of spin. I think most of the Dutch batsmen played against, did not find the right line mm-hmm. or missed the flight, and some of them were stumped. So, you see, it's a learning curve for the Dutch, but let's look at it from an Indian point of view. There's still a lot of scope to get better and better if you play the next set of matches.
1: Indeed. You mentioned about Shefali being absolutely wonderful down on the ground with those shots as well. The efficacy of Shefali with the bat in hand just cannot be questioned. Lekin Shefali, जो गेंदबाजी में उन्होंने आज दमखम दिखाया, जो उनको थर्ड ओवर मिला था, हरमन ने जब उनको बॉल थमाया था, उनके कैप्टेंसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उसके फलस्वरूप में विकेट भी मिला था शेफाली को.
2: शेफाली वर्मा सिर्फ यही नहीं, वो आप कहीं भी देखेंगे कि इंडियन टीम के इंडिया ए टीम में भी वो बॉलिंग करती है एंड वहां पर भी वो इसी तरह का एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और वहीं से वो कॉन्फिडेंस यहाँ इंडियन टीम में उनके लिए बिल्ड होके आया है. एंड जो आज उन्होंने बॉल डाली है उस पर उन्होंने उनको रीड करना इतना ईजी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक ही वेरिएशन में बॉल नहीं डालती, वो दो वेरिएशन में बॉल डालती है. एक वो ऑफ स्पिन डालती है, एक वो टॉप स्पिन भी डालती है. तो उसमें डिफरेंस है दोनों में. टॉप स्पिन में थोड़ा सा बैटर को डिफिकल्टी होती है जज करने में एज कंपेयर टू ऑफ स्पिन. सो उसमें जब उनको बॉल विकेट मिली थी तो वो उन्होंने टॉप स्पिन करके बॉल डाली थी एंड वो हल्का सा हम कह सकते हैं कि स्लाइटली उनको एक टर्न मिला था उस टाइम.
0: I just want to add to what she said by Sally, you know, it reminds me of Sachin Tendulkar, the bowler. He exactly same kind of run up, more or less the same kind of build up, and you know, he could do anything with the ball. He could leg spin, off spin,
1: right.
0: Flippers, God knows what I've seen him play in Hero Cup finals, uh-huh. and he would get wickets. And sometimes the match winning wicket would always go by Sachin, I think. But yes, I'm not comparing Sachin and Shefali. But she can do a lot of things with the ball, and that's why Harmanpreet would often go back when, you know, when Patil was injured and she left, she filled over, I think, and she did a pretty good job.
3: Talking about finals, well, Shefali did get wickets for India in the ODI World Cup final as well. In the meanwhile, in our show, there's time for our listeners to chip in with their questions and comments. Remind you, our numbers are 011-234-21084 and 1085. अभी जो पहले श्रोता जुड़े हैं उनसे बात करते हैं. नमस्कार.
4: नमस्ते मैडम
3: जी, अपना परिचय दीजिए.
4: मैं हसीना की मधुपुर को मैं बाल करना चाहती हूँ.
3: हसीना जी, क्या सवाल है आपका?
4: सवाल कुछ नहीं, मेरा बदली देना चाहती हूँ. आप लोग खाना पीना छोड़ देते हैं आखिरी ओवर तक, और वंदना की मरीज जी के आपका कप्तानी बहुत ध्यान से सुन रही है.
3: जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा को इस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ते हैं. तो श्रेयांका पाटिल के एब्सेंस को फिल किया जरूर शेफाली, लेकिन श्रेयांका को जो इंजरी हुई अभी जो दिख रहा था और जो हमने सुना, काफी प्रॉब्लम में दिखी वो एंकल उनका.
0: Yeah, definitely. She one of the lead bowlers and the point is, but we are backup. ये नहीं कि हमारे पास बैकअप नहीं है, वी हैव एनफ बैकअप, बट वी विल ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट यू नो शी कम्स बैक फिट एंड फाइन एंड द बेंच रिमेंस एज स्ट्रॉन्ग एज एवर. But that you only know after the reports come out later in the day.
1: हमारे लिसनर्स के पास दिव्य दृष्टि तो है. किसी ने सवाल पूछा था इसी ने,
0: राधा यादव
1: कहाँ हैं, कहाँ क्या कर रही हैं, उन्हें सदस्य रहना चाहिए था 11 की, अब बन सकती हैं क्योंकि श्रेयंका is nursing an injury. But it's good news for India, you think, Vaishali? Because even though Shriyanka might miss out on

0: level, and they have so many match winners starting from their captain. So it is not a question of number 3 or number 4, it is a question of your mindset going into a big match, right? Today, if they can beat Pakistan or South Africa, Pakistan or Birmingham, they win. The big boost ahead of this match. But the point is this, against a match against South Africa, Australia, I mean, the dressing room, in the Indian dressing room, their thinking will be completely different. They will forget what they have done against, you know, Pakistan or Netherlands. Yeah, so they and don't think that they are a world-beating side. They're a very good side, and they and many of their cricketers play cricket in these kind of regions and are familiar with the conditions. Similarly, if you see, not many Indian cricketers actually are used to these conditions.
1: Right.
0: Because you see, Smriti Mandhana said something very interesting, that she played the 100. Okay, so these kind of conditions actually help them prepare better. That's why. Why do you think that Smriti Mandhana is not happy with her 250s? It's because she knows that the next set of matches will be very, very crucial, and if she can't middle the ball, bat agar balla mein nahi laga, that feel good factor is not there. The runs will not come because the bowling from South Africa will be very, very tough.
1: Right, I think that
2: a lot will depend on the type of wicket that is provided. And in case it is a slightly spinning wicket, we have a good chance of beating South Africa.
1: All right, because Lees will also be waiting to rip the ball. So Shabnam Ismail is again someone who's quick when there's a little bit offerings from the surface. Now let's go to our listener. Ji, aap kahan se call kar rahe hain? Bataiye, aapka parichay dijiye.
3: Haan ji, aadab, namaskar.
1: Namaskar.
3: Ji, bhai, Mustaqim Uda bol raha hoon, Gujarat se.
1: Ji, bataiye, aapka sawal kya hai?
3: जी पहले तो भारत मैच जीता बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम को और ऐसे ही आगे भी जीतते रहे बहुत ही उम्दा प्रदर्शन टीम का
1: शुक्रिया सर
3: और एक हमारे खिलाड़ी आज इंजर्ड हो गई तो क्या उसकी आगे कमी खलेगी
1: राइट श्रीलंका पाटिल के इंजरी के बारे में पूछ रहे हैं
3: रेडियो पे दे रहे हैं हेलो सर
1: जी बताइए
3: हेलो आप रेडियो पे कमेंट्री दे रहे हैं हम आपके शुक्रगुजार हैं लोकल रेडियो स्टेशन तमाम रेडियो पे कमेंट्री आ रही है मीडियम में भी उसके लिए हम आपके शुक्र
1: बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी लुत्फ उठाते रहे हम यही उम्मीद करेंगे वैशाली आपसे रहेगा ये सवाल फिर कि श्रियंका पाटिल की कमी क्या खलेगी अब इंडिया को
4: कहने के लिए खल सकती है लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शन है अभी राधा यादव एंड वो बेटर फील्डर भी है जैसे मैंने बोला कि बैटिंग भी करती है वो तो हमारे पास उसे उनसे थोड़ा सा बेटर राधा यादव है एंड वो इम्प्रूव भी कर रही है उनकी हम देखें तो उनकी बैटिंग पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हो गई है एंड बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो वो काफ़ी बेटर एंड क्रिप के साथ जो बॉल डालती है तो वो काफ़ी अनप्लेएबल बॉल होती है एंड अगर हम बात करूं बैटिंग की लाइनअप की जो अभी आप बात कर रहे थे थर्ड डाउन की बट हमारे पास मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है और वो साउथ अफ्रीका टीम के लिए हम उनके अगेंस्ट जब खेलेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं लैक हो सकता है क्योंकि मिडिल ऑर्डर को बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी दो लास्ट टू मैचेस से दिख नहीं रहा है नॉट इवन नॉट लास्ट मैच तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पर यास्तिका भाटिया या भारती की जगह जो भी खेलता है नेक्स्ट मैच में उनकी जगह पे हरमन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर जैमी
5: बिल्कुल और हमने देखा है कि भारत जब विकेट्स लूज करता है तो वो क्लस्टर में लूज करता है खास करके मिडिल ऑर्डर में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज गवाई थी लेकिन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में 4-1 से उस श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा था भारतीय टीम को अभी कंडीशंस काफी अलग होंगे लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम नेट रन रेट में काफी पीछे भारतीय टीम ने पहले दो मुकाबलों को बहुत अच्छे से बुनाया है इस वर्चुअल नॉकआउट से पहले भू
2: नहीं हमारी टीम अच्छा खेल रही है दोनों जो मैच जीते हैं वो बड़े कन्विंसिंगली हमने जीत लिए हैं एज फार एज साउथ अफ्रीका इज कंसर्न्ड उनका अभी शमी इस्माइल हैज जस्ट कम बैक इनटू द टीम फ्रॉम रिटायरमेंट सो दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज शी इज बॉलिंग क्वाइट वेल शी प्लेज इन द WPL शी नोज ऑल आर बैट्समैन बैट्सवुमन सो मेरे को लगता है कि अगर हम शुरू के जो हमारे जो बैटर्स हैं वो 6 ओवर निकाल लें आराम से विदाउट लूजिंग मोर देन 1 विकेट then we can get a good score against South Africa and then put them under pressure with our bowling. Bowling is quite good as far as the spinners are concerned.
5: Absolutely. और वॉल्फार्ट शानदार फॉर्म में है पिछले साल विश्व कप में 50 ओवर के विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था और अभी भी रन बनाने की मशीन बनी हुई है
0: क्वालिटी बैट्समैन है देखिए पेडिग्री जो है ना वो आपको दिखे

0: रिगार्डलेस कि कौन फॉर्मेट में व्हाइट बॉल खेल रहे या रेड बॉल, देखिए मंदाना, हरमनप्रीत, मिताली राज पहले थे, इन तो दे हैव क्वालिटी, और क्वालिटी जिस बैट्समैन में पेडिग्री और क्वालिटी है, दे कैन प्ले इन एनी फॉर्मेट ऑफ द, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग कि नंबर थ्री में कौन बैट करना चाहिए, राइट, बिकॉज टुडे यास्तिका डिड नॉट गेट द रन्स एज डिजायर्ड, बट दिस काइंड ऑफ मैचेस आर वेरी वेरी क्रूशियल, देयर नोबडी विल लुक नॉट लुक एट रन रेट्स, दे विल लुक एट विक्ट्री, टू पॉइंट्स, राइट, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो यू गो विद अ प्रॉपर माइंडसेट, और इस तरह का मैच हम जीतने का कोशिश करेंगे, नॉट अबाउट run rates.
1: Not about run rates. It brings us to a very interesting point at this stage. On the 21st, Colonel, it's going to be the Indian bowlers versus South African batters, or do you think the South African bowlers versus the Indian batters? What do you think will be the bigger battle on that day?
2: I think the bigger battle would be the South African bowlers versus the Indian batters, and I hope we do well, okay, and score over 150 and put them under pressure with our spinners.
3: और हमने देखा है कि साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी में काप, जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी है, हालांकि बल्ले से योगदान आ रहा है, लेकिन गेंदबाजी में उनकी कमी कहीं ना कहीं खल रही है साउथ अफ्रीका को।
4: गेंदबाजी की बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं ना साउथ अफ्रीका का जो हमने लास्ट मैच खेला था वहां पे अगर देखा जाए तो फील्डिंग ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि दोनों साइड के बैटर बहुत अच्छे हैं एंड स्पिनर एंड बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बहुत काफी है, बट यहां पे डिफरेंस होगा सिर्फ आपकी फील्डिंग को लेकर कि आप कैचेस को कैसे ग्रैब कर रहे हैं, आप फोर जहां पे आप फोर को स्टॉप कर रहे हैं वहां पे आप टू रन्स दे रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है फील्डिंग के अंदर, एंड साउथ अफ्रीका टीम के साथ हमें यही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने रन्स जितने कम से कम दे सकते हैं उनको, वो तभी आप आगे जीत के लिए जा सकते हैं। एंड उसके साथ मैं एक चीज और ये कहूंगी कि जैसे आज नंदिनी शर्मा ने बॉल डाली, आउटस्टैंडिंग बॉल डाली, बट उसके साथ अगर हम उन दोनों के फर्स्ट एंड सेकेंड ओवर देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं लेग साइड पे बॉल जा रही थी, एंड वो हमें इम्प्रूव करनी है। जब जीत हमें मिलती है तो हम गलतियां भूल जाते हैं, बट गलतियों को देख के अगर हम उसको इम्प्रूव करें तो कहीं वो हमें नेक्स्ट मैच के लिए विन दे सकती है।
1: इंडीड, और नंदिनी क्योंकि बल्लेबाज चहलकदमी करने पर उतर आए थे ताकि झूलती हुई गेंद को बेहतर संभाल सके, क्या आगे जाते हुए भी हम इन कंडीशंस में इसी पैथरे को आजमाते हुए देखेंगे रिचा घोष स्टैंडिंग अप?
4: जी बिल्कुल, रिचा घोष मैं हमेशा बोलती हूँ इंडियन टीम के लिए बेस्ट है, एंड उनकी बैटिंग ही नहीं उनकी कीपिंग भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो कहीं भी लेग साइड हो या साइड हो वो हर जगह पे आपको डाइव लगाती हुई नजर भी आएंगी, एंड वो जिस तरह से अपना माइंड सेट रखती है उस तरीके से वो बॉल भी डलवा देते हैं। हम विकेट कीपिंग की जगह पे खड़े होके वो बॉलर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एज एक टीम के लिए कीपर बैकबोन होता है, क्योंकि वो एक कीपर वहां पिच पे खड़े होके पूरे फील्ड सेट कर सकता है, सबको देख सकता है, उसके लिए वो सबसे इजी पॉइंट है वहां पे खड़े होके चेक करना।
1: ऑल इन ऑल अ ग्रेट विन फॉर द इंडियन साइड, एंड नाउ दे विल बी पुटिंग द फीट अप एंड वॉचिंग पाकिस्तान टेक ऑन the South African bowlers especially, so that they are better prepared and they do their homework for the next game on the 21st, Megha.
3: Absolutely. Indian team would now turn its attention on making all the notes. Vaishali used the word ishara. Hamare producer ki taraf se ishara aa gaya hai isi baat pe ki is program ko hum yahan par conclude kar sakte hain is promise ke saath ki 21 June ko hum wapas aayenge. Suhas, aapka dhanyawad. Hamare visheshagyon ka yahan par bahut bahut dhanyawad. Aur is production की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर शहनवाज खान ने उठाई, और प्रोडक्शन टीम में इंजीनियर्स हैं मनोज, अजय राणा और आर यादव, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं तन्मय पंत, अमीशा पटेल और कविता, और इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का यहां पर समापन करेंगे, वापस लौटेंगे 21 जून को भारत और साउथ अफ्रीका के मुकाबले के साथ, जुड़ते हैं आपके साथ शाम 6:30 बजे।
5: प्लेयर ऑफ द मैच,
6: अभी आप आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नेदरलैंड्स के बीच खेले गए टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
7: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द टी20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स ऑफ द आईसीसी विमेंस टी20

0: कण में राम क्षण क्षण में श्याम हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम।
1: नमस्कार, रात के 11 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच भारत ने जीत लिया है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भारत ने मेहमान टीम अफगानिस्तान को 170 रनों से मात दी। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किरण के शतकीय पारी से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और अफगानी टीम 403 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए 232 रनों पर सिमट गई।